0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम पूजा के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको पूजा।
1: नमस्कार रिया, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस और सऊदी अरब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत कर रहा है। मंत्रिपरिषद ने दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। इसमें विशेषज्ञता का आदान प्रदान, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण पहल शामिल है। और मंत्रिपरिषद ने उच्च शिक्षा विज्ञान और अनुसंधान मंत्रालय के संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय समन्वय केंद्र यानी नेशनल फोकल पॉइंट बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। एक सफाई अभियान के दौरान लगभग 30 किलो ईंधन तेल के गुच्छे और परतें एकत्र की गई जो रेत के साथ मिलाई गई थी। कल दोपहर को नेशनल कोस्ट गार्ड के जवानों ने भी लगभग 366 किलो ईंधन तेल के जमाव को एकत्र किया। इन मलबों को लाशोमिया स्थित खतरनाक कचरा उपचार केंद्र ले जाया गया। इस निर्वाचन क्षेत्र के सांसद और खेल मामलों के जूनियर मंत्री टोनिया पोलो को कुछ दिन पहले मछुआरों ने इस मामले की जानकारी दी थी। सितंबर 2024 में हुई जॉन माइक मार्टिंगेल की मौत की न्यायिक जांच कल रोजहिल की अदालत में फिर से शुरू हुई। असिस्टेंट प्रिजन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद आसिफ रामतुला से पूछताछ जारी रही। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के प्रतिनिधि का मानना है कि वो सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कुछ कैदियों को गवाही के लिए बुलाने की योजना बनाई है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने कथित रूप से गोपनीय जानकारी लीक होने के मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए और समय मांगा है। अब तक 5 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। 3 अन्य लोगों की पहचान की गई है, उनसे पूछताछ की जानी है। एफसीसी के एक जांच अधिकारी ने कल मोका की अदालत में ये जानकारी दी है। और विदेश की खबरों में, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कीव के केंद्र में हुए हमले के दौरान एक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुख्यालय को निशाना बनाया और वहां टकरा गया। और अब मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, देश के पूर्व तथा सेंट्रल प्लाटू पर आज सुबह बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी। दिन के दौरान मौसम अच्छा रहेगा, मौसम सुहाना रहेगा। रात को बादल कुछ घिर आएंगे और ऊंचाइयों पर वर्षा होने का अनुमान है। हवा हल्की रहेगी और पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता को सुबह के समय समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 22 से 24, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:15 बजे, सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा। तो मौसम के इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे 6:30 बजे।
2: RM3 रेडियो।

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी से मग़फ़िरत तलब करते हैं. हम अपने नफ्स के शर से और बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं. अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता. और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं. और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है. सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ये मनोरंजन रेडियो की उर्दू नशरियात है. मैं हूँ आपकी मेज़बान अबीनाज जान अली. सबाल खैर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है. शिव हमें तकनीकी मदद दे रहे हैं. आज की इस मुबारक नशरियात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करेंगे. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे अंदर दो बाहरी चीज़ें छोड़ता हूँ. पहली चीज़ कुरान है, इसमें हिदायत और नूर है, लिहाजा उसे मजबूती से थामो. और दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत है, मैं तुम्हें उनके मुतालिक अल्लाह का वास्ता दिलाता हूँ. बहवाला सनन दारमी.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला.

ऐ ईमान वालो, अल्लाह उसके रसूल से आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सुनता जानता है। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाजें ऊंची न करो इस गैब बताने वाले नबी की आवाज से, और इनके हुजूर बात चिल्ला कर न कहो जैसे आपस में एक दूसरे के सामने चिल्लाते हो कि कहीं तुम्हारे अमल अकारत न हो जाएं और तुम्हें खबर न हो।

वो हैं जिनका दिल अल्लाह ने परहेजगारी के लिए परख लिया है, उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। बेशक वो जो तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारती हैं उनमें अक्सर बेअक्ल हैं, और अगर वो सब्र करते यहाँ तक कि आप उनके पास तशरीफ लाते तो ये उनके लिए बेहतर था, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है।

ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को बेजाने ईजा न दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। और जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल हैं। बहुत मामलों में अगर ये तुम्हारी खुशी करें तो तुम जरूर मशक्कत में पड़ो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ईमान प्यारा कर दिया है और उसे तुम्हारे दिलों में आरास्ता कर दिया, और कुफ्र और हुक्म उदूली और नाफरमानी तुम्हें नागवार कर दी। ऐसे ही लोग राह पर हैं। अल्लाह का फ़ज़्ल और एहसान और अल्लाह इल्म हिकमत वाला है।

0: إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: और अगर मुसलमानों के दो गुरु आपस में लड़ें तो उनमें सुलह कराओ, फिर अगर एक दूसरे पर ज्यादती करे तो उस ज्यादती वाले से लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए, फिर अगर पलट आए तो इंसाफ के साथ उनमें इस्लाह कर दो और अदल करो, बेशक अदल वाले अल्लाह को प्यारे हैं. मुसलमान मुसलमान भाई हैं तो अपने दो भाइयों में सुलह करो और अल्लाह से डरो कि तुम पर रहमत हो.

ए ईमान वालों, न मर्द मर्दों से हंसें, अजब नहीं कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हों, और न औरतें औरतों से, दूर नहीं कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हों। और आपस में ताना न करो और एक दूसरे के बुरे नाम न रखो, क्या ही बुरा नाम है मुसलमान होकर फासिक कहलाना, और जो तौबा न करें तो वही जालिम हैं।

ऐ ईमान वालों, बहुत गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। और ऐब न ढूंढो और एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम में कोई पसंद रखेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए, तो ये तुम्हें गवारा न होगा। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है।

ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें शाखें और कबीले किया कि आपस में पहचान रखो, बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो जो तुम में ज्यादा परहेजगार है, बेशक अल्लाह जानने वाला खबरदार है। गवार बोले, हम ईमान लाए। तुम फरमाओ, तुम ईमान तो न लाए। हाँ यूं कहो कि हम मुतीह हुए और अभी ईमान तुम्हारे दिनों में कहाँ दाखिल हुआ, और अगर तुम अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे तो तुम्हारे किसी अमल का तुम्हें नुकसान न देगा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है।

वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए फिर शक न किया और अपनी जान और माल से अल्लाह की राह में जिहाद किया, वही सच्चे हैं। तुम फरमाओ, क्या तुम अल्लाह को अपना दीन बताते हो? और अल्लाह जानता है जो कुछ आसमान और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह सब कुछ जानता है।

इरशाद रब्बानी है उर्दू तर्जुमा और ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब को सुबह व शाम अपने दिल में याद कीजिए आजिज़ी से और डरते हुए पस्त और हल्की आवाज़ से और अपने गाफिलों में शामिल न हों। जामे अत-तिर्मिज़ी की रिवायत है उस शख्स की मिसाल जो अपने रब का ज़िक्र करता है और उसकी जो अपने रब का ज़िक्र नहीं करता ऐसे है जैसे ज़िंदा और मुर्दा शख्स।

इब्ने माजा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं जो तुम्हारे सब आमाल से बेहतर है और तुम्हारे शहंशाह के हाँ सबसे ज़्यादा पाकीज़ा है और तुम्हारे दर्जात में सबसे ज़्यादा बुलंद है और तुम्हारे लिए सोना और चांदी सदक़ा करने से ज़्यादा बेहतर है और तुम्हारे लिए उससे भी ज़्यादा बेहतर है कि तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे दुश्मन के साथ हो और तुम उनकी गर्दनें उड़ा दो और वो तुम्हारी गर्दनें उड़ा दें। सहाबा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, ऐसा अमल तो ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो है अल्लाह का जिक्र।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के उस यकीन के मुताबिक हूँ जो वो मेरी इबादत रखता है और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करे तो मैं उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे किसी महफिल में याद करता है तो मैं उसे ऐसी महफिल में याद करता हूँ जो उसकी महफिल से ज़्यादा बेहतर है, और अगर वो एक बालश मेरे करीब आए तो मैं एक हाथ उसके करीब आता हूँ, और अगर वो एक हाथ मेरे करीब आए तो मैं उसके दोनों बाजुओं के फैलाव के बराबर करीब आता हूँ, और अगर वो चलता हुआ मेरे पास आता है तो मैं दौड़ता हुआ उसके पास आता हूँ। हवाला बुखारी शरीफ।

अब्दुल्ला बिन बसर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम व कवानीन तो मेरे लिए बहुत है, कुछ थोड़ी सी चीज़ें मुझे बता दीजिए जिन पर मैं मजबूती से जमा रहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह की याद और ज़िक्र से तर रहे। बहवाला जामे अत-तिर्मिज़ी। सामईन कराम, सबाल खैर प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। टेक्निकी मदद के लिए शिव का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबिनाज जान अली को इजाज़त दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

शनिवार गंटल दाटी पद निमशाल तुंभ नाग तुंबई ईद आई तुंबई एन पॉइंट रेगा हेच मीद ये 94.6

तमंतर रख ले सी गिरेला ये से रो यका यकी नाट नाट नाट।

亲朋友，今天的音乐风景线就到这里跟您说再见了，谢谢您的收听，祝听众朋友度过愉快的周末，下次节目我们再会。

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे पूजा, नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। 37 वर्षीय एक चीनी नागरिक की कल थुदुदुस में एक हादसे में मौत हो गई। ये हादसा दिन के करीब 1 बजे आरटीओ पर हुआ। मृतक एक अन्य चीनी नागरिक के साथ कंक्रीट के बिजली के खंभे पर संबंधित काम कर रहा था। दोनों मजदूर एक ट्रक की क्रेन से जुड़े एक प्लेटफॉर्म में सवार थे। अचानक प्लेटफॉर्म के क्रेन से अलग हो जाने के कारण दोनों नीचे गिर गए। गंभीर रूप से घायल दोनों मजदूरों को सामयू की टीम ने चिकित्सा सहायता दी। हालांकि शोमा की मौत की पुष्टि कर दी गई। दूसरे मजदूर को फ्लाक के साज अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक का फिटनेस सर्टिफिकेट पिछले 7 जून को ही समाप्त हो गया था। दुर्घटना की सही परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। मॉरिशस में कुछ पुराने रेलवे स्टेशन आज भी हमारे इतिहास के एक हिस्से को जीवित बनाए हुए हैं। इनमें कुछ को डाक घरों में बदल दिया गया है। ये स्टेशन आज भी स्मृति और हिरासत के स्थल है, लेकिन साथ ही इन इमारतों के रखरखाव और संरक्षण की भी आवश्यकता है। अगस्त महीने में कैबिनेट द्वारा घोषित मॉरिशस और फ्रांस के बीच सहयोग का उद्देश्य मॉरिशस की आर्किटेक्चर विरासत के संरक्षण और उसके महत्व को बढ़ावा देना है। इसके तहत इन ऐतिहासिक स्थलों के रिहैबिलिटेशन और प्रबंधन के लिए एक सार्वजनिक निजी ढांचा स्थापित करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन कार्यक्रम को फिर से शुरू कर रही है। इसके पायलट बेसिस में अगले 16 से 28 नवम्बर तक ग्रेड 8 के 12 से 13 वर्ष की आयु वाले 200 छात्र शामिल होंगे। प्रधानमंत्री दफ्तर की सरपरस्ती में इस प्रोग्राम में शिक्षा मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय तथा पुलिस विभाग के सहयोग प्राप्त है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा कल और आज भी पुएर्टो साबल स्थित अपने कैंपस में एक ओपन डे का आयोजन किया जा रहा है। और बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर शान का शानदार कॉन्सर्ट आज SBICC पाई में। इसमें शान अपनी लोकप्रिय आवाज़ से दर्शकों का

0: मनोरंजन करेंगे, जबकि उनके बेटे माही भी पहली बार मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे और मशहूर गायक केके को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। विदेश में, नेपाल में बाढ़ के बाद हालात बदतर बने हुए हैं। हर दिन के साथ हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि अभी भी हजारों लोग लापता हैं। इस भीषण ट्रासिडी को झेलने वाले अब मानसिक रूप से पीड़ा झेल रहे हैं। उधर बोलीविया में एक सैन्य बराक में हुए विस्फोट में कम 2 लोगों की मौत, घटना में 58 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार विस्फोट में दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और आपातकालीन कर्मी मलबे में लोगों की तलाश कर रहे हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए, कुछ ही समय में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। धनुष लेन लियोशेतियाहुज में 71 साल के 71 years old शिसुपाया उसराल, जिन्हें लोग दासेन जानता नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे, कल रविवार को सुबह 10 बजे इनकी पत्नी लक्ष्मी उसराल के मकान धनुष लेन लियोशेतियाहुज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामौशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। गुबिन लेन मेबर्ग में सतीश मैकेनिक के पास 98 साल की 98 years old श्रीमती अपलामा जोगाना, जिन्हें लोग ताउचिन अपलाम नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके बेटे आत्मा जुगाना के मकान गोबिन लेन मेबर्ग से उठाकर तोबो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। साल के 63 years old श्री गुरुनादेन नारायणन, जिन्हें लोग रिवेन नाम से भी जानते थे, की मृत्यु हो गई है। वे पहले आर्मोशस में काम करते थे और कोनर डॉक्टर पियरू ला रू फिलाओ कौन ले व्यू के रहने वाले थे। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे लाशा पेलाउदांत एलियनसन रॉय रोड बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौतम मोरोशा की सिमिट्री ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: चेक यू टाइम, दिन के 12:07 हुए हैं।
5: सुहाना सफर।
4: सभी दोस्तों को नमस्कार, हेलो, आदाब। अनिता आपकी सखी जो है हाजिर हो गई है आप लोगों के कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है सुहाना सफर। और दोस्तों, यह कार्यक्रम जो है रेडियो मनोरंजन की लहरों पर जो है प्रसारित हो रहा है। वेल दोस्तों, आज है 5 सितंबर 2026 और कल और आज हम मना रहे हैं नंदलाला का जन्मदिन। कई लोगों ने कल रात भर जागरण करके कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया और आज भी मना रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं अमर प्रेम फिल्म के गाने के साथ और बड़ा नटखट है नंदलाला।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, ऐसे गाने को सुनकर जो है इनर पीस मिलता है ना। और वैसे तो कृष्ण जी को माखन चोर कहा जाता है। आपको पता है क्यों माखन चोर कहा जाता है? वैसे तो कहते हैं कि श्री कृष्ण को माखन चोर के रूप में भी जाने जाते हैं। और जो दूध है, दूध पोषण का जो सार है और दूध का एक परिष्कृष्ट रूप, रिफाइंड रूप है दही। जब दही जो है उसका मंथन होता है तो माखन, जो मक्खन बनता है और ऊपर जो है वो तैरता है। और यह जो है भारी नहीं बल्कि हल्का और पौष्टिक, न्यूट्रिशियस भी होता है। और कहा जाता है कि जब हमारी बुद्धि का मंथन होता है तब यह मक्खन जो है मक्खन की तरह हो जाती है। जब तब मन जो है ज्ञान का उदय, तब मन में ज्ञान का उदय होता है जब वो हल्का हो जाता है। और तब व्यक्ति अपने स्व में स्थापित हो जाता है। दुनिया में रहकर भी वह अलिप्त, अलीन रहता है। उसका मन दुनिया की बातों से, व्यवहार से निराश नहीं होता। माखन चोरी श्री कृष्ण प्रेम की महिमा के चित्रण जो है वो उसका प्रतीक है। श्री कृष्ण का आकर्षण और कौशल इतना है कि वह सबसे संयमशील व्यक्ति का भी मन चुरा लेते हैं। जी दोस्तों, कई जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी जो है मनाई जा रही है और यहाँ पर रेडियो मनोरंजन की लहरों पर भी हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में। और यहाँ पर कल्याणी जी हैं त्रियोले से और आप जो हैं फिल्म हीरा पन्ना का गाना सुनना चाह रही है। और यही गाना जाएगा आपकी चार बेटियों के नाम, श्वेता, हर्षिना, श्रेष्ठा, नीतिशा। आपके जो है दो बेटे हैं केशव, निर्वाण, साथ ही साथ बहु दीपिका भी है। आपके नाती हैं जियांश और शिवंश।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, सुहाना सफर कार्यक्रम चल रहा है अनीता के साथ, और यहाँ पर शीला जी ने हमें फोन किया बुनमिया फ्लैग से, और आप कहती है कि इस महीने पे जो है, जो सितंबर महीना है, वो आप लोगों के लिए बहुत खास है, आपके परिवार के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस महीने में काफी लोगों का जन्मदिन है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बहू संगिनी का जन्मदिन है, नेफ्यू कृष्णा का जन्मदिन है, नीस पूजा का जन्मदिन है, आरती का जन्मदिन है, और कल आपके प्यारे नेफ्यू विशाल का भी जन्मदिन है, और पूरे मकुना परिवार की ओर से इन सभी लोगों

को ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वस्थ रहे, खूब तरक्की करे और आपकी आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाए। तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिल्म शारदा का गाना आप लोगों के नाम।

जी दोस्तों, 12:35 हुए हैं और यहाँ पर कृष्ण के गाने के काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं और यहाँ पर साथ दे रही है नंदा जी पायसी और फिल्म क्रांति का गाना आपके पति दीपक के नाम, अविनाश के लिए अभिषेक, अरविनी, अशील, नाती गुल्लू, अरवी, पूरे गणेश और पुनीता परिवार के नाम। साथ ही साथ सोलफेगो वाक्वा से विश्वानी पुगन जी के नाम यह गाना जाएगा, वे साथ दे रही है और सुबोध जी हमेशा की तरह वाक्वा से साथ दे रही है और यही गाना आपकी स्वर्गीय पत्नी के नाम।

0: सुहाना सफर
1: जी दोस्तों, सुहाना सफर जारी है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें एक प्यारा सा मैसेज आया है संध्या जी की ओर से, सैंपिया से आप साथ दे रही हैं। और आपने फिल्म संजो का गाना मांगा, लेकिन संजो का गाना हमने चला दिया। होप कि आपने सुना और एंजॉय किया। गांव से श्यामा जी साथ दे रही हैं और आप फिल्म नास्तिक का गाना सुनना चाह रही हैं। और सभी सुनने वालों को, श्रोताओं को आप यही कह रही है कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वो सबके लिए कल्याणकारी, मंगलमय हो, सभी की जो पूजा हो वो सफल हो, आनंदमय हो। थैंक यू इसके लिए जी श्यामा जी। और अगला गाना आपके भाई जयप्रकाश के नाम, भाभी नम्रता है, नेफ्यू है युधिष केशव, साथ ही साथ आपकी सहेलियां हैं विना रामफल, विश्वानी दुखी और नंदिनी ओकलू। और गायत्री जी पिछले वर्षे से साथ दे रही हैं। जो गाना आपने मांगा है वो नहीं मिल रहा है, तो फिल्म नास्तिक के गाने में भी ही आपका नाम हम जोड़ रहे हैं, क्षमा करना। और यही गाना जो आएगा भाभी मीरा के नाम, और भाभी की बेटियां हैं गिरिशा मेधा, कठरबोण की बहन आपकी बहन है अमृता, उनकी बेटियाँ हैं नेहा, शीती, दिव्या, बेटे सुधीर, कमलेश, बहु सुधा और सभी कृष्ण भक्त के नाम यह गाना जाता है।

जी दोस्तों, यहाँ एक मैसेज आया है अनीता जी, होप यू आर डूइंग ग्रेट। थैंक यू जी मधुरी जी, हम ठीक हैं और आशा करते हैं कि आप भी ठीक हैं। आप कहती है कि हम भी आर एम फ्री के साथ हैं। वाओ, थैंक यू आपके साथ के लिए ये कोटि कोटि धन्यवाद। और आपने फिल्म आक्रमण का गाना मांगा है आपके लिए और परी के लिए, सो हियर वी गो विद द गाना आक्रमण। ये मौसम आया है कितने दिनों के बाद।

जी दोस्तों, आजा खो जाए ख्वाबो ख्यालों में, ऐसे ही गीत बज रहे हैं कि ख्वाबो ख्यालों में ले जाएंगे आपको। और यहाँ पर सना से विना जी ने साथ ने फ़ोन किया और आप कहती है आप साथ दे रही है और आप सुनना चाह रहे हैं फिल्म खानदान का गाना बड़ी देर भये नंदलाला। और यह गाना आपके पूरे परिवार नंदू परिवार के नाम और आपकी प्यारी बहन गीता के नाम, और यही इस गाने के साथ हम बढ़ेंगे 1 बजे के समाचारों की ओर।

0: लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे याचना नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। ग्रेड 8 के करीब 200 छात्र इस नवंबर नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नीस के नए संस्करण में भाग लेंगे। दो हफ्तों तक वे ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे जिसमें नागरिक कर्तव्य, चरित्र निर्माण, सामाजिक जिम्मेदारी के पालन और आपात स्थिति की तैयारी पर वे सीख पाएंगे। इस साल के नए साल के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था। एक ऐसी पहल जो 14 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। पिछली बार 2012 में इसका आयोजन किया गया था। थोडोरूस में कल 37 साल के चीनी मूल के कर्मचारी की मौत हो गई। जानकारियों के मुताबिक कल दिन के करीब 1 बजे आल्थियो के एक स्थल पर दो चीनी कर्मचारी कंक्रीट के एक खंभे पर ट्रक पर लगे क्रेन के ऊपर लगे प्लेटफॉर्म पर खड़े बिजली संबंधी कार्य कर रहे थे। प्लेटफॉर्म के छूट जाने पर दोनों गिर गए। 37 साल के शिवमा की मौत घटनास्थल पर हुई जबकि एक अन्य कर्मचारी फ्राक अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालत गंभीर है। ट्रक का फिटनेस 7 जून को ढल गया। इस हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए एक जाँच शुरू की गई है। विदेश में भारत के महाराष्ट्र राज्य में टैक्सी और टुक टुक के चालकों को अब से अनिवार्य रूप से वहां की स्थानीय बोली मराठी बोलनी होगी। मराठी सीखने के लिए उनके पास 1 साल की मोहलत है। इसके लिए एक नया नियम लागू किया गया है जिसे लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए उनके और चालकों के बीच संवाद को आसान बनाना है। चलिए जानते हैं, अब सुनते हैं शोक समाचार। धनुष लेन लुई ओशेत्या रूज में खतर साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री सुपाया उसराल जो दसन जनता के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी लक्ष्मी उसराल के मकान धनुष लेन लुई ओशेत्या रूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। गोबिन लेन मेबर्ग में सतीश मैकेनिक के पास 98 साल की 98 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अपलमा जोगाना जो तोंचिन अपलम के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे आत्मा जोगाना के मकान गोबिन लेन मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: सुहाना सफर। जी दोस्तों,

सुहाना सफर कार्यक्रम में पुनः आप लोगों का स्वागत है और आपके प्यार मैसेजेस फोन कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 1:04 हुए हैं और कार्यक्रम को जारी रखते हैं। कटरबोन से केश जी साथ दे रही हैं और आपकी पसंद का गाना बजने वाला है। यहाँ पर फिल्म है बातों बातों में, यह गाना आपके लिए आपकी बेटियाँ नेहा और नितिशा के नाम। साथ ही साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है एक मैसेज आया है, लेकिन पता नहीं किसने भेजा है, लेकिन कहा गया है लवली वेदर लवली सिलेक्शन, थैंक यू जी। और नाम है दागन, श्वेता, काविश, प्रिशा, लविशा और पूरे अपाडू परिवार के नाम। और खुश हुआ तो चलिए यह गाना आप सब के नाम।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, उदासी के दिन कभी तो ढलेंगे और यही मानकर चलना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन है, प्रकृति का ही नियम है कि प्रकृति जो है परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, प्रकृति जो है बदलती रहती है। और यहाँ

पर जो है कुछ भी स्थाई नहीं है, सब कुछ बदलता है। अगर आज दुख है तो ऑफ कोर्स कल सुख आएगा, ऐसा नहीं कि दुख ही दुख होगा। तो ऐसा मानकर चलना चाहिए कि अभी दुख है कोई बात नहीं, हमारे कर्मों का ही हिसाब है, झेल लेते हैं, इसके बाद सुख आएगा। और ऑफ कोर्स अगर हमने अच्छा कर्म किया आज तो ऑफ कोर्स कल जो आएगा वो अच्छा ही अच्छा होगा। तो इस दुनिया में कोई भी जो है कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो इसी के साथ जीवन को जीना चाहिए, और यदि दुख भी हो रहा हो तो इससे हमें सीखना चाहिए कि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो दुख ही मिलेगा, और अगर आज हम अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो हमारा जो भविष्य है वो बेहतर बनेगा। तो इस पर जो है चिंता नहीं करनी चाहिए, और कहते हैं ना अगर ज़्यादा चिंता लेंगे तो चीता तक पहुँच जाएंगे, इसलिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए। और वाकवा से फुलवंती जी साथ दे रही हैं, और आप जो हैं फिल्म छोटी बहू का गाना सुनना चाह रही हैं, और यह गाना जाएगा आपके पूरे बालगोबीन परिवार के नाम एमबीसी टीम के लिए, थैंक यू जी, और आपके सभी जान पहचान के नाम। और इसी गाने की फरमाइश किसने की, आंटी जी कंफोको से हैं, और आपने यही इसी गाने की मांग की है, और प्लीज़ प्ले इट फॉर ऑल कृष्ण भक्त, ऑफ कोर्स यह गाना चल पड़ा।

0: अपना सफर।
1: जी दोस्तों, कृष्णा कन्हैया जो हैं वे सौभाग्य थे कि उनको दो दो माएं मिली थी, एक ने जन्म दिया और एक ने प्यार

और कृष्ण जी ने अपने जो हैं प्रतिज्ञा के अनुसार, अपने वादे के अनुसार, उन्होंने अपने बालपन को यशोदा माँ को समर्पित उन्होंने किया। और कभी कभी देखते हैं कि आपको तो दो दो माएँ मिली, लेकिन कुछ लोगों को एक माँ भी नसीब नहीं होती है। कभी कभी हम जो हैं माँ को बहुत ही कम उम्र में जो है खो देते हैं। तो यहाँ पर जो हैं जीवंत जी बेलवेदिया से हैं, और आप कहती है कि कल आपकी माँ की जन्मदिन थी और आप उनको मिस कर रही हैं, तो उनके नाम पर पुष्पांजलि फिल्म का गाना आप बजवाना चाह रही हैं, और यही गाना आपके सभी भाइयों और बहनों के नाम। और आशा करते हैं कि इस गाने से थोड़ी बहुत आपको जो है दिल में ठंडक होगी। तो चलिए सुनते हैं, जाने चले जाते हैं कहाँ।

दोस्तों कहा गया है कि प्रेम की बारिश और सबको नटखट अदाओं से करने भाव विभोर, आया है नंद किशोर। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयां। यहाँ एक मैसेज आया है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे जी, आप साधना हैं रिव्यदिक खियोल से और आपकी फरमाइश है शाम ढले जमुना किनारे, और यही गाना जाएगा नाती नातिन के नाम, जिया तेजल गौरव क्रियान और सबसे छोटा लड्डू गोपाल, तस्वीर कौ रिव्यदिक खियोल मोदाबे यूनियन पर्क लाहौजा और दुबई के सभी लोग, आपके परिवार जन, जीवन परिवार और रिव्या दे क्रियोल। और इसी गाने की मांग किसने की? अनीता जी विकॉन फ्लैग से।

और आपको हमारे गाने पसंद आ रहे हैं और आप कहती है कि दो तारीख को आपके पोते अंश का जन्मदिन था तो इसलिए आप फिल्म पुष्पांजलि का ही गाना मांग रही है तो हम उनको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो चलिए मना दे को सुनते हैं, साथ ही साथ लता जी साथ दे रही है।

जी दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि कृष्ण जो हैं धरती पर आए थे सबको प्रेम सिखाने के लिए। प्रेम में जीना कैसा है, किस प्रकार से प्रेम के साथ हमें जीना है, प्रेम में समर्पित होना है, किसी को प्रेम देना है। सिर्फ प्रेम ही प्रेम बिखेरना है उन्होंने यहाँ आकर सिखाया है, जिससे दुनिया में घृणा समाप्त हो जाए। और कहा भी जाता है कि प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। और यहाँ पर मौदालबेयर से अनीता जी जो हैं एक छोटी सी पोएम उन्होंने भेजा है कि ना दोस्ती भरी ना प्यार भरा, जो इसे निभा दे वो इंसान बड़ा। तो फिल्म आई मिलन की बेला का गाना आपकी सखियों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, करुणा है, अमृता है, कविता है, सभी दोस्तों के नाम यह सा गाना।

0: का बहाना।
1: जी यहाँ हम बहाने करके आप लोगों से मिलने आते हैं और यहाँ पर कनाडा से जो है किरण पुरी जी साथ दे रहे हैं। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, किरण पुरी हैं, जे जे लाल है, नरेंद्र कुमार निंडी हैं, कलाराम कारीगर है कनाडा से। और अगला गाना खास कर मैंने चुना है आप लोगों के नाम जो कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। सो हियर वी गो।

श्रोताओं, कहा गया है कि कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो स्मशान का एक चक्कर लगाना। कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो स्मशान का एक चक्कर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। अंत में ना दौलत साथ जाती है, ना शोहरत, ना ऊंचा पद, साथ तो जाता है सिर्फ कर्म। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तुम्हें याद करें। हर सांस ईश्वर, प्रभु, अल्लाह या जिस पर जिस भी शक्ति पर आप मानते हैं, हर सांस उनकी देन है। उसे अहंकार में नहीं, सेवा और विनम्रता में बिताओ।

यहाँ पर मौदालबेर से इंदिरा लहुतन जी साथ दे रही है, आप सुनना चाह रही है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का गाना, और यही गाना जाएगा अनीता के नाम, चित्रा, विश्वानी, दीक्षा, कृष्णा, गोपी और सिंह जो अभी लंदन में है। तो चलिए यह गाना आप लोगों के नाम

0: सिखाना सफर।
1: जी दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा जो सिलेक्शन है अच्छा लग रहा है। और बेल्जियम से प्रकाशवती जी साथ दे रही हैं और आप कहती हैं आप कुछ ठीक नहीं हैं, सो गेट वेल सून हम कहेंगे आपको। और आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी कह रही है, थैंक यू इसके लिए। और आपकी फरमाइश है फिल्म मिस मेरी का गाना, एंड यही गाना जाएगा आपके नाम, आपके परिवार जन के नाम। और साथ ही साथ यहाँ पर राधा जी मोचिदा से साथ दे रही है, आप कहती है कि वातावरण अभी खुशमय है, थैंक यू जी। लेकिन जो गाना आप अभी मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, इसलिए फिल्म मिस मेरी का गाना में आपका नाम हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर। और आप कहती हैं मनमोहन कृष्ण मुरारी तेरे चरणों की बलिहारी। ओके, तो ये लता जी की आवाज़ में नहीं मिल रही है, देखूंगी अगर मिलेगी तो भजवा दूंगी। अभी के लिए यह गाना आप दोनों के नाम।

नमस्ते कविता जी, आप दुफ्रिया से साथ दे रही हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म मिलन का गाना, पुरानी फिल्म मिलन का गाना, और यही गाना जाएगा मोहन के लिए, रेखा, अंबिका, प्रेमिला, सबीना, और जिन लोगों को यह गाना काफ़ी पसंद है उनके नाम लता जी और मुकेश जी की आवाज़ों में।

जी दोस्तों, फिल्म चरित्रहीन का गाना जाएगा विशेषकर फ्लाकी निर्मला जी के नाम, साथ ही साथ शातो बेनागैस की ज्योति जी के नाम, अश्नीर, रेखा, सुरेखा और पूरे माधव परिवार के नाम।

जी दोस्तों, और हमारे मिलने का कारण यहाँ पर है रेडियो मनोरंजन की लहरों पर, जहाँ पर हम हर हफ्ते आते हैं आप लोगों के लिए। जी दोस्तों, अब हमारे जाने का समय आ ही गया, एक अंतिम गाना रह गया है और यह गाना विशेषकर रचाएगा हरि जी के नाम जो वो भाषण से साथ दे रहे हैं, और सभी कृष्ण भक्त के नाम। और जिन लोगों को लाइन नहीं मिली है, बबू अनंता है कठोरबोर्न से, सूरीनाम से जयश्री जी हैं और उनकी माता जी हैं ईश्वंती जी, खांगुप से विमला जी हैं, नुथोदाम से रेहाना जी हैं, उन सब के नाम यह अगला प्यारा गाना जाएगा। और इसी गाने के साथ हम आपको कहेंगे बाय बाय, और अगले सप्ताह मिलेंगे।

अगले शनिवार को इसी समय इसी चैनल पर और ठीक 2 बजे समाचार के बाद आप सुन पाएंगे इतिहास के झड़ोगे कार्यक्रम अलका जी के साथ। और हमें इजाज़त दीजिए, थैंक यू आपके साथ एवं जो ध्यान के लिए, बाय बाय।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। फिर से आपसे याचना नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। ग्रेड 8 यानी ग्रेड 8 के करीब 200 छात्र इस नवंबर नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस के नए संस्करण में भाग लेंगे। दो हफ्तों तक वे ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे जिसमें नागरिक कर्तव्य, चरित्र निर्माण, सामाजिक जिम्मेदारी के पालन और आपात स्थितियों की तैयारी पर वे सीख पाएंगे। नए साल के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने इसका ऐलान किया था। एक ऐसी पहल जो 14 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। पिछली बार 2012 में इसका आयोजन किया गया था। थोडरुस में कल 37 साल के चीनी मूल के कर्मचारी की मौत हो गई। जानकारियों के मुताबिक कल दिन के करीब 1 बजे आल्टियो के एक स्थल पर दो चीनी कर्मचारी कंक्रीट के खंभे पर ट्रक पर लगे क्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े बिजली संबंधी कार्य कर रहे थे। प्लेटफॉर्म के छूट जाने पर दोनों गिर गए। 37 साल के शियुमा की मौत घटनास्थल पर हुई, जबकि एक अन्य कर्मचारी फ्लाक अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक का फिटनेस 7 जून को ढल गया था। हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए एक जाँच शुरू की गई है। विदेशी समाचारों में बोलीविया के एक सैन्य अड्डे पर हुए धमाके में कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। करीब 81 लोग घायल हुए और वहां रखे पायरोटेक्निक सामानों के कारण अन्य धमाकों का खतरा बना हुआ है। लोगों से वहां से दूरी बनाए रखने की मांग की गई है। और भारत के महाराष्ट्र राज्य में टैक्सी और टुकटुक चालकों को अब से अनिवार्य रूप से वहां की स्थानीय बोली मराठी बोलनी होगी। मराठी सीखने के लिए उनके पास 1 साल तक की मोहलत है। इसके लिए एक नया नियम लागू किया गया है जिसे लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो रहा है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए उनके और चालकों के बीच संवाद यानी बातचीत को आसान बनाना है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार श्रोताओं, रेडियो मनोरंजन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप हमारे साथ RM3 पर जुड़े हैं और हमारा फोन नंबर तो आपको पता ही है 4028070। हम बात करते हैं इतिहास के झरोखों से। तो सचमुच इतिहास के झरोखे बार बार एक रोशनी फेंकते हैं कि देखो जरा पलट कर। तो अभी हम बात करेंगे इसी इतिहास के झरोखे से।
3: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
4: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
5: इतिहास के झरोखों से
2: इतिहास के झरोखों से स्वागत है आपका। हम तो बैठे हैं आज के समय में, लेकिन इतिहास के झरोखों में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है। उसके बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना और उन चीज़ों को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरत होती है। चलिए एक दो दो पक्षी को ही ले लीजिए। अरे उसका स्केलेटन मिला तो एक जिज्ञासा जाग गई ना कि आखिर है क्या, किस पक्षी का है, कैसा है, क्यों ख़त्म हो गया। तो इतिहास के पन्नों ने बताया कि कोई यहाँ पर यात्री आए थे, अपनी भूख का उन्होंने शमन इस बेचारी मुर्गी को ही खा के कर दिया। आज दुख से हम कहते हैं कि उस पक्षी के केवल अस्थियां बची हुई हैं और कुछ है ही नहीं, लेकिन इतिहास हमें बता

पता है ना कि आखिर हुआ कैसे, कैसे सब खत्म हो गया। अब डायनासोर क्यों नहीं अब दिखते, क्या कारण है? तो इतिहास के झरोखों में जो आविष्कारों की चीजें हैं, जो समझ है, वह बहुत आगे बढ़ती है। चलिए आज हम बात करते हैं। आप जरा कभी आप जर्मनी की मूवी देखिए या जर्मनी की सड़कों को देखिए, भारत की सड़कों को देखिए, चाइना की सड़कों को, आपको साइकिल चलाने वाले दिख जाएंगे। और मॉरिशस में तो साइकिल रेस भी होती है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को साइकिल चलानी आती है। साइकिल के अनेक मॉडल्स आ चुके हैं, लेकिन आखिर साइकिल बनी कैसे, उसकी सोच कैसे पैदा हुई, साइकिल का आविष्कार कैसे हुआ, ये तो भाई इतिहास के पन्नों से ही पता चलेगा ना। लेकिन आज साइकिल का महत्व बहुत बढ़ गया है। आप सभी जानते हैं कोई भी वाहन हो उसको डीजल पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, और जब ये चाहिए तो धुआं भी निकलेगा, और जब धुआं निकलेगा तो फिर सब तरफ वायु प्रदूषण भी होगा। तो ऐसे में बार बार ये कहा जाता है कि साइकिल पर चढ़ना बड़ा ही सही है, क्योंकि जो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं वे पर्यावरण को शुद्ध रखने में योगदान देते हैं। और तो और, जब हम घर से गाड़ी में बैठकर गाड़ी से उतरते हैं, बस में बैठ गए, बस से उतर गए, तो हमारी सेहत भी खराब होती है, व्यायाम नहीं होता है। लेकिन जो साइकिल चलाते हैं वे वर्षों तक स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि साइकिल चलाने में उनके शरीर का, पैरों का, मांसपेशियों का व्यायाम भी होता है। अब तो बहुत से भारत के राज्यों में छात्र साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जर्मनी जैसे देशों में साइकिलिस्ट लोगों के लिए अलग से सड़क के किनारे एक रास्ता होता है, जिस पर बड़ी गाड़ियां या गाड़ी वाले या स्कूटर वाले लोग नहीं जा पाते हैं। तो श्रोताओं, ये जो साइकिल है ना, आज इसका बड़ा महत्व बढ़ गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे, उन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे कि आखिर साइकिल को बनाने की परिकल्पना मनुष्य ने कैसे की, और विज्ञान की इस खोज को जो आज हमारे जीवन में उतर गई है वह कैसे आज कामयाब हुई है। तो चलिए इस गीत को सुन के फिर आपके साथ यात्रा तय करते हैं साइकिल पर।

0: इतिहास के झरोखों से
1: तो चलिए श्रोताओं, अब हम जरा साइकिल पर बैठकर इतिहास के पन्नों की ओर बढ़ते हैं। जैसे आधुनिक सभ्यता तो कलयुग कहते हैं ना, और कल का मतलब मशीन होता है। ये मशीनों का युग है और मशीनों ने मनुष्यता और मानवता को थोड़ा पीछे कर ही दिया है। तो मशीनों का योगदान भी बहुत है। कंप्यूटर युग तक हम पहुंच गए हैं, एआई तक पहुंच गए हैं, और अगले 10 सालों में तो यह घोषणा की जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के दिमाग से 10 गुना जल्दी काम करेगा। अभी कर रहा है। आप ज़रा मोबाइल पर डालिए, एआई पर कुछ भी पूछिए, वह आपको इतनी डिटेल में सेकंड्स में उत्तर दे देता है। तो अब तो यह कहा जा रहा है कि यह यंत्र मनुष्यों से भी आगे निकलने वाला है। खैर चलिए, उसकी चर्चा हम एक और दिन करेंगे। आज तो हम बात कर रहे हैं पहिए के बारे में। मनुष्य ने जब पहिए का आविष्कार किया तो समझो उसके जीवन में भी पहिया चल पड़ा। अभी वह पैदल चलता था, दौड़ता था। उसने जो पहिए का आविष्कार किया तो सबसे पहले इस पहिए के माध्यम से उसने इसमें जानवरों को जोड़ा, और जानवर उस पहिए के साथ उसकी एक सवारी सी बन गई। और यहीं से उसके मन में आया कि ये पहिया ही साइकिल को भी बना सकता है। और शुरू में जब साइकिल की तैयारी शुरू की गई तो ऐसे लग रहा था मानो यह तो हमारे परिवहन का बहुत अच्छा साधन है, और जो व्यक्ति साइकिल को चलाता था उसको काफ़ी परिश्रम करना पड़ता था, जैसे किसी माँ ने बच्चे को गोद में उठाया हो इस तरह से। लेकिन मनुष्य का संबंध अपनी विकास यात्रा के साथ बड़ा ज़बरदस्त है। जर्मनी के बेडेन राज्य के मैनहीम नगर का एक 28 साल का युवक, जो शाही घराने का था और एक धनी पिता का पुत्र था, वह स्वयं तो था वन विभाग का अधिकारी, लेकिन हर समय कुछ नया करता रहता था। यह जो लड़का था, इसके मन में हमेशा यही आता था कि वो जब जंगल में देखता था कि मजदूर भारी भारी लकड़ियाँ उठा के लेकर जाते हैं, उसके मन में बार बार आता था कि मनुष्य कितना भार ढो रहा है। उसने देखा कि मनुष्य का एक पैर जब अगले स्थान के लिए उठता है तो सारा बोझ दूसरे पैर पर आ जाता है, और इस क्रिया में शरीर भी थोड़ा सा झुकता है। तो बस इसको सोचते सोचते उसके मन में आया कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिससे चलते समय शरीर का बोझ पैरों पर बिल्कुल ना रहे, साथ ही शरीर सीधा और तना हुआ हो। पैरों को शरीर के भार से मुक्त करने के लिए इस युवक ने कई प्रयोग किए। यह 28 साल का युवक एकदम जवान और सोच में नए नए आविष्कार करने वाला, लकड़ी के लट्ठे पर बैठकर लुढ़का, बांस की खपच्चियों पर बैठकर उसने अपने आप को धीरे से सरकाया, लेकिन बात बनी नहीं। तथापि फ्रेडरिक लुडविक ने हार नहीं मानी। आप जानते

जो व्यक्ति रिसर्च की रुचि रखता है वह हारता नहीं है, वह आगे बढ़ता है। तब उसने लकड़ी का एक यंत्र बनाया जिसके साथ उसने दो गोल पहिए जोड़ दिए। अब जब उसने ये दो गोल पहिए जोड़े जो एक दूसरे की सीध में थे, अब ऊपर एक उसने काठ की घिरनी सी जोड़ी, घिरनी से तात्पर्य है कि वो पहिया घूमेगा कैसे, और उसने बैठने के लिए जैसे घोड़े पर लोग जीन पर बैठते हैं ऐसे उसने एक यंत्र सा बनाया और दिशा नियंत्रण

0: पंखा की तरह से बना दिया। रिस्वान की ये साइकिल आजकल की साइकिल से बिल्कुल भिन्न थी। उन दिनों शाही परिवार के लोग पालतू पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले वाहन पर यात्रा करते थे। साधारण लोगों के लिए उनके पैर ही परिवहन का साधन थे। अब ड्रिस्वान ने काठ के घोड़े को जब देखा तो उसको देखकर उसने इस पहली साइकिल के निर्माण करने की पूरी कोशिश की। अब उसकी कोशिश थी, ये इतनी जल्दी आविष्कार नहीं होते ना श्रोताओं, किसी भी आविष्कार के लिए एक व्यक्ति का जीवन लग जाता है और कभी कभी तो एक आविष्कार के लिए 4-5 वैज्ञानिकों का जीवन लग जाता है, तब जाकर कोई निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है। तो आइए इस गीत को सुनते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि साइकिल आखिर बनी कैसी।
1: इतिहास के झरोखों से

0: लेकिन बचपन में तो हर बच्चे की इच्छा होती है कि वो साइकिल का पैडल एक बार चलाए। कभी कभी हम गिरते भी हैं फिर उठते भी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जब घर के बाहर बड़ी चौड़ी सड़क हो तो मुश्किल होता है, क्योंकि दुर्घटना घट सकती है, इसलिए माता पिता थोड़ा ध्यान रखते हैं। लेकिन कई देशों में तो साइकिल सीखने, साइकिल चलाने के लिए अलग सरकारें जो हैं अलग से रास्ता बनाती हैं। तो श्रोताओं, आप मेरे साथ रेडियो मनोरंजन पर जुड़े हुए हैं RM3 पर, और आप अपना अनुभव साइकिल को लेकर बता सकते हैं 4028070 पर। और साइकिल क्यों हमें चलानी चाहिए, क्या आज के युग में साइकिल की आवश्यकता है, और मॉरिशस में साइकिल कितनी सफल हो सकती है, इसकी भी चर्चा हम कर सकते हैं। तो आपका स्वागत रहेगा। तो श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं। ये जो ड्रिसवान था, जिसके दिमाग में बार बार चल रहा था कि एक ऐसी सवारी चाहिए जिससे मनुष्य के पैरों पर वजन ना पड़े, तो उसने नकली, क्योंकि घुड़सवारी तो वो करता ही था और घोड़े के ऊपर बैठता ही था, एक अमीर परिवार से था वह व्यक्ति, तो ड्रिसवान ने अब क्या किया, अपना एक काठ का घोड़ा बनाया। अब काठ के घोड़े पर उसने एक इस तरह के पहिए डाले जिसे उसे पैरों से चलाना पड़ता था। अब सुबह सुबह उठ के सैर करने जाता था, लोग किनारे पर खड़े होकर देखते थे, लोग कहते थे कैसा आदमी है ये। अब जो लोग घोड़ा चलाना जानते थे वो इसके नकली घोड़े को देख के हंसते थे, लेकिन ड्रिसवान ने परवाह नहीं की। उसने अपने काठ के घोड़े की सीट पर बैठकर पैरों को बारी बारी से आगे बढ़ाकर उसमें गति पैदा की, और जब थोड़ी गति आ जाती तो दोनों पैर ऊपर उठा लेता। आप याद करिए जैसे छोटे बच्चे अपनी छोटी साइकिल चलाते हैं, एक बार चला के फिर पैर अपने ऊंचे कर लेते हैं, तो ठीक ऐसे ही ड्रिसवान भी प्रयोग कर रहा था। काफ़ी देर तक गाड़ी दौड़ती और फिर उसके बाद जैसे रुक जाती। अपने इस यंत्र को सबसे तेज़ दौड़ाने वाले वाहन के रूप में मान्यता दिलाने के लिए ड्रिसवान ने मेनहीप के कार्लसरुहे तक की 40 मील की यात्रा 4 घंटे में पूरी की, जबकि ये यात्रा 16 घंटे में पूरी होती थी। तो कुछ दिनों बाद ड्रेस ने कार्लसरुहे से लारेन प्रांत की राजधानी स्ट्रासबर्ग तक की भी यात्रा की। इन दोनों यात्राओं से ड्रिसवान के इस अद्भुत वाहन का बहुत प्रचार हुआ। बेडन राज्य द्वारा इसे उसका पेटेंट मिल गया। उन दिनों जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पेटेंट के कानून उतने सख्त नहीं था। एक राज्य द्वारा जारी किए गए पेटेंट दूसरे राज्य में लागू नहीं होता था। इस पेटेंट से ड्रिसवान को कोई लाभ नहीं मिला। सन 1851 में जब वह मरा, उसकी जेब में सिर्फ 52 मार्क्स थे। तो बताना चाहती हूँ कि ड्रिसवान ने बड़ी कोशिश की, लोगों ने आश्चर्य से उसे देखा भी, लेकिन कोई विशेष उसे सम्मान नहीं मिला। तो लेकिन ड्रिसवान की कोशिश, वो जो पहली कोशिश होती है श्रोताओं, इतिहास में आविष्कारकों ने जो पहली कोशिश की वह अपने आप में बड़ी विशेष होती है। हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, हम उनको लेने का प्रयास करते हैं, देखते हैं आप साइकिल के बारे में हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो अलका जी।
0: नमस्कार जी।
1: सत श्री अकाल
0: जी, कहिए।
1: मैं मानो सुहान लिखते हूँ त्रिभुसे से।
0: जी, आपका स्वागत है, बोलिए।
1: आपका शो बहुत बढ़िया है।
0: बहुत धन्यवाद।
1: जब मैंने साइकिल के नाम सुना तो मैंने बोला नहीं, फोन करके बात करना पड़ेगी।
0: हाँ, इसका मतलब आप साइकिल खूब चलाते हैं।
1: नहीं तो देखिए, मैं तो बहुत कम मॉरिशस में थे।
0: अच्छा।
1: और जब मेरा 18 साल था तो मैंने मॉरिशस छोड़ दिया था।
0: अच्छा अच्छा, अब कहाँ हैं आप?
1: हाँ नहीं, अभी तो मॉरिशस में।
0: अच्छा, ठीक है।
1: क्योंकि आपके नंबर लग रहे हैं बाहर का।
0: बाहर का भी उतनी जल्दी लगता नहीं, लोकल जल्दी लग जाता है जी।
1: तो साइकिल के बाद में ये मैं कहना चाहता हूँ कि पहले के जमाने में तो मोटर गाड़ी तो बहुत कम था ना।
0: हाँ, केवल बहुत पैसे वाले या जमींदारों के पास थी।
1: जो पैसे वाले था
0: जी,
1: तो उसके पास था। जैसे हमारा दादा के तो लॉरी था।
0: हाँ, अच्छा।
1: गाड़ी था।
0: क्या बात है।
1: और बैल गाड़ी था।
0: हाँ।
1: साइकिल था।
0: जी जी।
1: तो हमारा परिवार के ये सब था।
0: ठीक।
1: और जो गरीब है तो उसके पास तो सिर्फ एक साइकिल ही।

0: है ना?
1: हाँ
0: लेकिन दुनिया और उसके उम्र और उसके सब कुछ तो गुजर गया ना।
1: जी जी बिल्कुल, वक्त गुजर गया। जी
0: वक्त तो चला गया, गुजर गया।
1: हाँ।
0: और अभी देखो जो पहले साइकिल था तो हम लोग जाते थे जानवर के लिए घास लाने, लकड़ी लाने, और कहीं गुदरेन जाना, गौपा जाना, जहीं भी जाना है तो साइकिल में जाते थे।
1: हाँ।
0: तो वो एक एक तरह साइज हो जाते थे हमारा। हाँ, बॉडी के लिए।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
0: तो अभी वो सब तो नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं है, कम अभी थोड़े थोड़े आ रहा है।
1: हाँ, कुछ लोग खरीद रहे हैं,
0: कुछ लोग अभी खरीद रहे हैं, क्योंकि अब उन लोगों को जाके पता चला कि साइकिल का एक्सरसाइज क्या है।
1: जी, और साइकिल सैटरडे संडे के कामों के लिए साइकिल अच्छा है। हम पेट्रोल की भी बचत करेंगे, फ्यूल की भी बचत करेंगे, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा करेंगे, तो बेहतर है।
0: सब्जी लेके जाते थे साइकिल में बाजार में बेचने।
1: जी जी,
0: तो इतने काम करते थे हम साइकिल में।
1: बहुत सुंदर।
0: अभी देखो अभी देखो कितने नौजवान के बीमार हैं।
1: जी जी, वो गाड़ी बंद करके ब्रेड लेने भी गाड़ी में जाते हैं। जी,
0: गाड़ी लेते हैं द्वार में।
1: हाँ।
0: उतरते हैं द्वार में, सब जाते हैं द्वार में, उतरते हैं द्वार में, इतने मोटापा हो गया है।
1: बिल्कुल, ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है। जी,
0: इतने बीमार हो गए हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग मर चुके हैं, कितने हाँ। लोग इतने मुसीबत में हैं।
1: जी जी, तो बिल्कुल।
0: और अभी देखो घर पे कोई खाना बनाते नहीं है,
1: सब
0: बाहर खाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, जाते हैं गाड़ी से द्वार पर उतरते हैं। तो क्या होगी ये दुनिया
1: देख लीजिए, पता ही नहीं चलता, खड़े खड़े आदमी चला जाता है।
0: खड़े खड़े क्या, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल पता नहीं बात करेंगे या मर के चले गए,
1: कौन जाने। बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल,
0: ये सब हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए।
1: बहुत सुंदर बात है।
0: अभी से गाड़ी बेच दो, साइकिल खरीद लो। साइकिल में जाओ, हॉपर गुडलैंड शहर जाओ। हमारा बाप पिता तो शहर जाते थे, जाते थे साइकिल में।
1: जी जी, 20-20 किलोमीटर था।
0: हाँ, जाते थे आते थे, और वो बहुत काम नौकरी करते थे। अभी देखो चल के पैदल जाते हैं, बस स्टॉप है, हाँपते हैं।
1: हाँ, तो क्योंकि आदत नहीं ना चलने की,
0: हाँपते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं। कौन है एक्सरसाइज करने का? तो ये इस तरह के मैं, ये हमारा जो बोल है आज का, तो ख्याल रखिए अपना,
1: धन्यवाद।
0: और साइकिल खरीदिए, साइकिल में जाइए, और ये गाड़ी छोड़िए, पर ये जितने अभी नया नया चीज है तो ये सब बीमार ला रहा है।
1: बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
0: मैं कहूँगा बहुत धन्यवाद, अपने प्रोग्राम बहुत बढ़िया है।
1: शुभ दिन।
0: तो एक बढ़िया सा गाना मुकेश के लगा दीजिए।
1: लगा देंगे। ओके, धन्यवाद। शुभ दिन, शुभ दिन। बहुत सुंदर, देखिए क्या सुंदर बात उन्होंने कही है। सचमुच आपने जुड़कर, आज पूरी दुनिया की चिंता है, ये ओबेसिटी बढ़ रही है, हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, और देखिए पेट्रोल की तो कितनी दिक्कत है। इतनी लड़ाई इस पेट्रोल के लिए हो रही है कि जहाज ही नहीं निकलने दे रहा अमेरिका, और आपस में इतना उलझन चल रही है, तो इसकी भी बचत की ज़रूरत है। तो मतलब सोने पे सुहागा होगा यदि हम साइकिल चलाएंगे। बहुत से लोग अब मैं देखती हूँ कि सुबह ब्रेड लेने जाते हैं तो साइकिल से जाते हैं, आसपास सब्जी वब्जी लेनी है तो साइकिल से जाते हैं। ठीक है, जहाँ गाड़ी की ज़रूरत है उसके बिना गुजारा नहीं तो लेनी ही है, लेकिन साइकिल को भी आगे बढ़ाना चाहिए, और नौजवानों के लिए तो विशेष रूप से, जैसे अभी भाई साहब ने कहा। तो श्रोताओं, सचमुच ये साइकिल हमारी जीवन पद्धति में परिवर्तन ला सकती है, और जर्मनी तो साइकिल को लेकर बहुत प्रयोग कर रहा है, रास्ते अलग बना रहा है, साइकिल को प्रमोट कर रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में बच्चों को भी प्रमोट किया जा रहा है कि वे लोग साइकिल खरीदें। तो ड्रेसवान बेचारे ने बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं मिला। लेकिन श्रोताओं, जब हम इतिहास के झरोखों में झाँकते हैं ना, तो आविष्कारक को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई नई चीज़ जिसके दिमाग में पहली बार आती है उसका बड़ा महत्व होता है, उसके उस आविष्कार के बाद आगे बहुत आविष्कार होते हैं। किंतु क्या हुआ, उसके इस आविष्कार की चर्चा कुछ अन्य देशों में होने लगी कि अरे वाह, वह तो 16 घंटे की यात्रा 4 घंटे में उसने पूरी कर ली, तो आखिर कुछ तो पहिए उसने ढंग से बनाए होंगे ना। इधर लंदन और पेरिस जैसे शहरों में भी इस तरह की घोड़ा गाड़ी अमीर घरों की शोभा बन गई, और इंग्लैंड के शाही घराने के लोग सुबह शाम अब इसी में सैर करने लगे। जर्मनी में कुछ मजाकिया लोगों ने इसे कहा काठ का घोड़ा। आपको याद है ना गाना, लकड़ी की काठी।

0: काठी पे घोड़ा, काठ का घोड़ा कहा, जबकि इंग्लैंड में इसे हॉबी हॉर्स के नाम दिया गया कि भाई ये तो हॉबी हॉर्स है, आपका मन है आप इस पे चल के सैर करते हैं और आप काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, थोड़ी देर पाँव से चलाइए फिर पाँव पर उठा लीजिए। प्रशिक्षण देने के लिए देखिए कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। रिस्वान तो चला गया दुनिया से, लेकिन इंग्लैंड में, लंदन में, पेरिस में काठ का घोड़ा हॉबी हॉर्स कह के लोग इसको चलाने लगे और कुछ लोगों ने ट्रेनिंग स्कूल खोल दिया और ट्रेनिंग स्कूल में स्कूल के चिकने फर्श पर रईस घरों के युवक और युवतियां गोलाई में हॉबी हॉर्स को चलाकर अपना मन बहलाते थे। आप सोच सकते हैं जैसे स्केटिंग के लिए लोग जाते हैं और बड़े खुश होकर एक हॉबी को पालते हैं, ऐसे ही वह जो हॉबी हॉर्स था वो एक ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंच गया और अब बड़े घरों में उसको भी सिखाया जाने लगे। तो चलिए श्रोताओं बढ़ते हैं हम आगे।
1: इतिहास के झरोखों से,
0: तो जब इतिहास के झरोखों में साइकिल का भाग देखा तो लगा कि वाह, चाहे उसने थोड़े समय के लिए प्रयोग किया, जीते जी जो सम्मान न मिला उसके बाद तो उसको मिला ही। तो श्रोताओं आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं 4028070 पर RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ। तो चलते हैं गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

श्रोताओं, सचमुच जो आविष्कार करते हैं वो डरते नहीं हैं, वो अपना जीवन इसमें लगा देते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4028070 पर। आप ये जो काठ का घोड़ा या हॉबी हॉर्स के नाम से जो घोड़ा प्रसिद्ध हुआ, इसको अमीर लोग इस्तेमाल करने लगे। अब ड्रेसवान का हॉबी हॉर्स कई सालों तक रईस घरों के युवक युवतियों के लिए खेल की वस्तु बना, क्योंकि इसको थोड़ी देर पैरों से चला के तब छोड़ना पड़ता था, तब ये दौड़ के आगे जाता था, फिर से पैरों से चलाओ। तो जैसे उनके लिए खिलौना के और इस पर पैसे लगते थे, तो इसीलिए अमीर घर के या रईस घर के युवक युवतियाँ इसको इस्तेमाल करते थे। यद्यपि जर्मनी के कुछ इंजीनियरों ने ड्रेसवान के नाम पर इसका नाम ड्राइसिन रखा, यही बाद में साइकिल बना। इसमें कुछ सुधार भी किए, जैसा ड्रेसवान चाहता था कि वह ऐसी सवारी

0: बनाए कि वह व्यवहारिक हो, वह नहीं बन पाई। अभी इसमें बहुत सुधारों की ज़रूरत थी। सन 1839 में स्कॉटलैंड के डम्फ्रीज नगर के निकट कोट हिल नामक स्थान पर रहने वाले कर्क पैट्रिक मैकमिलन नाम का एक लोहार रहता था। लोहार मतलब ब्लैकस्मिथ, जो लोहे का काम करता है। उसने सोचा कि इसमें वो कुछ सुधार कर सकता है और उसे व्यवहारिक रूप दे सकता है। देखिए, सालों तक हॉबी हॉर्स के रूप में कितने लोग उसे इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जिसके दिमाग में कुछ करने की इच्छा या वो सृजनशीलता होती है ना, वही आगे बढ़ता है। तो ये जो मैकमिलन था, पैट्रिक मैकमिलन जो लोहार था, इसके मन में बार बार आने लगा कि इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। और वो लोहार था तो उसके पास काफ़ी औजार थे और अनुभव भी था वर्षों का। 3 साल उसने इस हॉबी हॉर्स में कुछ सुधार किए। देखिए श्रोताओं, 3 साल, एक तरफ ड्रेसवान का पूरा जीवन चला गया तो थोड़ा एक हॉबी हॉर्स तक वो पहुंचा। अब मैकमिलन ने कोशिश की और 3 साल करने के बाद थोड़ी सी उसे कामयाबी मिली। अब ड्रेसवान की वो जो एक लीकी गाड़ी पर बैठने वाले व्यक्ति को बार बार ज़मीन पर पैर रखने पड़ते थे और फिर गाड़ी को वो एक रेस देता था, वो चलती थी, लेकिन इसने उसको ऐसा बनाया कि आपको पैर बार बार ज़मीन पर नहीं रखने पड़ते थे और ना ही इसको पैर से एक बार धक्का मारना पड़ता था। ये काम आप सीट पर बैठे बैठे ही कर सकते थे। किसी पहिए को घुमाने के लिए उसकी धुरी में एक डंडा जो है वो समकोण बनाते हुए जोड़ दिया जाए तो उस डंडे में कई आड़ा दस्ता लगाया और उसे पकड़ कर पहिया घुमाने लगा। पहिए का भाग क्रैंक कहलाता है। मैकमिलन ने इस क्रैंक को ड्राइसिन के पिछले पहिए में लगा दिया। सन 1842 में मैकमिलन ने ड्राइसिन का सुधरा हुआ रूप जनता के सामने रखा। अब काफ़ी सुधार हो गए थे उसमें, अब बार बार पैर को ज़मीन से नहीं लगाना पड़ता था। अब जब लोगों ने इसको देखा और उसने यात्रा तय की, उसी वर्ष उसने डम्फ्रीज से ग्लासगो तक की 40 मील की यात्रा ड्राइसिन से की। जो साइकिल थी इसका नाम ड्राइसिन रखा गया था। इसको 2 दिन तो लग गए, लेकिन बड़ा खुश था वह कि यात्रा बड़ी ही सुविधाजनक थी। और मैकमिलन ने अपने इस वाहन से फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और यूरोप के कई देशों की और जर्मनी की तो पूरी यात्रा कर डाली। कुछ लाभ भी हुआ, कुछ हानि भी हुई। कुछ लोगों ने विरोध किया तो कुछ लोगों ने उसका समर्थन भी किया। चलिए, लोगों का समर्थन और हमारे साथ हमारे एक साथी जुड़ गए हैं, हम उनको लेते हैं और देखते हैं कि वे साइकिल को लेकर क्या कहना चाहते हैं। हेलो।
1: हाँ बहन जी, नमस्ते।
0: नमस्ते बहन जी, कैसी हैं?
1: अच्छी हूँ बहन जी।
0: स्वास्थ्य रहे आपका, हम यही चाहते हैं। हाँ। जी,
1: तो मेरा कहना है बहन जी,
0: हाँ,
1: कि साइकिल चलाने से पहले
0: हाँ
1: कितने बार गिरते हैं, कितने बार उठते हैं।
0: हाँ, बचपन याद करो तो सब याद आता है।
1: हाँ।
0: कितनी बार घुटने टूटे, कितनी बार
1: हाँ
0: हाथ में दर्द हुई, पर माँ ने हल्दी वाला दूध भी पिलाया।
1: चोट पर चोट लगती है।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और उस पर दवा लगाई जाती
0: है। लेकिन जब आप उड़ने लगते हैं तो बस फिर पूछिए मत।
1: हाँ, तब जाकर लोग कामयाब होते हैं। हाँ, ना साइकिल चलाने में।
0: साइकिल की वो भी जिंदगी की शिक्षा है बहुत बड़ी। जी,
1: गिरना उठना।
0: जी जी, बिल्कुल।
1: जिसने भी साइकिल का आविष्कार किया ना बहन जी, उसने बहुत उपकार किया।
0: सच,
1: पुराने समय में साइकिल एक ऐसा साधन, उपयोगी साधन था कि बैलगाड़ी भी, यानी दो पहियों की जो गाड़ियों
0: जी, जी, जी,
1: बहुत उपकार के साधन होते थे ना।
0: सही कह रहे
1: हैं। उसी समय लोग कैसे करते हैं, घास लाने जाते थे साइकिल में, बैलगाड़ी में। हाँ, यही तो दो साधन थे, दो पहियों वाला, जिसने सामान ढोया जा सके।
0: जी, जीवन चल रहा था उसके सहारे।
1: हाँ, तो दुकान जाने के लिए
0: जी,
1: काम निपटाने के लिए ये सब साइकिल बहुत काम आता था बहन जी।
0: जी, सही कह रही हैं, बिल्कुल
1: बहुत काम आता था। और जैसे जल्दी से कहीं जाते आते थे। अब चलो, अगर कैसे कहते हैं,
0: आज तो बहन जी बहुत जरूरत है बच्चों को साइकिल प्रमोट करने की।
1: आज भी अगर बच्चे चाहते हैं साइकिल चलाना तो

0: सेहत के लिए ठीक है
1: जी,
0: सर्वांगीण विकास के लिए ठीक है,
1: पर्यावरण के लिए ठीक है,
0: हाँ शारीरिक विकास के लिए भी ठीक है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है बहन जी,
1: बिल्कुल
0: मैं तो ऐसे जानती हूँ ना।
1: और बच्चे जब साइकिल चलाएंगे तो थोड़ा मोबाइल से भी हटेंगे,
0: हाँ क्योंकि उनका ध्यान इधर रहेगा, हाँ, ना कब जाएगा थोड़ा सुन
1: जी,
0: कैसे कहते हैं सवारी करने इधर उधर घूमने जाएंगे,
1: बिल्कुल
0: ना?
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: तो सही कह रही, बहुत धन्यवाद बहन जी जुड़ने के लिए और आपको शुभ दिन। तो हमारे साथ बहन जी जुड़ी और उन्होंने सचमुच जो श्यामा जी ने बातचीत की सही कह रही हैं वो, कि साइकिल से जुड़ना चाहिए। उस जमाने को भी वो याद कर रही हैं जब साइकिल एक तरह से बहुत बड़ी सवारी थी, साइकिल के सहारे घर के कितने काम निपटते थे। आज तो बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वे साइकिल चलाएं। तो चलिए श्रोताओं, हम बात को आगे बढ़ाएंगे इस गीत के बाद।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.
4: इतिहास के झरोखों से

0: हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं, तो हम जरा उनको लेते हैं, देखें वे क्या कहते हैं इस साइकिल को लेकर। हेलो हेलो हेलो जी हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्ते।
1: प्रणाम बहन जी।
0: प्रणाम।
1: आप क्या जी? मैं ज्योति हूँ।
0: हाँ ज्योति जी, कहिए कैसी हैं आप?
1: बॉम्बू से बोल रही हूँ।
0: कहाँ से?
1: मैं बॉम्बू से बोल रही हूँ।
0: बॉम्बू से जी, कहिए।
1: मैं जी, वैसे तो साइकिल के बारे में मैं नहीं चला पाई साइकिल, लेकिन मेरे पिताजी चलाते थे साइकिल पहले। जब मैं छोटी थी ना, तब पिताजी जब हम स्कूल से वापस आते थे घर, पिताजी हमको पीछे में बैठ कर, जो होता है सीट,
0: मजा आता है बड़ा
1: बैठ कर।
0: अरे पिता के पीछे बैठ के जाने में लगता है राजा बन के जा रहे
1: हैं। आनंद होता था, ये कहने वाली बात है। आजकल आप देखेंगे कि गाड़ी द्वारा लोग अपने बच्चों को वापस स्कूल से वापस लाते हैं, तो गाड़ी को लेकर जाते हैं ना।
0: हाँ, लेकिन साइकिल के पीछे तो लगता था हम दुनिया के राजा बैठ गए हैं।
1: पिताजी चलाते थे, जो आनंद आप सब कुछ देख सकते हैं, लाइट हवा खुली हवा में हम लोग चलते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: वापस आते या कहीं भी जाते थे तो पिताजी हमको पीछे वाले सीट में बैठा कर हमको घुमाने ले जाते हैं, कभी शॉप दुकान में जाते थे, स्कूल जाते, कहीं कहीं पर। लेकिन आनंद बहुत आनंद मिलता था।
0: लिया आपने उसका आनंद बहुत। चलिए बहुत बढ़िया, आपने अनुभव बांटा और मुझे भी याद आ गया कि जब कभी देर हो जाती थी तो हम पिताजी को पटाते थे कि आज हमें साइकिल पर छोड़ कर आइए।
1: बहन जी, अंत में मैं आपको शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर।
0: बहुत धन्यवाद आपको भी।
1: भगवान कृष्ण, धन्यवाद भगवान कृष्ण सब पर अपना कृपा बरसाते
0: रहे। जी बिल्कुल,
1: हर साल यानी कि न सिर्फ जन्माष्टमी के अवसर पर, उनको कृष्ण से प्रेम है हमेशा के लिए, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, उसके आते हैं, पूजा करते हैं।
0: बहुत धन्यवाद आपको, शुभ दिन।
1: आपने मुझे अवसर दिया है बात करने के लिए आपसे, धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, सचमुच बहुत प्यारी बात उन्होंने अपने बचपन की याद दिलाई। अरे बड़ा मज़ा आता है साइकिल पर, कोई बिठा के ले जाए तो क्या कहने। ये तब पता चला जब खुद ड्राइविंग आने लगी। पहले लगता था वाह गाड़ी खुद ड्राइव करेंगे तो मज़ा आएगा, अब यदि कोई और ड्राइव करे और आपको बैठ के जाना हो तो अलग ही आनंद होता। और पिता की साइकिल पर तो पूछिए, मेरा लगता है कि राजकुमारी बन के या राजकुमार बन के जा रहे हैं। खैर आविष्कार की ओर बढ़ते हैं। अब ड्राइसिन को लेकर चीज़ें जो है उसमें काम होने लगा। अब मैकमिलन ने अपने वाहन से फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी की भी यात्रा की, और कभी कभी तो उसको बहुत तकलीफ भी झेलनी पड़ी। जैसे वो जब अपनी ड्राइसिन चला रहा था तो एक बच्चा सामने आ गया, मैकमिलन चिल्लाया, बच्चे हैं ध्यान नहीं देते हैं। सड़क पर ढाल होने के कारण मैकमिलन ड्राइसिन को रोक ही नहीं सका और बच्चे को टक्कर लग गई। साइकिल के इतिहास में ये पहली दुर्घटना थी कि साइकिल से भी ऐसे टक्कर मार दी बच्चे को। जनता की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में मैकमिलन पर उस जमाने में 5 शिलिंग का जुर्माना लगा। मैकमिलन ने ड्राइसिन में और सुधार किया, उसने उसके पहिए को घुमाने के लिए जो क्रैंक लगाया था अब उसमें उसने एक छड़ी डाली, अब जो आगे पीछे खींची जा सकती थी। मतलब वो कोशिश कर रहा था कि ब्रेक कैसे लगे। यह तो हम सभी जानते हैं कि डंडे आदि के बीच में कहीं टेक देकर देने से वस्तु को हटा

नया उठाने की युक्ति लगाई जाती है। तो ड्रायसन को लगा, ड्रायसन में मैकमिलन ने क्रैंक को लगाकर कोशिश की कि जैसे रेलगाड़ी के इंजन में भाप से शक्ति बनती है और सिलेंडर अंदर बाहर आने जाने वाले लोहे की छड़ों को जो पिस्टन कहते हैं, उसने इसी पिस्टन से दूसरी लोहे की छड़ को जोड़ा और पहिए की धुरी में उसने लगाया। पहिए की धुरियों में बाहर की ओर एक आधा गोले की तरह से पिस्टन को अड़ाकर उसने यह कोशिश की कि ड्रायसन जो है वो हमारे कंट्रोल में हो सके। लेकिन काफ़ी मुश्किल काम था, इतनी आसानी से नहीं हो पा रहा था। 10 साल मैकमिलन ने इसमें सुधार करते करते अंततः वह एक निष्कर्ष तक पहुंच पाया और फिर आजकल साइकिल सवार को क्रैंक में लगा चौड़ा भाग दबाना पड़ता था, इसी को पैडल कहते हैं। जब एक पैडल को पैर की सहायता से आगे दबाव डालते थे तो दूसरा पैडल ऊपर जाता था। तो इस तरह से उसने पहिए को घुमाने की तरह की क्रिया में और गति पैदा की। अब जब उसने इसमें गति पैदा की तो ये जो गति थी, इस गति से साइकिल में, या कहें कि जो साइकिल का नाम था ड्रायसन, उसमें एक और परिवर्तन आया। तो धीरे धीरे करते करते काफ़ी सुधार तो हो रहे थे, लेकिन ड्रायसन का वज़न लगातार बढ़ता जा रहा था। अब अगर वो भारी होती जा रही है तो और समस्या हो रही थी। भार होने के कारण लोहे के खोखले पहियों में भी अब शरीर से जब चलाते थे तो बाप रे बहुत थकान होती थी, और उबड़ खाबड़ रास्तों पर तो ये साइकिल चलाओ तो हड्डियां दुखने लगती थी। इस कारण कईयों ने इस साइकिल को बोन शेकर, हड्डी हिलाने वाली भी कहा। और 1886 में अमेरिका के लालमेंट नामक यंत्रकार ने बोन शेकर के नाम से इसका पेटेंट भी ले लिया था।

बस साइकिल भी जिंदगी ढूंढती हुई आगे बढ़ने लगी। इसका नाम बोन शेकर। अब उसके बाद आगे जो परिवर्तन होते रहे, दुर्घटनाएं बहुत होने लग गई थी, भारी हो गई थी। अब इसका नाम पेनी फादिंग रख दिया गया कि एक 25 पैसे और एक 50 पैसे। और 1870 में पेनिंग फादिंग को सबने बाइसिकल का नाम दे दिया और फिर से इसका पेटेंट भी बना दिया गया। बाइसिकल शब्द अंग्रेजी के बाई और सिकल शब्द से बना है, मतलब बाई का अर्थ होता है दो और सिकल का मतलब

चक्र तो बाइसिकल इसका नाम पड़ गया। अब सुधार इसमें होते रहे चलते रहे, लेकिन आधुनिक युग में एक कोई पशु चिकित्सक थे श्रोताओं, उस पशु चिकित्सक ने इस पर काम करना शुरू किया और ये चिकित्सक थे जॉन बाय डनलप और स्कॉटलैंड के निवासी थे और 10 वर्षीय पुत्र जॉनी डनलप के स्कूल में साइकिल दौड़ होने वाली थी। पुत्र ने पिता से साइकिल में कुछ ऐसा उपाय करने का आग्रह किया जिससे साइकिल उसकी सबसे तेज दौड़े। तो अपने पुत्र को विजयी बनाने के लिए इसी इच्छा ने वह जो पशु चिकित्सक था उसके भीतर जो डनलप जिसका नाम था एक आविष्कारक जाग गया। बस बगीचे में बैठा अपने पुत्र की सहायता करने के लिए सोचता रहा, उसकी नज़र एक रबड़ के पाइप पर पड़ी। बस उसने रबड़ के पाइप के दो टुकड़े काटे, उनको आपस में जोड़ा, छल्ले बनाए ताकि साइकिल गिरे ना और आगे चल सके, उसने डोरियों से बांधकर उसका काम किया। जॉन बायट डनलप द्वारा अनजाने में यही प्रणाली बाद में उसकी ट्यूब बनी जो आज साइकिल में ट्यूब होती है। तो श्रोताओं 1888 में डनलप ने अपने इस आविष्कार को पेटेंट करा लिया। तो आप देखिए साइकिल उद्योग आगे बढ़ने लगा। फ्रांस के माइचॉक्स नामक एक व्यक्ति ने पेरिस में साइकिलों के निर्माण का कारखाना खोल दिया और 1870 के आसपास की बात है, साइकिल तब जनसाधारण के नहीं होती थी, बड़े बड़े अमीर लोग इसको इस्तेमाल किया करते थे। तो श्रोताओं धीरे धीरे चलते चलते ये साइकिल अमीर से गरीबों तक आई और आज तो जो चाहे, महंगी साइकिल भी है सस्ती भी है, पर पर्यावरण को साइकिल बचा पाएगी। तो श्रोताओं इस गीत के साथ ही हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और 3 बजे आप समाचार सुनेंगे और उसके बाद आज की चर्चा कार्यक्रम का आप आनंद उठाएंगे जो चर्चा आपने सुबह भी सुनी थी। तो चले श्रोताओं इसी के साथ अलका धनपत को विदा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। तैयार किया जा रहा यूथ पेपर यानी आगामी कप 31 के मद्देनज़र युवाओं की स्थिति और उनके विचारों को सामने रखने वाला दस्तावेज़ है। कप 31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर के बीच तुर्की में किया जा रहा है। इन विषयों पर राजीव गांधी साइंस सेंटर में दो दिनों तक चर्चा की जा रही है। ये पहल पर्यावरण मंत्रालय और यूथ लीडरशिप काउंसिल की है, जिसमें राष्ट्रसंघ और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त का समर्थन प्राप्त है। तैयार किए जा रहे इस दस्तावेज में बायोमिमिक्री यानी प्रकृति से प्रेरणा लेकर इंजीनियरिंग और टेक्निक की समाधान विकसित करना, किसानों के लिए कृषि कैलेंडर तैयार करना, साथ ही कम उम्र से ही प्रकृति संरक्षण से जुड़े कानूनों की शिक्षा देना जैसे मुद्दे आदि को शामिल किया गया है। ग्रेड 8 के करीब 200 छात्र इस नवंबर नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस के नए संस्करण में भाग लेंगे। दो हफ्तों तक वे ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे जिसमें नागरिक कर्तव्य, चरित्र निर्माण, सामाजिक जिम्मेदारी के पालन और आपात स्थितियों की तैयारी पर भी सीख पाएंगे। नए साल के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था। एक ऐसी पहल जो 14 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। पिछली बार 2012 में इसका आयोजन किया गया था। विदेश समाचारों में बोलीविया के एक सैन्य अड्डे में हुए धमाके में कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। करीब 81 लोग घायल हुए हैं और वहां रखे पायरोटेक्निक सामानों के कारण अन्य धमाकों का भी खतरा बना हुआ है। लोगों से वहां से दूरी बनाए रखने की मांग की गई है। और भारत के महाराष्ट्र राज्य में टैक्सी और तुक-तुक के चालकों को अब बस से अनिवार्य रूप से वहां की स्थानीय बोली मराठी बोलनी होगी। मराठी सीखने के लिए उनके पास 1 साल की मोहलत है। इसके लिए एक नया नियम लागू किया गया है जिसे लेकर काफी विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। यहाँ आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: You're listening to RM3 Radio।

0: आप सबको के नमस्ते। आज की चर्चा में हम किरण आप सबको के स्वागत करत है। आज जोन विषय पर हमने चर्चा करब जा हमने के सड़क पर जोन कानून के एगो नयापन अनगल कानून में उ विषय पर बातचीत हुई। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट एक्ट 2026 पर बातचीत करे खातिर आज हमने के स्टूडियो में मेहमान हवन सब इंस्पेक्टर मिर्जा बुधन जी। मिर्जा बुधन जी नमस्कार।
1: नमस्कार, आदाब किरण जी।
0: आदाब। आज के ई कार्यक्रम में हमने आज से जाने चाहब जा कि जो सबसे बड़ा चर्चा के विषय बनल बा अभी आजकल, मंगर के दिन हमने के पौलमा में एगो कानून के सख्त करे पर नवा कदम उठावा गल बा और रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट एक्ट 2026 पर जितना भी फैसला लेवल गल बा जेकर से जनता के सीधा रूप से संबंध बा उ लोग के चाहे जाने के एकर बारे में थोड़ा ई विषय पर हमने आज बतियाब जा। सबसे आगे तो हमने के बतावा कि अगर ब्रेफ मोटा मोटा तौर पर जे जाप जा दिखे चाह जा कि ई जो कानून बा ओकर में कौन अमौन मो आने गल बा तो कौन मुख्य जो बात बा उ सकबा बोली।
1: हाँ देखा है तो एगो बड़ा बात है और हमने खातिर हमने के पुलिस खास कर ट्रैफिक ब्रांच के और सेफ्टी के जो हमने के लिए नीति है हमने खातिर एगो बहुत बड़ा परिवर्तन आनल गलबा और जो आय और अभी समय में कि जो सबले जो लैपाक करेला से जब एगो आदमी के जान चल जाला एक्सीडेंट से जब एगो फाताल गोद एक्सीडेंट होला तब बहुत कोई अफसोस भी महसूस कर अपन सहपाची भी दे तो एकर में एक मजा है कोचिने किसे भी देते भी देने तो हमने के सड़क पर एक्सीडेंट कोचिने हो लाल बा तो एकर खातिर एगो एगो किसी बोल से एगो मौतू से एक मजा

arrêter les cathédrales, il y a un changement, la loi, mais quand on s'est annexé, il y a un voté au Golbahabi prochainement. तो एक में जो सबले बड़ा है से जब एक आदमी के जान चल जाला था जब एक आदमी अपन लावी पे अच्छे जाला तो जो हो आदमी कुपाब जो रही जो आदमी जो ना वो एक्सीडेंट कर ले वजह कुपाब रही तो ओकर खातिर बहुत बड़ा एगो सेंटेंस अभी पहले तो हाँ लामान रहल अभी देखा प्रोमियर थी जब कोजिंग डेथ बाय डेंजरस ड्राइविंग यानी कि जब तू गाड़ी चलावा तो ऐसे नो फासो में और जो डेंजरस ड्राइविंग से एक मजे हो के आदमी के ऊपर जान चल गल तो एक जुर्माना जो पहले 50,000 रुपी रहल 50,000 रुपी से 100,000 रुपी तक रहल तो एक जुर्माना 100,000 रुपी से 150,000 रुपी तक हो जाता देखा जुर्माना के तौर पर यानी कि लामान जो रही पे करे के तो एक एक मजा बढ़ा दे रहा और बढ़ा लेन सही फासो में जो आदमी सौची हुई और है जे अब आदमी के जब एगो है जब ओकर सौतों से लामान सही थे तो ओकर डिस्क्वालिफिकेशन भी आवेला तो ओकर डिस्क्वालिफिकेशन जो अपन लाइसेंस के मजे तो जो सेवी कर तला ओके 2 से 3 साल बना देलो सा 3 बरिस तक नहीं सक गाड़ी चलाई है से पहला हला अब जो आदमी एगो रिपीटे कर ला दूसरा लाइसेंस एगो का कर था तो ओकर लामान कुमोसो हुई 400 मील से 800 मील तक और ओकर डिस्क्वालिफिकेशन ओके 7 साल तक ओके वो डिस्क्वालिफाई रही अपन गाड़ी चलाई की तो देखा हाई बोल जला मजा एगो फासो में कि तू गाड़ी चलेला डेंजरसमेंट निमन से रिस्पॉन्सिबल से नहीं और एकर खातिर कोई के जान चल गल तो देखा तब तोहर जुर्माना में पिस तोहर लाइसेंस पर भी एगो सॉन्क्शन होता है एगो भारी सॉन्क्शन जिनसे आदमिया सोची हुई कि हाँ एगो बहुत मूवे काम कलक एगो बहुत मूवे काम कलक और ओकर ओकर सौतौसों के मिलल अब देखा है ये बात अब जो आदमी गाड़ी चलेलक और एगो एक्सीडेंट करलक और हाउ बखत वो शराब या फिर ड्रग के ओकर लेफ्लियंस में रहल पॉजिटिव रहल और हाउ हादसा हो गल तो एकर भी एकर लामान देखा अभी तो 50 से 100 मील रहल तो एकर लामान 200 मील से 500 मील हो जाता और एकर डिस्क्वालिफिकेशन 3 साल से 5 साल तक हो आदमी के ओकर लाइसेंस डिस्क्वालिफाई हो जाए और एक जिस चीज़ा में रिपीटे कर लक दिसम्फा जैसे हुई तो एक लामान 500 मील से कुमोसो हुई 1 मिलियन तक सकी एगो ओकर ओकर सौक्षण रहे और ओकर डिस्क्वालिफिकेशन 10 बरिस तक उस सकी मजा वो आदमी ए अथी नहीं गाड़ी चलाई क्योंकि धुआं नहीं रही तो है सब सौक्षण बहुत है बुलत है ये सब लालवा में प्रिकॉशनरी और बात अब जब माजिस्रा जब ऊ देवेला तो ओकर पर है कितना ओके सौक्षण देवेला है ओगो रहल है 2 गो जो एक्सीडेंट होला ग्राव जो में आदमी के जान जाला तो कैसे होला अब एगो और है एगो नावा है अमोदमन है एगो नावा आजूते के लवन सामने के लालवा में ये बोले कि गाड़ी चलावा थो एगो आदमी के ओकर जान चल गल और हाउ समय तोहर लाइसेंस नहीं बा देखा हमेशा हमने बताया ना आदमी के लाइसेंस नहीं बा तो आदमी के तू हाई ऑफेंस है और इतना लामान पे करवा तो अब जे हाउ हाउ हाउ वक्त तोहर लाइसेंस नहीं बा और जब लौके थोल देखल तोहर लाइसेंस नहीं बा और हाउ वे लेता हूँ देखा जा कि एगो आदमी के जान चल गल बा तो एकर में भी एगो एगो एगो एगो एकर एकर हाई नवा शिक्षुआ आजूदे कर और एकर लामान 200 मील से 500 मील तक सकेला रहे और एगो इम्प्रिजनमेंट भी रही और एकर जिस एकर इम्प्रिजनमेंट 5 बरिस तक सकब जाए प्रिजों में और जे है रिपीटे कर ला तो दिजेम कुछ या फिर रिपीटे कर ला तो एक लामान 500 मील से कुमोसे हुई 1 मिलियन तक लामान सकी एगो माइस्ट्रा तोरा इम्पोजे करे और एक प्रिजों सकब 8 बरिस तक प्रिजों करे एक खातिर तो है देखा कि आदमी हमेशा हम बोला सा चाहे लाइसेंस निकाले के या फिर फुस लाइसेंस से कोचिया कर लन सा या फिर तरीके कर लन सा या फिर कोई के लाइसेंस ही नहीं है मैं सुबह बोल सा है जे जाता है एगो एगो एगो हाली से चला हाँ। बोलन सा कि ला पुलिस नहीं रहेला हाँ बोला ला पुलिस नहीं रही सीमा में या फिर मैं हई में मैम ला पुलिस नहीं बा मैम भीड़ हुए बा मैम तोहर भीतरे के सीमा है मैं सुबह एगो एक्सीडेंट होल एगो हादसा होल और कोई के जान चल गल तो एकर कॉन्सिक्वेंस देखा कि हाई प्रिकोनिजे के लोन सर कि देखा 8 बरिस तक सब प्रिजों करे एक लामान सकी 1 मिलियन तक जे रिपीटिशन रही नहीं तो 500 मील तक भी सकी एक लामान रही तो हाई ऑन ग्रुप बोलते हैं सर कि जो लामान को सौक्षों लामान अन लेवन सर कि आदमी के खाली बताए खाते नहीं कि मजा हई दाई सब लालवा हा मैं सुम जब हई सब मूवे काम करब हई सब जिम्मेदार गैर जिम्मेदार काम करब तो एक कॉन्सिक्वेंस की बहुत भारी रहे काम रहे

0: और जैसे अभी सुना था वजह हमने संगे सब इंस्पेक्टर मिर्जा बुदन हवन और हमने के बतावत हवन कि कैसे हमने के सड़क पर जो दुर्घटना हो ले जाता ओके कमती करे पर ओके घटावे पर कितना सख्त नियम अपनावल गल बा जेके बहुत जल्द अब लागू करल जाए। और बुदन जी आप मनबा कि हमने के सड़क पर भले ही हमने के जो नियम बा ओके सख्त कर ले आवत है जा फिर भी जो जान गवावे होला लोग के संख्या बा 100 के संख्या के पार कर दे रही सा 100 कात लगभग ना
1: 104 हो गल बा। हाँ जी है तो बहुत बड़ बहुत बुरी बात है और हमने के भी हमने के नहीं अच्छा लगे ला कि हमने के दिल दुखा ला कि इतना आदमी अपन जान गवात हो सा अभी सामने भी देख रहे सीरी एक्सीडेंट हो गया जहाँ पर आदमी लोग अपन जान गवा दे।
0: जी हाँ तो ये बहुत एगो गंभीर विषय बा जहाँ पर सबके हाथ में आजकल देखत है जा कि सब कोई सकता एगो गाड़ी के मालिक बने लेकिन सड़क के जो यूटिलाइजेशन बा सड़क के जो इस्तेमाल बा ओके सावधानी से चाहे करे के बहुत जिम्मेदारी के साथ चाहे करे के और इस बात के ख्याल रखे खातिर कानून के समय के साथ जस्ती सख्त बनावल जाता। और इस विषय पर आज हमने के जानकारी देवत हवन सब इंस्पेक्टर मिर्जा बुदन जी और इस विषय के अभी थोड़ा घड़ी में हमने और आगे बढ़ावा जा हमने संगे जुड़ल रहिया।

0: आज की चर्चा में आप सबको के एक बार फिर स्वागत बा। आज हमने जो विषय पर बातचीत करत है जा वो है सड़क पर जो नियम बा वो कर में जो अमानमो आनल गल बा वो में कौन कौन बात शामिल बा, मतलब कि रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट एक्ट 2026 पर आज बातचीत करे खातिर हमने संगे हवन SI मिर्जाबुदन। मिर्जाबुदन जी, हमने के बतावा आजकल देखत है जा जब से पालमो में ई अमानमो पर चर्चा होल तो फेसबुक सोशल मीडिया पर देखा था जा कि ढेर कोई लाइसेंस के लेके जो नवा कदम उठावा गल बा, चाहे आपके ओरिजिनल लाइसेंस प्रस्तुत करे के और एकर से आगे एगो बड़ा सोशल मीडिया पर एक ज़बरदस्त जो बातचीत चलत रहल उ जो टेलीफोन सेवी करत हवा ड्राइव करते बखत, तो ई दुगो विषय पर काफ़ी लोग जानने को जखतवन जा कि ई कानून कैसे अप्लीके होई, कौन कौन बात के प्रावधान बा ई नवा कानून में, थोड़ा हमने के समझावा।
1: हाँ, ई तो अच्छा बात बोला कि हम जो कि है दिखाते से कि बहुत कोई जस्ती है जिन हो सब सॉक्शन है में बल्कि जिन प्राचिक में लोग की अफेक्टे करी लाइसेंस के बारे में या फिर टेलीफोन के बारे में। तो हाँ देखा लाइसेंस के बारे में हमने कि ऐसा रहा दिक्कत इनसे हमने जब से है फोटोकॉपी के जब आ रहा कानून तो बहुत हला देखल ऐसा कि आदमी लोग अभिजे करता है, बहुत हला आदमी लोग फोटोकॉपी करे बची दू गो लाइसेंस मिला के ओकर संगे फोत करता स्टैम्प करे कि देखा हाई के फोटो लेके उमें डाल के फोटोकॉपी करके, तो ऐसा पर मजा अति ऐसा पर मजा हमने के जब देखा था निशा तो लापुलिस भी हमने देखने से एगो इनोवेशन करनी सर कि तब बड़ा लाइसेंस हमने के वो अपन सिस्टम करे कि सड़क पर लाइसेंस चेकिंग करे लगनी सर हमने के अति हमने के गाँचू पड़े, तो एक भी देखा थे कि सरकार भी एगो कदम उठेलक कि बता कि अब फोटोकॉपी नई पॉसिबल रही, यानी कि एगो आदमी के सकी चाहला अपन ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस लेवे, तो एक में किसी आदमी लोग के एगो मशीन रहेला, कोई के दू गो मशीन, कोई के तीन गो मशीन या फिर अलग अलग मशीन में लोग पहुँचे कैलन सर, तो एक में देखा दे कि लोग के सोल्यूशन जो बोलन सक मजा अन्न वन सर कि सकबा अपन एगो डिजिटल वर्शन अपन लाइसेंस के डिजिटल वर्शन एगो एप्लीकेशन है जो सबको अब जाने ला कि कोक ओकर परे तब न कब भी कहाँ पर भी सकब हाउ एप्लीकेशन परे अपन डिजिटल लाइसेंस पूजा करे तो पोता पर और तब भाई एक्सेप्टाब रही। अच्छा। देखा सकेला सकेला कु मौसम में आदमी लोग के तनिक उन्नति हुई मैं सुनवा जब अभिचे हो जाइब जब जान गेला कैसे रही तो देखब कि हैला ऐसे अच्छा से तो लोग भी अच्छा रही कि अपन लाइसेंस हमेशा तोर संगे रही या फिर तोर पोता के जरिए सकब बता दे और हमने के बेला पुलिस भी जब देखब से तब जानब सकी हाँ है ये आदमी है जेनविन एक टैम्परिंग नहीं होलबा कि वही लाइसेंस है और लाइसेंस बा और खास कर कि देखा कानून में जो नवा सेक्शन आल बा कि ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस और कोजिंग डेथ तो है सब पर बहुत ऐप होता हम निकल लॉकेट भी करे के और आदमी लोग भी जनियन सा कि अब कंट्रोल जस्ती सख्त रही जस्ती सेवेयर रही तो ऐसे उन लोग के देखो वहाँ से करे खातिर, तो देखा कोनो में सोचते नहीं बा मैं खाली की मजा कैसे हाउ लेपो कहे खातिर फोटो कॉपी आ रहा कहे हाउ लेपो कौंसलामिया बा रहा कौंसलामिया ब्रॉपी करे खातिर चाहे अपन लाइसेंस संगे रखे गई तक हाउ खातिर एगो सोल्यूशन खोज से देखा अभी भी ढेर अथी नहीं बा कि आदमी लोग के सकेला चाहे अभी चोई के और हमने ये भी याद दिला दी कि जितना ही सब कानून पर बतियात है सर तो ये अभी अभी तुरंत अप्लास कैसे काल से नहीं लागू होगल बा मैं बल्कि एक लेटो ले कि

0: कानून भी जब बनल बता बोले बाकी सिलों सेटन सेक्शन जैसे जैसे एक मजा ओकर तैयारी हो जाए ओकर प्रिपरेशन हो जाए तब मजा कुछ एक मजा अति ओकर बैकग्राउंड जो एक आध गो कानून के ओके ओके लागू करे खातिर चाहलक मजा प्रिपरेशन करे के जैसे जैसे प्रिपरेशन हो जाए तो उसे उसे लागू कर सब मिसल में है कानून बाह जा और एक पर आदमी अच्छा बाकी है इन्फॉर्मेशन दे दो आगे वे से तो आदमी अपन प्रिकॉशन लेवे लगी तो देखा बड़ा बात नहीं है नहीं बोलब कि सकेला कोनो आदमी के तनी कोन प्रॉब्लम हुई मिसल में चाहला कर से एक मजा अति
1: अभी
0: हुई के और अपन प्रिकॉशन लेवे के और उतना मजा झिफिलते हुए रही और दोनों तरफ वो लोग के भी अच्छा रही कि नहीं पड़ी फोटोकॉपी हरकुद कराए के या फिर लाइसेंस फाट उठ जाए तो सेकेंड सक में जाए और डिजिटल वर्जन जाए अपन पोता के जरिए हमने के बता दी हाय रहल टेलीफोन मिसल में एगो बात है लिसेंस सॉरी हाय रहल लिसेंस मेसी और एक पर एगो और एगो एडिशनल बात है कि देखा पहले जब तुहर लाइसेंस नहीं रही तुर संगे अब तुरा ला पुलिस एगो पापिये दे कि जाके अपन लाइसेंस पूजा करेगी तब एगो दिले दे सैंगजू हलालवा बोला और जहाँ पर खोजब तुम रिश्ता में चाहे जाके पूजा करेगी तो देखा है जे अपन भाई दिले में जे नहीं पूजा कर ला तो एक भी लामौन में एगो सौक्सो एगो अथी कर लवन प्रोसीजन लवन कि एक लामौन मिनिमम डेमिलुपी हो जाए एक लामौन मिनिमम डेमिलुपी हो जाए हमको याद बा पहले सैंक्स ओपी फिक्स पेनाल्टी में सैंक्स ओपी रहे रामन तो फिक्स पेनाल्टी से होकर निकलन से तो अब मजे देखा थे कि एगो प्रोसीजन बा कि लामन चाहे डेमिलुपी मिनिमम हो जाए जे अपन लाइसेंस नहीं पूजा कर लाशो में हो सैंक्स के दिले में पास देखा ला पुलिस के भी चाहे जाने के लाइसेंस बा कि नहीं बा तब हमने के चाहे अथी लॉकेट करे के तब कि केस हम माइसा लगे जाके एना से तो ये ऐप होता है कि जब एगो पापियो जब ले लाइसेंस पूजा करे के तो चाहे ओके पूजा करे के सैंक्स दिले में रहल बात टेलीफोन के तो हाँ टेलीफोन पे भी देखा होता हल चर्चा देखा चेहरा जाने के कि क्या है खातिर आदमी मना करेला देखा लाइसेंस के बारे में तो बोलनी है ना काकुज कोसालामियाब खातिर पर लाइसेंस रहे के संगे ला पुलिस के बताई कि अपन लाइसेंस अब टेलीफोन के बारे में सब कोई जाने ला टेलीफोन एगो मेजर कारण है एक्सीडेंट प्रोवोके करे खातिर पास की डिस्ट्रैक्शन करेला पास की एगो आदमी काम भी नहीं से कि अपन गाड़ी भी चलाए और टेलीफोन भी टेलीफोने करे कॉन्सेंट्रेशन अपन पेजी हुई तो एक बारे में एगो प्रोसीजन आलबा देखा कि टेलीफोन जो ब्लूटूथ के हो जो अथी रहल वो निकल गलबा से जा जब अपन हाथ में लेके एगो टेलीफोन इस्तेमाल करत हुआ तब एगो ऑफेंस होला हैला हैंड हेल्ड प्रोसीजे कर लेबा और जून महीना से पीछे ही से देखा कि है अथी टेलीफोन आपो से ऐप होता है कि एक पॉइंट भी बढ़ा दे ललन सा अभी देखा एक पॉइंट सैंक से जिस तक है एक लैपोटॉन्स दे ललन सा एगो टेलीफोन सेवी करत हुआ और ला पुलिस तोरा आगे कलक फिक्स पेनाल्टी दिलक या जाके पे कलक तो देखा कि तोरा सैंक पॉइंट में तोहर लाइसेंस में आजूते हो जाए तब बहुत ऐप होता है मिसल में एक में एगो दूसर एगो एगो एगो प्रोसीजन लवन सा और एगो आजूते का लवन सा जब भाई ब्लूटूथ के अथी निकलल मजे ओकर पोलेमिक निकलल तो एक में अभी देखा था कि नवा कानून बोला कि जब तू पहुंचे करत हुआ तो टेलीफोन के अलावा नहीं सब दूसर भी एगो लालवा बोला इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन डिवाइस यानी कि कोनो एगो दूसर एगो लापारेल यानी कि तुर एगो टैबलेट रही तुर संगे या फिर तुर लैपटॉप रही पेजर रही हाई सब मजा जो नेट पर कनेक्ट करके तू अथी करत हुआ तो हाई सब भी नहीं सब इस्तेमाल करे या फिर यानी कि कोचे भी करत हुआ और हाई सब भी इस्तेमाल करत हुआ तो एक एगो ऑफेंस बनेला उनसे ऑफेंस बनेला उनसे एकर भी एकर लामान बात तुआमी रूपी और एकर पुए भी सैक आजीस है तो हाईला चला बात याद करे के कि देखा गाड़ी चलाओत हुआ काहे वजह से टेलीफोन नहीं सेवी करे के ओकर कारण है कि डिस्ट्रैक्शन है और डिस्ट्रैक्शन रही तो एक्सीडेंट के हो की संख्या जैसी प्रोबेबिलिटी जैसी बढ़ जाला और नहीं सकब कि दू गो काम करे और जो न पोलेमिक रहल कि मजा
1: हैंड फ्री
0: या फिर ब्लूटूथ एने उन्हें तो देखा निकल गलवा प्रोसीजन दिले वाला लुआ मैं सुलमा टेलीफोन अपन लेके सेवी करत हुआ हैंड हेल्ड टेलीफोन या फिर कोनो भी डिवाइस किसे बोला का लाल लाल बोला का टैबलेट या फिर लैपटॉप पहने ने कुछ भी इस्तेमाल करो तो पेज या फिर तो वो भी एगो ऑफेंस होगल बा जब गाड़ी चलाओ तो
1: जरूर और जैसे सुनत है जा आज के हमने के प्रोग्राम आधारित बा हमने के सड़क पर कानून के और सख्त बनावे पर जोन कदम उठावल गल बा ओकर लागू करे से आगे हमने जानकारी पावत है जा सब इंस्पेक्टर मिर्जाबुद्दीन जी से वो हमने के बतावत हवन कौन कौन कदम उठावल गल बा और ये सब कदम जनला बहुत ज़रूरी बा ताकि सकब जा हमने के सड़क के बहुत

सावधानी से इस्तेमाल करे और हमने के सड़क पर जो जानलेवा दुर्घटना उत्पन्न हुई लिया होता ओके घटावे के और एगो नवा कदम उठावल जाता। कहे कि जैसे आप मनबा बुदन जी हमने के सड़क पर ये सब जानलेवा दुर्घटना के घटावे पर कदम तो उठैले आवता सरकार और कानून में जस्ती सख्ती आनल जाता प्यामी अफवाह चलाल बा फिर टेलीफोन पर भी कानून चलाल बा फिर भी ये सब दुर्घटना नई घटे के नाम ले होता तो हमने देखब जा कि ये सब जो कदम उठावल जाता कैसे एकर एके लागू करल जाए और कैसे एकर पालन चाहिए करे के और फिर देखब जा और ये आशा भी करब जा कि हमने के सड़क पर जो जानलेवा दुर्घटना के साथ साथ कोई भी दुर्घटना घटी तो वो कमती हो जाए और सकब जा एगो स्वस्थ मॉरिशस में बहुत अच्छा से अपन गाड़ी चला के अपन अपन मंजिल तक जाए। कार्यक्रम के थोड़ा समय में हमने और आगे बढ़ावब जा।

0: आज की चर्चा प्रोग्राम में आप सबको के एक बार फिर स्वागत बा। आज हमने जो विषय पर बात करत है जा वह हमने के सड़क पर गाड़ी चलावे के जो नियम बा, साथ में हमने के सड़क के इस्तेमाल करे पर जो नवा नवा कानून अनगल बा ओकर पर हमने के खुलासा देवे खातिर SI मिर्जा बुधन उपस्थित हवन। बुधन जी, हमने के ई बतावा कि हमने के सड़क पर आए दिन हमें देखिला जा कि गाली चलेला और ढेर कोई बोलेला कि ये सब गाली इलीगल है, बहुत असुविधा होवेला जनता के ये सब गाली से। सबसे बड़ा असुविधा तो ये गाली करे होला लोग ही के होवेला, कहे कि कितने दुर्घटना भी दिक्कत है जा एक वजह से हुआ था। तो ये जोन गाली बा ज़्यादातर ये इलीगल रहेला, एक पर कोनो कानून के प्रावधान बा?
1: बहुत अच्छा बात बोला। देखा बहुत जब सड़क सुरक्षा बताए ना सर तो देखा दिन जरा ड्राइविंग बतेनी सर एक्सीडेंट ड्राइविंग जो लाइसेंस बतेनी सर तो एगो पाची एगो कौपूत मो जो सकेला हो आदमी खातिर भी जो पॉसिबल है जिसे बोला उलो खातिर भी डांसे है बस की में वितेस उतेस लोग तनको नहीं देखे लन सर। और जो दूसर सड़क इस्तेमाल कर रहा कितना आम आदमी लोग सड़क इस्तेमाल कर रहा था उलो खातिर भी एगो डांस हो रहा कि है गाली जो गाली है गाली इलीगल। देखो गाली जो नॉर्मल है जो ऑटोरिजेशन के साथ हो रहा तो ओकर खातिर हमें बंदोबस्त करना सर, ये सड़क बंद कर देना सर प्लस स्पेशल में देवी ना सर जब मैं कोई के दूसर की दुर्घटना नहीं हुई मैं है जो गाली इलीगल कर लन सर। या फिर देखो कि बहुत जवान लोग

0: ए मोटरसाइकिल पर लेके संगे खोजा अपने में कॉपी चौक एलन सा या फिर कबो देखबा कि लुटो भी अभी एगो दूसरे को अच्छो गबा पहुंचाओ को लुटो मजा ओ लोग भी एगो सिस्टम पयाज अपने में सबके संग सबके साथ मजा संगे का एलन सब तो देखा एकर में एगो एगो एगो जरूरी एगो जरूरी समझमा अलबा यानी कि ओकर जो सौतों सब तू हमके हमार सकेला में बात नहीं कोई बा पहले जब गाली जब जब हमने पूछी करते आदमी लोग के ओकर लामान मिल रूपी रहल 1000 रुपया तो हबी है लामान मिल रूपी से निकल के मिनिमम 50,000 रुपी हो गल बा 50,000 रुपी से 100,000 रुपी तक सकेला एगो गाली इलीगल में जब पहुँचवे बा तो एक लामान रही तो है ला इम्पोर्टेंट खास करके बहुत नौजवान लोग सब में पहुँचपे उलन सा तो सकेला है सुम जब सुनियन सा कि जिसका 100,000 रुपी पर लामान पे करे के तो चाहे वो लोग के दू हला सोचे के मैं सुमो एक ले आगे हम रे से बताई सर कि गाली जब कह ला सर तो चाहे अपनों अपन सिक्योरिटी बहुत कोई में एक्सीडेंट जो नेक आप होते गलन सपने से एक्सीडेंट में वो लोग हो जालन सा दुर्घटना के वो लोग शिकार हो जालन सा या फिर कोई जान भी दे जा गांव में ले बा तो चाना गाली नहीं करे के जो इलीगल है अच्छा कंडीशन में जो पीएमटी है जो ऑथोराइज्ड है तो वो में पास पे के तो सबले जरूरी इंफॉर्मेशन है कि जब गाली इलीगल कर बा ला पुलिस जब लौकित करी जान पकड़ के तोहरा तो ओकर लामान सकेला 100,000 तक तोरा चाना ओकर जुर्माना ओकर में पे करे के है जब गाली जब बतियाती से तो अच्छा बाकी देखा एगो और एगो एगो एगो एगो एगो बात है देखा दे कि आदमी लोग जब एगो एगो एगो एगो एगो ऑफेंस रहला ओकर मशीन में कैसे कि ओकर लिसापमो नहीं अच्छा रही या फिर कोई फ्लोरिसन नहीं पहन ले रन सा या फिर कोनो भी कोनो एगो ऑफेंस रही इस पर लाइसेंस अथी लाइसेंस नहीं रही तो लोग आगेते नहीं होलन सा जब ला पुलिस लोग के आगेते करेला
1: वो लोग चले
0: जालन सा अपन या भागे लन सा या फिर कौन तू नहीं होके एगो एगो फास्टो करन सा कि नहीं खोजन सा आगेते हुई के तो देखा ये दो तरफ का प्रॉब्लम होला जब वो आदमी भागे लगेला नहीं खोजल आगेते हुई के तो देखा उसकेला अपने एगो एक्सीडेंट कर दी बस कि जैसे करे रन सा कबो रॉन पॉइंट के कॉन्टूने कर देलन सा काउंटर फ्लो करके जालन सा या फिर अपन वितेस लोग उगमाते करके जालन सा जमेला पुलिस और नहीं आगे थे करी तो हाई देखा बहुत अपन अपन अपने लाभी से खेले रन सा या फिर अब एगो दूसर एगो इनोसेंट के सकेलन सा ब्लेसे कर दे या फिर एगो दूसर इनोसेंट के एक्सीडेंट प्रोवोक कर देलन सा तो हाई ला एगो बहुत बुरी बात है प्राचिक नहीं अच्छा और प्लीज लुटो हुई थे कि चाहे रिस्पेक्टे करेगा देखा ला पुलिस तो आगे थे अलग नहीं कि जैसे जब ला पुलिस जितना पुलिस जब आगे गया तो रूटीन चेक रहेला या फिर कुछ रही तो तोरा जब सब चीज़ अच्छा रही तो जाए देना सा कुछ नहीं कहना सर मिसल मा आदमी लोग जब नहीं आगे थे बोलन सर तो हई भी नहीं अच्छा कि लुटो हुई कि नहीं एक्सेप्टे डिरेक्टिव नहीं माने लन सर चलने चल जालन सर तो एक में एगो समझमा अलबा देखा एक लामान अब मिनिमम लामान 25,000 रुपी हो गल बा 25,000 रुपी से 100,000 रुपी तक सक बा एगो लामान पे करे जब गाड़ी नहीं आगे थे कला ला पुलिस तो आगे थे करा था तो देखा दोनों तरफ रेस में बोला था एक मकसद भी कुछ है कि जब नहीं आगे थे बोला था एक्सीडेंट प्रोवोक कर बा अपनो या फिर दूसर के और लुटो हुई थे कि डिफिए करत हुआ तो ई में देखा था कि एगो हमने पॉजिटिव हमने ला पुलिस लोग सड़क पर जो रही ना सर तो देखा था कि एगो पॉजिटिव हमने हमने अच्छा अच्छा बात बा कि एगो आदमी और नहीं सोचा कि जब पुलिस तो रहा जब आगे के लग नहीं आगे तो इला तो फिनो जला बहुत कोई के ओकर सरप्राइज मिले लगेला आपरे काहे के ओकर निमोगो जब हमने के मिल जला तो या फिर जो कैमरा ओकर रहेला सीसीटीवी से जब मशीन के इडेंटिफिकेशन मिल जला तो ला पुलिस के जो दुनिया है किसी वजह से हमने के ओकर ओनरशिप डिटेल के ओकर प्रॉपर्टी है ओकर प्रॉपर्टी से जाके पूछ के लॉकेट कहना सर लॉकेट जब खोला तो हाउ आदमी के परेला लाकू में आके रिपून करके काहे नहीं आ गए थे होल तो हाई प्रोसीजर होला देखबा कि तुरंत ही या फिर देखबा 24 घंटों में देखबा ला पुलिस तो ला पुलिस तापे करता कि हाई दिन हाई ले ला पुलिस तो आ गए थे करल काहे नहीं आ गए थे होला अपन स्टेटमेंट देबा तब डिफेंस देबा या फिर तब ला पुलिस तोरा माइस्ट्रा के आगे जा रहा था हाउ जो लामान छोटा रहल अब ओकर लामान बताई जिसका 100,000 हो गल बा तो देखा हाई सब काम करब तो ओकर नतीजा ओकर ओकर ओकर ओकर सॉन्क्शन ओकर सब आवत है तोहर संगे ई बहुत अच्छा है कि तू है सब जान ले ला
1: अब जब ई सड़क के जे लोग पालन नहीं करत हवन जा कानून के भागे को जत हवन जा अब एगो और बात बा जो सोशल मीडिया पर बहुत तहलका मचेले बा वो है रोड रेज रोज का हल्का चे दिखत है जा असली में दिखत है जा नहीं बुझाता कि काहे इतना गुस्सा इंसान कर रहता है सड़क पर तो ये रोड रेज से देखते है जाके गाड़ी के नुकसान पहुँचावे लन जा फिर

0: सड़क में लुप्सताक भी आना था वंजा तो एक पर थोड़ा हमने के आज बतियावा एगो पुलिस के हैसियत से कानून के पालन करे होला के हैसियत से
1: देखा रोड रेज सजा तो हर को पूतमा एगो आदमी के नहीं सको उसे जिसे दिखा थे सोशल मीडिया में मालट्रेटे कर थो या फिर असोल्ट कर थो ओके ओकर गाड़ी पर इसे जाता ओके डैमेज करे हाँ। या फिर ओके आगेते करके एंसिल्टे कर थो
0: निकाल के हाँ, मारे
1: निकाल के मारे खोज थो तो हाई सब देखा नहीं अच्छा रहल नहीं अच्छा रहल तो ई में एक खाई कानून हबरी जब जब अमोद माहौल बा तो एगो नवा सेक्शन आलवा अन्य वंशा सेक्शन 123 एन जो बोले ना रोड रेज पर स्पेसिफिकमा रोड रेज पर हई कालिते हई कोपोतमा पर बात करेला और एकर एकर एकर पर जो एकर सौक्षो भी जो नाल बा तो देखा थी कि काफी काफी एपोतो बा और सख्त बा रोड रेज देखा एक आदमी के तरह से बताई एगे सबसे हो जाला एगे सबसे हो जाला मैं तुम्हारा तुहर फासो मज कोपोतमा नहीं चाहना और आगावे करे के जब एगो एगो एगे हो गए आदमी से तो सकबा एगो अच्छा से बात करके या फिर जब ले सब ले पोतो जाके रापोते करोगे हाँ। जाके स्टाशो में हेल के बोला कि देखा एगो ऐसे होता एगो आदमी ऐसे हुल हुल हम सकती एगो एक्सीडेंट कर दे या फिर एक प्रोसीजर ऐसे है कि ओके रापोते कर दे रहा तो ला पुलिस लॉन्केट करके लाकू ओके विदा करी तोरो बिरी अब तेमुआ पर आई के तो ओके सौक्षो मजिस्ट्रा दे यानी कि तोरा दुआ नहीं है एगो आदमी पर अपन चुन खिस बा या फिर चुन चुन चुन मजा ओकर खोतवा ओके मजा आगे से जाके करे के या फिर ओके एसिलते करत हुआ या फिर ओके ओके ओकर ओकर मशीन के औदुमासी करत हुआ या फिर कोई तो ऐसे स्वीव कर ले जाला ओकर घर तक तो देखा है कानून जब ऐसे बनल बा तो स्पेसिफिक बोले बा कि एगो रोड रेज एगो ओफेंस के लवन सा और एकर लामान देखा लामान 50,000 से शुरू होला 50,000 से 100,000 तक सकी एक लामान हो जाए हाई माजिस्ट्रा ओ अपन अपन अपन अपन साजिश लेके देखी कैसे कौन सिचुएशन बा तो ऊ देखी कि कैसे कितना चाहना सॉन्क्शन लेके मिसम लालुआ बोले बा मिनिमम चाहला 50,000 ओके लामान पे करे के और एक प्रिजों के प्रोविजन भी कर लवन सर एक बरिस तक 12 सकबा एक खातिर प्रिजो भी जाए तो एक बहुत ऐप होता है हम खुशी रहनी पाए अभी लोग हमने के क्लिप लेके डाले रहन सर जब बचाए ना सर हाई बुधवा जो दलतन सर तो अच्छा रहल कि जनतन सर कि हाई रोड रेज जो आदमी लोग अपन जो खिस अपन कोपोतमा जो दूसर पर निकाले रहन सर तो एकर जब देखबा कि एक दू महीना में जब लाकू हो गया तो सकबा सैकड़ों ता 100,000 एक लामान पे करे और नहीं तो प्रिजो भी सकबा 12 महीना तक एक खातिर प्रिजों करे तो हई हब जमनी लापिल करते कि सब कोई के बोलनी है एक तरीका सही तरह से जाके रापोते करा वो आदमी के और ला पुलिस ओके जे एरिया कर ले होई तो ला पुलिस ओके पुसीव करी ओके माइस्ट्रा भेजी माइस्ट्रा के ओके सॉन्क्शन ले तू तोहरा दुआ नहीं बा ओका पर सॉन्क्शन लेके
0: तोहरा कानून के नहीं चाहिए अपन हाथ
1: अपन हाथ में लेवे के हाँ देखा हमने ला पुलिस भी अभी आगे थे कहने से वो आदमी कितना ऑफेंस कहला तो हमने कबो से नहीं बचाया ऐसा कबो नहीं ओके ले जाके काल्म से इस आशो ले जाने से और प्रोसीजर कहने से फिर और एक सौक्षो खातिर वो हमने माजरा पर छोड़ देना सर तो आदमी आम आदमी के भी चाहला ऐसे करे के कि कब्बो कब्बो नहीं चाहला अपन अपन अपन खीस अपन लगाज मजा हो आदमी पर निकाले के कहे कि वो भी एगो सुफे है वो भी एक एगे हो जाला आदमी से मुसलमान चाहला निमन से कौपोते करे के
0: इंस्पेक्टर साहब हमने के ई बोला कि ई रोड रेज काहे आज पर एक पर कदम उठावे के ये आगे नहीं रहल हमी के सड़क पर ऐसा घटना नहीं उत्पन्न हो
1: पोतमो देख हाई कौन पोतमो कोनो आदमी है खींच कर कबो तो ला पुलिस पर खींच कर लंसा ला पुलिस जब कबो लोग के आगे थे करके निमन से बतिया रहा या फिर बोला कौन दो तब देख ऐ सिलते कहे लगे लंसा दूसर फास्ट में बतिया लगे लंसा बोले सर ट्रांसफर कर दो अब सर हमने के ऐसे ऐसे तो हाँ हमने के पब्लिक ऑफिसर प्रोटेक्शन पर हाँ हमने के एक मजे पोते से कहला सब फंक्शनल ओके हाई पर प्रोटेक्शन हो अब हाई ओफेंस देखा ओफेंस वे हेडिंग नहीं रहा रोड रेज अब कहे कलों सा मैं नहीं था कैसनो दूसरो तौर पर सब पूछिव करे एक आदमी जब सख्ती से पूछिव करे आगे के कि एक आदमी देखा ओके सिलते कर ले बा ओके ऐसे कर ले बा या फिर ओके असोल्ट कर ले बा तो हाउस ऑफ सेक्शन पर मैं अब स्पेसिफिकमा एगो सेक्शन कहे कलों सा वो ट्रैफिक एक्ट में जो उनके रोड रेज बोले लन सा और ओकर एलिमो भी दे लेवन सा ओकर ओकर कैसे हमने के काम चला करे के एक में तो ई में बहुत ऐप होता हूँ कि अच्छा बा हमने भी खुशी ऐसा कि एगो सेक्शन स्पेसिफिक आल बा और आदमी भी जान गल कि देखा हब जब करी तो ओके सकेला 100,000 तक एगो लामान रहे और ओके प्रिजों भी सकी 12 महीना तक हो जाए
0: बहुत ठीक और थोड़ा

हरी मैं अभी हमने कार्यक्रम के अंत तक पहुंचब जा और आखिरी कड़ी तक की ओर बढ़ब जा और देखब जा कि हमने के एगो नवा कानून अब आवता कि जब एगो दुर्घटना होई या फिर ऐसा ऐसा कोनो कोनो स्थिति रही जहां पर परी गाड़ी के जब्त करेगे इस विषय पर अभी थोड़ा घड़ी में बतियाब जा। फिलहाल ले जा एगो छोटा सा ब्रेक।

0: कड़ी तक पहुँचल है जा। और एसआई बुदन जी, हमने के ई बतावा कि सबसे बड़ा जो बात बा जेके लेके सब कोई में सवाल खड़ा हुआ था, वह गाड़ी के जब्त करे पर ई जोन प्रोसीजर बा, जोन प्रक्रिया बा, वो कैसे चली और कब एगो गाड़ी के जब्त करे के नौबत आई?
1: हाँ देखा, गाड़ी के जो सबको बोला सेजी सेजी तो वो आवेला लालकुल और लादरुक के कंसोमेशन पर। देखा आदमी अभी एक्चुअल में जब एगो एगो एगो आदमी के पॉजिटिव लालकुल लादरुक में मिला था या फिर जब रिफ्यूज भी कर दिया तो हमने ओके लालकुल टेस्ट के पॉजिटिव कहना सर और केस पॉजिटिव कहना सर ओके स्टेशन आनी ना सर। तब आदमिया जब से जब ले सुबह यानी कि अपन नॉर्मल इस्तात में नहीं जा रहा तो के नहीं जाना सर मुसलमान और तो त्यों जो कहीं कोई आल बोलता हो हम मासिन ओके दे के ओकर पपीते आल या फिर ओकर फामी भी आल तो अपन होश पावर ले क्या बोला तो ओकर मासिन ओके दे देना सर। तो देखा हाई ला बोला एगो सॉन्क्शन लगा था कि हाउ मासिन से हाउ दूगो दूगो बात होला हाउ मासिन लेके हाउ वो फोंस कर ला पिए के और हाउ आदमी जो प्या वो फोंस कर लेबा। तो हाई में अब एगो एगो सॉन्क्शन खोद निकुन जस्ती ग्राव सख्त कदम उठावा थोन सर से बोला थोन सर कि हाउ मासिन भी हमने ओके ब्लोके करब सर सेजी करब सर एगो सेटन लेटों खातिर। देखा लालवादी से बनल गलबा एगो सेटन लेटों खातिर। तो पहला देखी ना कि पहला बुझना सर कि कब सब से सेजी करे जब एगो लाल कोलते पॉजिटिव हो जाला या फिर एगो ड्रग टेस्ट पॉजिटिव हो जाला या फिर एगो आदमी नहीं देवेला रिफ्यूजे करेला फेल टू प्रोवाइड ब्रेथ टेस्ट यूरिन ब्लड फॉर एनालिसिस और नहीं तो अपन फील इम्पेयरमेंट टेस्ट वो रिफ्यूजे करेला सजा दमिया अपन से हमने के टेस्ट नहीं करे देलक तो नहीं सक सजाने पॉजिटिव बाकी नहीं पॉजिटिव बा। तो हाई सब खाई चार गो काम है लालवा बोला कि सकब सर हाउ हाउ मासिन अदमिया के तम यानी ना सर ओके रखे और मासिन भी सबसे सेजी कर दे। अब जब वो मासिन सेजी होला तो एक और प्रोसीजर है ला पुलिस के जैसे कानून बनल बा तो वो हमने के ला पुलिस के चाहना ओके एगो नोटिस ओकर पवित्र के एगो नोटिस विदा करे के हमने के 48 दे ले बा कानून देवी 48 में पपीतिया के बोल रहा कि देखा तुहर मासिन सेजी हो बा अब तोरा चाहला कंडीशन चाहला अपन एगो एप्लीकेशन करे के इन राइटिंग और जब अनबत आईबत अब तोरा चाहला आवे के हाउ ओकर होश पावर के लेके ओकर लासिगंस ओकर फिटनेस हाई सब डॉक्यूमेंट तोहर कार्ड आइडेंटिटी हाई सब डॉक्यूमेंट लेके आई के और जब तू जे तू नहीं सकबा आवे तो एगो आदमी के जो ऑटोइजे कर रहा था ओके चाहना एगो पापिये में देख लिख के दे के कि आतेल के ऑटोइजे कर रहा था ऐसे प्रोसीजर ऐसे बनल। अब हम मासिन कहाँ रखब सर मासिन सकेला स्टेशन में रखब सर या फिर कहाँ पर भी जो हम के कमिश्नर पुलिस डिसाइड एगो सेफ प्लेस बोला तो हौजा रखब सर है प्रोसीजर बात नहीं कैसे साबू व्हील क्लैंप एगो आदमी नहीं पे कैला 6 बजे रात के तो ओकर मासिन हमनी पड़ा ओके निकाल के क्लैंप ओके टोइंग करके ओके आनी ना सर हमनी अथी में रखी ना सर स्टेशन में या फिर स्टेशन के पीछे एगो बागवान हमने के इसे तब अदमिया जब हम मासिन रहे ला हो जा लौंदे में आवेला तो ओकर ओकर अब को फीस पे करेंगे
0: एग्जैक्टली।
1: तो हयो में हयो सिस्टम में जब करत हन सा तो एगो फ्रे हाई ओकर फ्रे कैसे रही सवेजे हाउ अदमिया के एगो एगो एप्लीकेशन जब एप्लीकेशन करी हाउ लुटोआ मिले को के लुटो या फिर मोटरसाइकिल था तो चला ओके 5,000 के हाउ एप्लीकेशन फी बोला 7,000 और अब हाउ रिलीज करे के हाउ भाव जब लुटो लो के देवत है सर तो एकर फी है 10,000 15,000 होल फिनी ने होल। अब ओकर जो हाउ प्रोमेजू रख ले हैं सर जैसे 24 पर बताया 24 या फिर कम ट्यूए जितना लेता रॉल में लगे तो ओकर एगो है 2,000 रुपी तो बोला 2,000 रुपी पर 24 सर। अब एक दिन में अला तो 2,000 रुपी पे करब प्लस से 5,000 प्लस 10,000 यानी कि 17,000। अब जे एक मजा एक दिन और तो रे से 2,000 एक दिन और रे से ऐसे 2,000 ऐसे मोटे बढ़ ले जाए। तो हाई में एगो इम्पोर्टेंट बात है खाली पैसा नहीं बताया सर मिसुमो आदमी के चाहना कॉन्सिक्वेंस ओकर सोचे कि जब शराब पी लेबा या फिर ड्रग ले लेबा तो ओकर कॉन्सिक्वेंस कुछ एला कि ओकर एक्सीडेंट करे के प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाला दूसर के घायल करे के या फिर कोई के जान भी ले लेवेला। तो हाई सब कंसिडरेशन में लेके हाई सब सॉन्क्शन ला गल बा। अब हाई तो खाली ओकर मासिन के है मैं अब आदमी के जब हम पी लेबा तो एक में और एगो प्रोसीजर बाकी अब ओके जाए के मैं देखब सर जब तक उक मजा सुबह नहीं सर जैसे सुबह एगो एगो एगो ऐसा नहीं कोई स्टार्स में अलवा कि सकी जाए। अब सकेला जब मजा ओकर ओकर ओकर लालकुल ढेर ज़्यादा रहेला 46 microgram de bactéries ça il y a pire ego accident créé que de là-bas tu as haïo mais ça

0: सो के माजिस्ट्रा लगे पास करे माजिस्ट्रा सकी ओकर सॉक्शन आगे वे लेवे लगे ता हाई सब मजा बनल गल बाकी अदमिया के एगो एगो एगो एजुकेशन में जाए कि लालकुल और लाद्रो कितना ग्राव ऑफेंस है कि नहीं चहला कितना बड़ी आतान करे कि कितना महीना लाकू जाए कि तब ओकर सॉक्शन है बल्कि ओकर जो लामान जो पीएल के लामान उ तो बाद में आए मैं ओकर कॉन्सिक्वेंस पीएल के कॉन्सिक्वेंस वो तुरंत ही सकी ओके अफेक्टे करके यानी कि ओकर मशीन हमने सीसी ऐसा में सील कर दो अब सर सील कर अब सर तब ओके निकाले खातिर मिनिमम जैसे हम देखा था लामान जैसे प्रिवॉ कर ले ओकर आप ओकर फीस मिनिमम चाहेला 17,000 रुपी ओके डिपेंसे करके जे खुजी हो मशीन वहाँ वो लेके घर जाएगी
1: है मिनिमम हाँ
0: मिनिमम है अब जे आदमिया अपन मासिन नहीं लीगल हमने ओके अति ला पुलिस ओकर पपीते लगे पापी भी जाकर देने से वो नहीं आल मजा 3 महीना हो गल तब ला पुलिस अब का करी हमने के लालवा जी से बोलेवा कि चाहे हमने के एगो नोटिस दे के अति में दूगो जूनाल में एक महीना के बाद है नोटिस के बाद बोलब सर जब नहीं आल तो हाउ मासिन सकब सर ला पुलिस जी से बोलेवा कि सकी ला पुलिस ओके ला वेंट में डाल दे ओके बेच के अपन जिन डिपेंस बाद जो नोकर फीस एप्लीकेबल कुवे करके तब अब जो आदमी आए अपन क्लेम करे जो पैसा लगल बातों के दो सर हाँ वो जो एक बार इसके अंदर नया आल अपने से क्लेम करे तो हाउ पैसा हमने एगो फोन हो जिन ओके चाहे वैसे कर देगी तो देखा हाई सब बात ये सब खाली होल भाई सब पूछे जो प्रोविजन ला लो प्रोविजन कर लेवा अभी हमने काम कर रहे जगह पर कमिशिया काम कर रहा था हमने ब्यूरो कमिशिया से जो डिरेक्टिव मिली कि कैसे प्रोसीडे करेंगे तो जैसे ही प्रो मिल गए हो जब हमने तैयार हो जब सब प्रिपेयर कर लो अब सर तो देखा कि हाई सब प्रोसीजन एग्जिस्ट रही और वो हाई सब कॉन्सिक्वेंस हाई सब कॉन्सिक्वेंस तुम्हारे लाख के जे तू मजा अति अपन अपन अपन जो कॉम्पूट में हो जो नहीं कंट्रोल करब तो एक कॉन्सिक्वेंस ग्राव रही मैं है जब पर एक बात है हम जब से बतिया थे सर हमने सर लालवा ऐसे कर लेबा ऐसे ऐसे जितना ले सौंक्षो सब मैं कहना बोले कि जो बोकोते अभी के फैसिलिटी वो खातिर एगो क्लोज बा एगो सेक्शन बा लालवा काम कर लेबा मैं बोले बा हयू पर मैं काम करती सर कि आदमी जब लामान मिलेला तो निश्चय नहीं है कि डेरोजे होके जाके लाकू पे ये करे के इस पला किस में हई लालवा पूजो कर लेबा एगो प्रोसीजर रही जो सब अपन जो लामान फिक्स पेनाल्टी ऑनलाइन पेमेंट करे एक्सेप्टे कि जो जो पेनाल्टी पॉइंट में आवेला तो ओके पड़ी जाए के ओकर एगो दूसर प्रोसीजर है मैं जो पेनाल्टी पॉइंट मिले हैं तो जो नामान फिक्स पेनाल्टी के सब अपन ऑनलाइन पेमेंट कर मिले हाई सब जब से हमने बतिया थे सही सब इन्फॉर्मेटिव रहल इन्फॉर्मेशन रहल हाई सब प्रोविजन होल बा लालवा में मैं सुबह एक बार काम कर रही सर कि कौन अभी देख देखबा कि जब मिल गए हुई था कौन सेक्शन लालवा आगे कौन सेक्शन के तनिक लेते ले हमने जब समय सकब सर के आप लिखे करें
1: जरूर सब इंस्पेक्टर साहब आज आप अपन कीमती समय निकाल के अला ये सब जानकारी दिला बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी मिनट तक आप बात कर ला बहुत बहुत शुक्रिया आशा करत है जा कि आपके ये सब जानकारी से लाभ होल और अगला आज की चर्चा तक आज्ञा द धन्यवाद नमस्ते।

0: में ग्रेड 8 के 200 विद्यार्थी नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी नीस के नए संस्करण में हिस्सा लेंगे। लगभग दो हफ्ते तक वे ऐसे कार्यक्रम का पालन करेंगे जिसमें नागरिक शिक्षा, चरित्र निर्माण, आपात स्थिति के लिए तैयारी और सामुदायिक सौहार्द शामिल है। इस परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने नए साल पर जनता को अपने संबोधन के दौरान की थी। ये पहल 2012 में आयोजित पहली एडिशन की 14 साल बाद वापस आ रही है। युवा पत्र जो तैयार किया जा रहा है यानी कप 31 के लिए युवाओं का विचार जो 9 से 20 नवंबर तक अंटालिया तुर्की में आयोजित होगी। उन विषयों पर दो दिन तक राजीव गांधी साइंस सेंटर में पर्यावरण मंत्रालय, यूथ लीडरशिप काउंसिल और यूनाइटेड नेशन तथा ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के सहयोग से चर्चा की जा रही है। बायोमीमेटिक्स यानी प्रकृति से प्रेरित इंजीनियरिंग, किसानों के लिए एक कृषि कैलेंडर और प्रकृति संरक्षण से जुड़े कानूनों की शिक्षा बचपन से ही देना इस तैयार किए जा रहे टेक्स्ट में पेश किए गए तर्कों का हिस्सा है। और मॉरीशस में कुछ पुरानी रेलवे स्टेशन हमारे इतिहास के एक हिस्से को जीवित रखे हुए है। कुछ को पोस्ट ऑफिस में बदल दिया गया है, वे आज भी यादों के स्थान बने हुए हैं, लेकिन साथ ही ऐसे भवन भी है जिन्हें रखरखाव और संरक्षण की आवश्यकता है। मॉरीशस और फ्रांसीसी गणराज्य के बीच सहयोग जिसकी घोषणा कैबिनेट ने अगस्त में की थी का उद्देश्य विशेष रूप से मॉरीशस की वास्तुकला विरासत के संरक्षण और संवर्धन को मजबूत करना है, जिसमें इन स्थलों के पुनर्वास और प्रबंधन के लिए एक पब्लिक प्राइवेट संरचना स्थापित करने की संभावना भी शामिल है। और विदेश में नेपाल में भयानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद मानवीय सहायता तेज की जा रही है जिन्होंने देश के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है। हजारों लोग बेघर और प्रभावित हुए हैं। सबसे जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपने अभियानों को मजबूत कर रही है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे आ रही नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

शनिवार की शाम 4:09 रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को भाई संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब और स्वागत है प्रोग्राम गीत गाथा देश की में। आज आते वक्त एमबीसी के बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले हम थोड़ी देर के लिए बिल्डिंग के बाहर रुके और हमने गहरी सांसें ली, आसमान की ओर देखा, सर्द हवा को अपने फेफड़े में भरा एंड आई जस्ट सेड थैंक यू। पिछले दिनों की ठंड के बाद, पिछले दिनों की वर्षा के बाद आज मौसम बहुत ही सुहाना है, न ज़्यादा सर्द न ज़्यादा गर्मी है, अति उत्तम। और इस सुहाने कीजिएगा, इस सुहाने मौसम को देखते हुए और आनंद उठाते हुए हमें बस

हमारे हृदय से बस एक आवाज निकली, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु इस दिवस के लिए। हम स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, और आशा करते हैं कि दुनिया में सभी लोग ऐसे ही खुश रहें और स्वस्थ रहें। चलिए इस विचार के बाद हम बढ़ते हैं आज के हमारे विषय की ओर। सबसे पहले तो आप सबों का पुनः स्वागत है, और आज हम मॉरिशस के एक शहर के, जी हाँ, मॉरिशस के एक शहर के एक इलाके का नाम ढूंढ रहे हैं। आज हम मॉरिशस के एक शहर के इलाके का नाम ढूंढ रहे हैं जिसका अर्थ है, उस इलाका का जो नाम है, उस इलाके का के नाम का अर्थ है एक डाई, एक पिगमेंट जो पर्पल और पिंक जैसा दिखता है। तो हमने आपको दो संकेत दे दिए हैं, एक तो वो शहर का एक भाग है और दूसरा उस भाग का जो नाम है, इट मींस अ डाई, अ पिगमेंट जो पर्पल और पिंक जैसा दिखता है। आप अंदाजा लगाइए और हमें फोन कीजिए 1402-4176, या तो हमें मैसेज कीजिए 52 50 62 00।

गीत गाया था देश की रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। संजय के साथ आज हम एक इलाके को ढूंढ रहे हैं। जो पहला संकेत हमने आपको दिया वो इलाका शहर में पाया जाता है, और दूसरा संकेत उस इलाके का जो नाम है उस नाम का अर्थ है एक डाई, एक पिगमेंट जो पर्पल और पिंक के बीच में होता है। पर्पल और पिंक जब मिला लेते हैं तो वैसा दिखता है। तो ये दो संकेत हमने आपको दिए, और मालिनी जी ने हमें मैसेज किया, उन्होंने जवाब दिया शामागल। नहीं मालिनी जी, शामागल इज नॉट पार्ट ऑफ अ टाउन। शामागल तो एक गांव है इन द साउथ वेस्ट ऑफ मॉरिशस। हम एक ऐसे इलाके को ढूंढ रहे हैं जो शहर में पाया जाता है। सो यू कैन ट्राई अगेन बाय सेंडिंग ए मैसेज ऑन 5250 6200, या तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं कार संदू का थोड़ा सुन जिस। अच्छा, दूसरा संकेत हम आपको देते हैं। जिस इलाके को हम ढूंढ रहे हैं और जिस जो नाम है उस इलाका का, वैसा ही एक एक शहर है, उसी नाम का एक शहर है इटली में। और इटली के उस भाग में बहुत से मॉरिशस के रहने वाले, मॉरिशस के रेजिडेंट जाकर वहां पर बसते हैं। ओके, सो दूसरा संकेत यह है कि जो नाम हम ढूंढ रहे हैं, जिस इलाके का नाम हम ढूंढ रहे हैं, उसी नाम का एक शहर है इन इटली।

4:23 रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आप सुन रहे हैं गीत गाथा देश की। और आज हम एक सॉर्ट ऑफ क्विज आपके लिए रखा है। आज मॉरिशस के एक शहर के हम इलाके का नाम ढूंढ रहे हैं जिसका अर्थ है, उस इलाके का जो नाम है उसका अर्थ है एक डाई, एक पिगमेंट जो पर्पल और पिंक जैसा दिखता है, एक मिलावट बिटवीन पर्पल एंड पिंक। सो जो पहला संकेत हमने आपको दिया कि उस वो इलाका शहर में पाया जाता है। दूसरा जो टिप हमने आपको दिया कि जो नाम है उस इलाके का, इट इज द नेम ऑफ ए डाई, अ पिगमेंट जो पर्पल और पिंक के जैसा दिखता है। और तीसरा संकेत जो हमने आपको दिया कि उसी नाम का एक शहर है इटली में। अभी तक जितने भी जवाब आए हैं सही नहीं आए, कोई भी अभी तक सही जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। जो चौथा संकेत हम आपको दे रहे हैं, उस इलाके की जनसंख्या, द पॉपुलेशन इन दैट रीजन 361 की है। सो अपना दिमाग डराए और फोन करके बताए कि हम किस स्थान की बात कर रहे हैं।

न्योगोव के प्रीतम भाई हमें भेज रहे हैं मैसेज और वे कह रहे हैं इबन नो इट इज नॉट इबन थैंक यू प्रीतम भाई

0: सो जिस इलाके को हम ढूंढ रहे हैं उस पर अगर आप अपना अपनी राय देना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं उनका संदेह का तुम्हारा संजीत चले हम इनसे मिलते हैं। हेलो नमस्कार, आपका शुभ नाम?
1: मैं शबनम
0: लालमाची
1: से।
0: शबनम जी लालमाची से, और आपके पास जवाब क्या है? देखिए, हमने कहा जो पहला टिप हमने दिया कि वो शहर का एक भाग है। अब रियांबेल किसी शहर का भाग तो नहीं होता है, रियांबेल तो सुरीनाम के बगल में है और वो समुद्र तट पर नहीं। ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू शबनम जी। फिर से ध्यान कीजिए कि वो इलाका एक शहर का भाग है। दूसरा जो जो नाम है उस भाग का, इट्स द नेम ऑफ अ डाई ऑफ अ पिगमेंट जो पर्पल और पिंक के जैसा दिखता है, और जिस साल में उस डाई को, उस पिगमेंट का आविष्कार, उसको डिस्कवर किया गया, उसी साल में उस शहर में एक घमासान युद्ध हुआ था। और वो शहर कहाँ पर, वो शहर पाया जाता है इटली में। तो शायद इसी कारण मॉरिशस में उस इलाके का नाम वो नाम रखा गया। और हमने आपको ये भी बताया कि आज उस इलाके में 361 लोग रहते हैं, वहाँ की जनसंख्या 361 की है। अब जो संकेत हम आपको देने वाले हैं थोड़ी देर में देते हैं, आपके मैसेजेस, आपके फोन कॉल्स लेते हैं, थोड़ी देर में अगला संकेत हम आपको देंगे।

0: चले हम मिलते हैं हमारे श्रोता से। हेलो सूर्यदेव जी, नमस्कार। नमस्कार
1: नमस्कार।
0: सूर्यदेव जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: लालमाची।
0: और आपका पास, आपके पास जवाब क्या है?
1: वालोंटिना
0: तो फिनिक्स के नजदीक में होता है, और वालोंटिना का अर्थ पिगमेंट या डाई नहीं होता है, कुछ और ही होता है। लेकिन आपने कोशिश की सूर्यदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे, फिर से कोशिश करें।
1: धन्यवाद,
0: नमस्कार।

साथ निभाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीता जी फ्रांस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं थैंक यू मनीता जी और उन्होंने वहां से मैसेज भेजा है पाल्मा कैटरबोन जी नहीं पाल्मा का अर्थ आई डोंट थिंक इट इज अ पिगमेंट अ डाई व्हिच इज बिटवीन पर्पल और पिंक इट इज नॉट पाल्मा लेकिन मालिनी जी ने हमें सही जवाब दे दिया है थैंक यू मालिनी जी आपका जवाब आपका दूसरा जवाब सही है Others keep on trying.

शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी लोग जो इतनी रुचि दिखा रहे हैं इस खेल में, इस क्विज में। उमा जी ने एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज भेजा है और उनका सजेशन है मजेंटा। मजेंटा इज अ वेरी नाइस नेम, लेकिन और जहां तक हम जानते हैं मजेंटा इज अ कलर बिटवीन रेड एंड वायोलेट। सो हमने नहीं, ये मजेंटा इलाका शहर में है? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि मजेंटा इलाका शहर में है। सो उमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा नाम है मजेंटा। सो लेट्स रिकैप, हमने कहा कि जो इलाका हम ढूंढ रहे हैं मॉरिशस के एक शहर में पाया जाता है, यह है फर्स्ट टिप। सेकंड टिप, उस इलाके का नाम इट्स अ डाई, इट्स अ पिगमेंट जो पर्पल और पिंक के जैसा दिखता है, ये दूसरा संकेत। तीसरा संकेत, उसी इलाके का उसी नाम का एक शहर है इटली में। तीन, चौथा संकेत, आज उस इलाके में लगभग 361 लोग रहते हैं, जनसंख्या पॉपुलेशन। और जो पांचवा संकेत हम अब आपको देने जा रहे हैं, इट्स गोइंग टू नैरो द सर्च, वो इलाका वाक्वा शहर में पाया जाता है, वो इलाका वाक्वा शहर में पाया जाता है। अब आपको सही जवाब मिल ही जाएगा।

सो 4:41 हो चुके हैं. वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द प्रोग्राम और अभी तक सिर्फ मारिनी अपादू जी ने सही जवाब दिया है. बाकी सभी जस्ट चले हम इनको इनसे सुनते हैं.

0: हेलो
1: हेलो संजय भाई, नमस्ते।
0: नमस्ते सजीत भाई।
1: हाँ हम ही हैं।
0: और आप
1: कैसे पता चला?
0: आप आपकी आवाज है।
1: ओके थैंक यू।
0: आप रोजिल के रहने वाले?
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: ओके
1: आपको सब पता है।
0: सो सजीत भाई, आपके अनुमान से हम किस इलाके की बात कर रहे हैं?
1: नेवी जिमखाना वाकवा।
0: जिमखाना?
1: जिमखाना नेवी।
0: नेवी जिमखाना का अर्थ इज इट ए पिगमेंट?
1: नो द नेवी इज अ पिगमेंट।
0: अब नेवी जहां तक मेरा मेरा अनुमान है, इट इज नियर टू ब्लू।
1: नियर टू ब्लू? यस
0: या
1: पिंक एंड पर्पल।
0: लेकिन हम जो ढूंढ रहे हैं, नेवी नाम का कोई शहर है इटली में?
1: आई डोंट नो, मुझे पता नहीं।
0: सो सजीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपने भाग लिया। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, एंड थैंक यू फॉर योर आपकी दिलचस्पी के लिए। आप ऐसे ही भाग देते रहे। ओके थैंक यू।
1: ओके थैंक यू,
0: बाय। इस तहत हम अपने देश के बारे में जरा जानेंगे और ये जानेंगे कि इन इलाकों के नाम कहाँ से आए हैं। सो हमने आपको बताया कि इस नाम जो नाम है उस इलाके का, इट्स अ डाई, इट्स अ पिगमेंट। और जिस साल में ये पिगमेंट की डिस्कवरी हुई थी, उसी साल में इटली के उस शहर में एक घमासान युद्ध हुआ था। इसी तहत वाकवा के उस इलाके का नाम वो रखा गया। और हमने आपको बताया कि वाकवा शहर में वो पाया जाता है। अब जो आखिरी हम आपको संकेत देते हैं, उस इलाके में MGI कॉलेज की एक शाखा पाई जाती है। उस इलाके में MGI कॉलेज की एक शाखा पाई जाती है। आपका जवाब ऑन 402 80 70।

सो अभी तक जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया है, मारिनी आपादू जी, उमा जी आपने भी सही जवाब दिया, और फ्रांस की मनीता जी ने भी सही जवाब दिया। सो तीन लोगों ने सही जवाब दे दिया है, बाकी आप अभी तक ढूंढ रहे हैं। शुक्रिया आपकी दिलचस्पी और दिमाग लड़ाने के लिए। जो आखिरी संकेत हमने आपको दिया, उस इलाके में MGI कॉलेज की एक शाखा पाई जाती है, और कुछ समय है, आप ट्राई कीजिए 402 80 70 पर।

आशा जानू जी ने हमें मैसेज किया और वो लिखती हैं, उन्होंने पहला जो जवाब दिया इट वाज कास्कावेल। आशा जी, कास्कावेल वाकवा में नहीं पाया जाता है, वो तो बॉम्बू के उस पार में पाया जाता है। ब्यूटिफुल विलेज बट नॉट इन द रीजन ऑफ वाकवा। सिमला जी ने भी सही जवाब दिया, थैंक यू सिमला जी आपके सही जवाब के लिए।

ये सच है कि हमारे देश में बहुत ऐसे गांव शहर इलाके हैं जिनके नाम बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि हम नहीं जानते हैं कि ये नाम कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, और अक्सर ये भी होता है कि उन नामों के अर्थ भी हमें पता नहीं है। तो आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें पता चलेगा, और ख़ासकर जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको पता चलेगा कि हाँ, हमारे इलाके जहाँ पर हम रहते हैं वो इलाका, उस इलाके का नाम वहाँ से आया है। सो अ लास्ट रिकैप ऑफ ऑल द टिप्स जो हमने आपको दिए, वो इलाका शहर का है, दूसरा उस इलाके का नाम एक डाई, एक पिगमेंट है जो पर्पल और पिंक जैसा दिखता है, उसी इलाके के नाम पर एक शहर भी है इटली में जहाँ पर एक घमासान युद्ध हुआ था, और जिस साल में वो युद्ध हुआ था उसी साल में उस डाई का आविष्कार किया गया था, इसीलिए उस इलाके का नाम मॉरिशस के उस इलाके को दिया गया। आज उस इलाके में लगभग 361 लोग रहते हैं। वो इलाका वाक्वा शहर में पाया जाता है, और उस इलाके में आज MGI कॉलेज की एक शाखा पाई जाती है। सो इतने सारे संकेतों के बाद जिन जिन लोगों ने हमें सही जवाब दिया है, उमा जी, शिमला जी, मारिनी जी और फ्रांस की मनीता जी, थैंक यू आप सबों को, आपने सही जवाब दिया। थोड़ी देर में हम सबों को सही जवाब सुनाएंगे।

सो हम आप पहुंचे हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंत तक और जिस इलाके के बारे में आज हम आपसे प्रश्न पूछ रहे थे और उसी नाम का एक शहर पाया जाता है इटली में, वो इलाका जो वाकवा में पाया जाता है, वो इलाका जहां पर एमजीआई कॉलेज की एक शाखा पाई जाती है, वो इलाका है सोलफेरिनो। सोलफेरिनो बहुत से लोगों को पता नहीं था, और मैं कह सकता कि मुझे खुद पता नहीं था, लेकिन इस प्रोग्राम की तैयारी करने के बाद हमें पता चला है द मीनिंग ऑफ सोलफेरिनो इज इट इज अ डाई। ये एक पिगमेंट है जो पर्पल और पिंक के बीच में पाया जाता है। सोलफेरिनो नाम का एक शहर भी पाया जाता है इटली में और वहाँ के आसपास में मॉरिशस के लोग जाकर वहाँ पर बसे हैं। सोलफेरिनो नाम का जो शहर है वहाँ पर जहाँ पर इस डाई का आविष्कार हुआ था, तो वहाँ पर एक घमासान युद्ध हुआ था, तो इसी कारण मॉरिशस में वाकवा के इस इलाके का नाम सोलफेरिनो रखा गया और वहाँ पर बेशक एमजीआई कॉलेज की एक शाखा पाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जाकर पढ़ते हैं, योगा सीखते हैं, धर्म के बारे में सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं और बहुत ही सक्षम हैं। और वहाँ के रेक्टर को, हेडमिस्ट्रेस को और वहाँ के सभी टीचर्स को हम सलाम करते हैं। वे एमबीसी में आ चुके हैं और हमारे रामरस धारा प्रोग्राम में भाग ले चुके हैं और हनुमान चालीसा गायन प्रतियोगिता में उन्होंने तीसरा पुरस्कार भी प्राप्त किया था। सोलफेरिनो के रहने वाले सभी के हमारे श्रोताओं को हम सलाम करते हैं। सो आज आप जान पाए कि ये नाम सोलफेरिनो कहाँ से आया। धन्यवाद जितने भी लोगों ने भाग लिया हमारे इस प्रोग्राम में, आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद भाग लेने के लिए। अगले शनिवार को एक ऐसा ही प्रोग्राम लेकर हम आपके सामने में हाजिर होंगे। जय मॉरिशस।

0: 94.96 98.2। आप सुन रहे हैं RM3।
1: इस समय शाम के 5:02 हुए।
0: पुराने नगमे

0: पुराने गीतों की बहार लाए हैं आप सभी लिसनर्स के लिए। इस समय रेडियो मनोरंजन पर शाम के 5:07 हुए हैं, सबों का स्वागत है, वेलकम।
1: RM3 Radio. Radio. Radio.
0: एक घंटे का सुरीला सफर पुराने गीतों की वादियों में, और आपके मैसेजेस का स्वागत है ऑन 5250 6200।

सरगम के फूलों से सुर संगीत बनाएंगे। पुराने गीतों की वादियों में ये हंसी सफर संजय के साथ अब तक 6 पीएम। देखिए सजनों, आप अपने दिल को थाम कर बैठ जाए, क्योंकि अब की बार जो गाना हम आपके लिए पेश करने वाले हैं उसके लिए हम आपको ले चलेंगे 1971 में। फिल्म का नाम वो दिन याद करो। एक्टर संजय खान, एक्ट्रेस नंदा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। आवाज़ें लता मंगेशकर और तलत महमूद की।

0: पुराने नगमे
1: जी हाँ पुराने नगमे और इन फ्रीकी लहरों पर संजय के साथ ऊपर वाले की मेहरबानियां आप सब पर बनी रहे ऐसी हमारी मनोकामना शुक्रिया साथ निभाने के लिए शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए शारदा जी आपको कोटि-कोटि धन्यवाद सूरज शर्मा साजिदा जी जो पोर्ट्री से हमारा साथ निभा रहे हैं नई त्रियुले से हमारा साथ निभा रहे हैं और लिखते हैं लाजवाब लिसनिंग टू यू ब्यूटीफुल शो संजी बहुत बहुत शुक्रिया हर हर महादेव आपको भी और ये मैसेज आया है इनकी ओर से लिखते हैं बेस्ट विशेस टू यनिश एंड शिफा फ्रॉम रोड्रिग्स जिनकी शादी हो रही है सो जिन लोगों की की शादी हो रही है जो जो लोग विवाह के पवित्र बंधन में बंध रहे हैं आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम द होल रेडियो मनोरंजन टीम

0: पुराने नगमे
1: अपने प्यार के सपने सच हुए किशोरदा और लता जी की आवाजों में फिल्म बरसात की एक रात से लिया गया जिसमें अमिताभ बच्चन और राखी जी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। राखी एक नेत्रहीन अभिनेत्री थी उस फिल्म में और इस फिल्म में अमजाद खान ने विलेन का रोल निभाया था। इस फिल्म का ये गाना और इसके अलावा एक और गाना है जो बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत से लोगों को बहुत ही भाता है। थैंक यू साथ निभाने के लिए। हम यकीन है कि आप अगला गाना भी उतना ही पसंद करेंगे जितना कि ये गाना जो अभी भी आपने सुना। लता मंगेशकर, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर।

गाने ऐसे जो दिल में उतर जाए, पुराने गाने रेडियो मनोरंजन के लिए पर संजय के साथ। एंड दिस नेक्स्ट वन गोइंग उमा जी की ओर से, उनकी पूरी फैमिली के नाम फ्रॉम मेक्वायर, और उन तमाम लोगों के लिए जो इस गाने को दिल से पसंद करते हैं।

0: 3 Radio.
1: क्या आपको याद है कि ये गाना किस पर पिक्चराइज हुआ था, कैसे पिक्चराइज हुआ था, एंड व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द सॉन्ग? कुछ याद है आपको?

पांच बजकर सैंतीस मिनट आप सुन रहे पुराने नगमे संजय के साथ। शुक्रिया साथ निभाने के लिए। और दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट प्रोग्राम, लेकिन फिर भी हम आपके मैसेजेस अवश्य शामिल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। नेक्स्ट गाना कमिंग फ्रॉम द फिल्म अवतार। अवतार से पहले सितम घर हो जाए। And this one going for those जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं मॉरिशस में भी और विदेश में भी। So जो गाना हमने अभी अभी चलाया that was taken from the film शरारत released 1971 जिसमें काम किया था विश्वजीत और मुमताज ने। With the beautiful voice of मोहम्मद रफी साहब। और अब की बार किशोरदार आशा भोसले फिल्म सितमगर में।

इसी गाने पर हम लेते हैं ये मैसेज। मनीता जी हमें लिख रही हैं फ्रॉम फ्रांस, लिखते हैं हम भी आपके प्यारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं लेकिन दूर से, पुराने गाने मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। धन्यवाद संजीव फॉर ऑल दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। शुक्रिया आपको मनीता जी, इतनी दूर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

दिन महीने साल गुजर जाएंगे लेकिन इन गीतों को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। संजीव जी ने हमें याद किया फ्रॉम यूएस लिखते हैं सिलेक्शन एज ऑलवेज ग्रेट भाई जी शुक्रिया साथ निभाने के लिए संजीव जी फ्रॉम यूएस लिखते हैं होप ऑल इज वेल गुड टू हियर फ्रॉम यू एज ऑलवेज लिखते हैं कि आई रियली अप्रिशिएट द क्विज अबाउट द मोशन हिस्ट्री यानी कि वो गीत गाथा देश के प्रोग्राम के बारे में लिख रहे हैं थैंक यू लिखते हैं कि वेरी सैड बैक इन आवर स्कूल डेज वी डिडंट हैव दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कह रहे हैं संजीव जी लेकिन फिर भी लिखते हैं सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द अनहर्ड हिस्ट्री ऑफ मॉरिशियस थैंक यू संजीव भाई

चाहे दुख होए हंसते ही रहना। इसी विचार के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। 6 बजे आप सुनेंगे समाचार और हमारी आपकी अगली मुलाकात होगी रेडियो मनोरंजन पर गुरुवार की शाम को 5 बजे। प्रोग्राम होगा राम रस धारा। शाम के 4 बजे से लेकर अभी तक आप

समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सदियों से अटलस में अफ्रीका का छोटा आकार दिखाया जाता रहा है, जिसे सुधारने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एक प्रस्ताव अपनाया गया है। नवंबर में ग्रेड एक के 200 विद्यार्थी नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी नीस के नए संस्करण में हिस्सा लेंगे। इस पहल की घोषणा प्रधानमंत्री ने नए साल के संबोधन में की थी। कप 31 के लिए राजीव गांधी साइंस सेंटर में यूथ लीडरशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के सहयोग से युवा पत्र पर चर्चा की जा रही है। विदेश में नेपाल में भयानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा मानवीय सहायता और राहत अभियान तेज कर दिए गए हैं। और अब समाचार विस्तार से। सदियों से स्कूलों और अटलस में हावी होने वाली दुनिया के नक्शे ने अफ्रीका की छवि उतनी बड़ी नहीं दिखाई है जितनी वो वास्तव में है। कल शुक्रवार 4 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में देशों के एक भारी बहुमत ने इस विकृति को सुधारने के उद्देश्य से एक अफ्रीकी पहल का समर्थन किया। महासभा ने महाद्वीपों के वास्तविक आकार के प्रति अधिक सटीक वैश्विक मानचित्र प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए

0: एक प्रस्ताव अपनाया। ये पहल टुगो द्वारा लाई गई थी और इसे अफ्रीकन यूनियन का समर्थन प्राप्त है। ज़रा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: संयुक्त राष्ट्र ने एक रेजोल्यूशन के जरिए ऐसे नक्शों को बढ़ावा देने की हिमायत की है जो दुनिया के महाद्वीपों का असल क्षेत्रफल ज्यादा सही तरीके से दिखाते हैं। इस अभियान में अफ्रीका का अहम किरदार रहा है। पुराना मर्केटर मैप 16वीं सदी में बनाया गया था जो दिशा निर्धारित करने के लिए बहुत फायदेमंद था, लेकिन इसमें दुनिया के कुछ इलाके खासकर नॉर्थ और साउथ पोल के करीब के मुल्क अपने असल क्षेत्रफल से काफी बड़े नजर आते हैं। इसी वजह से अफ्रीका जैसे महाद्वीप का क्षेत्रफल अक्सर हकीकत से छोटा महसूस होता है। इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन इस मसले को दूर करने की कोशिश करता है। इस माप में महाद्वीपों के क्षेत्रों को उनके असल क्षेत्रफल के ज्यादा करीब दिखाया जाता है। मिसाल के तौर पर अफ्रीका की बहुत बड़ी हकीकी साइज ज्यादा वाजे नजर आती है। संयुक्त राष्ट्र में 154 मुल्कों ने मसौदे के पक्ष में वोट डाला जबकि एक देश ने इस फैसले के खिलाफ मत दिया। 6 देशों ने एब्सटेन किया है। टोगो ने इस चुनाव का संचालन किया। टोगो के विदेश मंत्री बताते हैं ये मसौदा अपनाना अफ्रीका और दुनिया के लिए ऐतिहासिक है। इससे इस बात की पुष्टि है कि स्पष्ट और बराबर प्रतिनिधित्व कितना जरूरी है। एक नक्शा एक तकनीकी औजार है लेकिन ये महाद्वीपों और जनताओं के स्थानों के लिए एक अहम बात है। ये रेजोल्यूशन सरकारों, स्कूलों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और टेक्नोलॉजी कंपनियों को हिम्मत देता है कि जब महाद्वीपों के क्षेत्रफल का मुकाबला करना हो तो इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन और दूसरे इक्वल एरिया नक्शे का इस्तेमाल करें।
0: नवंबर में ग्रेड 8 के 200 विद्यार्थी नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी नीस के नए संस्करण में हिस्सा लेंगे। लगभग 2 हफ्ते तक वे एक ऐसे कार्यक्रम का पालन करेंगे जिसमें नागरिक शिक्षा, चरित्र निर्माण, आपात स्थिति के लिए तैयारी और सामुदायिक मित्रता शामिल है। इस परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने नए साल पर जनता को अपने संबोधन के दौरान की थी। ये पहल 2012 में आयोजित पहली एडिशन के 14 साल बाद वापस आ रही है।
2: ये तस्वीरें साल 2012 की हैं। उस समय कुछ स्कूली छात्र नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन में हिस्सा ले रहे थे।
3: Est-ce qu'on peut arriver à diminuer la pauvreté à Maurice?
4: Oui, oui, oui.
5: Est-ce que quelqu'un de moi qui était une des rivales?
6: Un copain agresseur copine.
5: Dans une relation, vous êtes capable d'assumer nos responsabilités.
2: इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नागरिक मूल्यों, एक दूसरे की मदद और मॉरिशनवाद के प्रति जागरूक करना था। साथ ही उनमें अनुशासन, जिम्मेदारी और समाज के प्रति भागीदारी की भावना विकसित करना भी इसका उद्देश्य था। लेकिन इस पहली पहल के बाद ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सका। चौदह साल बाद सरकार ने अब इस कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। इस बार देश भर से ग्रेड 8 के 200 छात्रों का चयन किया जाएगा। ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन का एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। इन छात्रों का चयन सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी कॉलेजों से किया जाएगा। इनमें रॉड्रिक्स और अगालिगा के छात्र भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में 100 लड़कियां और 100 लड़के होंगे। पहले सप्ताह में छात्र अपने अपने एजुकेशन जोन में स्थित प्रशिक्षण केंद्र में गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। दूसरे सप्ताह में रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा। छात्रों को पंचखोम यूथ सेंटर और नेशनल कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर में रखा जाएगा। इस नए कार्यक्रम के कई प्रमुख हिस्से होंगे। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिसमें मॉरिशस का इतिहास, संविधान और देश की सांस्कृतिक विविधता तथा साझा विरासत के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद चरित्र निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा जिसमें अनुशासन, ईमानदारी और विवादों को संभालने जैसे विषय शामिल होंगे। कार्यक्रम में समुदाय के प्रति भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत नागरिक संवाद, सामाजिक समावेश और किसी सहयोगी संस्था के साथ मिलकर एक सामुदायिक परियोजना करने का मौका छात्रों को मिलेगा। इस कार्यक्रम के शैक्षणिक ढांचे को तैयार करने की जिम्मेदारी मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को दी गई है।
0: युवा पत्र जो तैयार किया जा रहा है यानी कब

0: pa igatiski li jeva un ka večara gio nau sebisa. November të kantalja Turki me ajë gjithë hogin, vishë e operdodin të Krajiv Gandhi Science Center mi për javërin Menchalaj, Youth Leadership Council or United Nations të tha Australian High Commissioner kisë e jogë si qërqa ki gja rëhi he, biomimetics yani prakriti si predict engineering kisano ki li e krishi kalender or prakriti sanjakshan si jure kanuno ki shiksha bachpan si hi dena is tayar ki ye ja rahi text me pesh ki gayi tarko ka hissa hai. रविवार को साबलनुआ के स्थानीय निवासियों और विदेशी श्रमिकों के बीच झड़पें हुई। इस घटना की विशेष परिस्थितियों से परे एक सवाल ये उठता है कि मॉरिशस के लोग बाहर से आए इन श्रमिकों को किस रूप में देखते हैं और सबसे बढ़कर ये श्रमिक खुद पर डाली जाने वाली इस नज़र को कैसे महसूस करते हैं, उनके रहने की स्थिति कैसी है। हमने इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है।
1: जो डिकायल मादागास्कर के रहने वाले हैं, उन्हें मॉरिशस में डिलीवरी का काम करते हुए 3 महीने हो चुके हैं। मादागास्कर आई एक कंपनी के जरिए यहाँ आया हूँ। हम सैंपल में रहते हैं, कुल मिलाकर 15 लोग हैं। यहाँ सभी लोग अच्छे हैं। सुपरमार्केट में कुछ कैशियर भी मादागास्कर से हैं। वे कैमरे के सामने बात नहीं करना चाहती। कुछ जगहों पर ग्राहक उनके धीरे काम करने, कभी कभी मुस्कुराकर बात न करने या भाषा की समस्या को लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये एक जरूरत है। यहाँ वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है। कुछ लोग यहाँ रहने की आदत आसानी से डाल लेते हैं। सुपरमार्केट से बाहर निकलते समय हमारी मुलाकात नाइजीरिया के रहने वाले फोंकने से होती है। 28 साल की उम्र में वे पिछले 6 साल से वेटर का काम कर रहे हैं। कई मॉरिशियनों से मिलता हूं, ज्यादातर अच्छे हैं। मुझे मॉरिशस बहुत पसंद है, मेरे लिए ये स्वर्ग है। थोड़ा आगे हमारी मुलाकात वैभव से होती है। दुकान के मैनेजर, जो हमारी भाषा अच्छी तरह जानते हैं, बताते हैं कि कभी कभी उन्हें लोगों की कड़ी बातें भी सुननी पड़ती हैं। लेकिन नई दिल्ली के रहने वाले वैभव का कहना है कि वे मॉरिशस के समाज में अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। जिस तरह उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कभी कभी कुछ परिस्थितियां परेशान कर देने वाली होती हैं, लेकिन ज्यादातर समय सब कुछ ठीक होता है। मॉरिशस में काम करना आसान है। कर्मचारियों में दीपाली भी हैं, जो मॉरिशस में पिछले 1.5 महीने से काम कर रही हैं।
2: कि मुझे यहाँ का कल्चर काफ़ी अच्छा लगता है, वेदर बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली यहाँ के लोग। तो मुझे यहाँ पे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि मैं इंडिया छोड़ के आई हूँ।
1: वहीं अमृता भी विदेशी कामगारों की सेवाओं से संतुष्ट है। कुछ दुकानों में अच्छे से स्वागत नहीं होता, चेहरे में मुस्कुराहट नहीं होती, लेकिन यहाँ अच्छा स्वागत किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में 50,000 से ज्यादा विदेशी कामगार हैं। उनके पास काम करने का परमिट या सर्टिफिकेट ऑफ एग्जेम्पशन है। इनकी बढ़ती संख्या से कुछ मॉरिशनों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। उन लोगों की संस्कृति मॉरिशस की संस्कृति से अलग है। हम लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उन लोगों की ऐसी मानसिकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे देशों से यहाँ आए लोगों को मूर्ख समझकर उनका फायदा उठाया जाए। ट्रेड यूनियन के नेताओं का ये कहना है, वे विदेशी कामगारों के आने के साथ उनसे जुड़ी समस्याओं को भी सामने आते देख रहे हैं। तो क्या समाज में विदेशी लोगों के प्रति भेदभाव की भावना की शुरुआत हो रही है, या ज़ेनोफोबिया यानी विदेशी लोगों के प्रति नफरत कहना कुछ ज्यादा होगा। हमें इन लोगों की बहुत जरूरत है, लेकिन उनको क्या सुरक्षा देते हैं, उनकी मदद कैसे करते हैं। यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने पर इंडक्शन होता है, लेकिन क्या नौकरी शुरू करने से पहले इन लोगों को 1 सप्ताह के लिए मॉरिशस की संस्कृतियों के बारे में समझाया जाता है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, कहां जा सकते हैं कहां नहीं, इन सब के बारे में उन्हें नहीं बताते। हमारी और सरकार के बीच बैठक के जरिए समाधान ढूंढना चाहिए। पहले जहां विदेशी कामगार ज्यादातर निर्माण और कपड़ा उद्योग तक सीमित थे, वहीं अब वे कई अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और अब हमें इसके साथ तालमेल बिठाना होगा, क्योंकि आने वाले वर्षों में उनकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
0: मॉरिशस में कुछ पुराने रेलवे स्टेशन हमारे इतिहास के एक हिस्से को जीवित रखे हुए हैं।

0: कुछ को पोस्ट ऑफिस में बदल दिया गया है और वे आज भी यादों के स्थान बने हुए हैं, लेकिन साथ ही ऐसे भवन भी है जिन्हें रखरखाव और संरक्षण की आवश्यकता है। मॉरिशस और फ्रांसीसी गणराज्य के बीच सहयोग, जिसकी घोषणा कैबिनेट ने अगस्त में की थी, का उद्देश्य विशेष रूप से मॉरिशस की वास्तुकला विरासत के संरक्षण और संवर्धन को मजबूत करना है, जिसमें इन स्थलों के पुनर्वास और प्रबंधन के लिए एक पब्लिक प्राइवेट संरचना स्थापित करने की संभावना भी शामिल है। कल रात हिंदू समुदाय ने भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया। पूरे टापू पर भक्त इस आध्यात्मिक आयोजन को प्रार्थनाओं, पारंपरिक नृत्य और भक्ति के साथ मनाने के लिए मंदिरों में इकट्ठे हुए। कृष्ण भगवान अभी भी बुजुर्गों और युवाओं दोनों के दिलों और दिमागों में एक विशेष स्थान बनाए हुए हैं। विदेश में नेपाल में भयानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद मानवीय सहायता तेज की जा रही है, जिन्होंने देश के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है। हजारों लोग बेघर और प्रभावित हुए हैं। सबसे जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपने अभियानों को मजबूत कर रहे हैं। देश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं याशना मिश्रा के साथ।
1: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात आसमान साफ रहेगा, कल सुबह पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर जबकि दोपहर बाद पश्चिमी इलाकों पर बादल घिरा सकते हैं और हल्की बारिश भी हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16, अधिकतम 22 से 24, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:15 बजे और शाम को सूर्यास्त 6:02 पर होगा।

0: इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजान का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
0: रॉय रोड ब्रह्मस्थान में 92 साल की 92 ईयर्स और की श्रीमती सावित्री आपादू पैदाइशी नाम पापिया जो श्रीमती ताताई मदाम ताताई नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन की उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे कल दिन के 11 बजे उनके घर रॉय रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मा ऑफलाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। रॉबिन्सन रिवर लेन क्यूपिप में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री बालाल रामेसर जो अनिरुद्ध नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके घर रॉबिन्सन रिवर लेन क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिकाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 PM। रॉय रोड लेसियो सेबास्तोपोल में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के श्री दया रामराचा जो ऋषि प्रेसिडेंट नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह दस बजे उनके भाई श्री शैलेश रामराचा के घर रॉय रोड लेसिया सेबास्तोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। कटकारो स्ट्रीट ओकुले में 37 साल के

37 years old के श्री केसावन नारायणन, श्री केसावन नारायणन जो केसावन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके भाई श्री डॉमेन नारायणन के घर कथकाहो स्ट्रीट ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिकाखा की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 9:30 AM

0: की 98 years old की श्रीमती आपलामा जोगाना, श्रीमती आपलामा जोगाना जो तौचिन आपलाम नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल सुबह दस बजे उनके बेटे श्री आत्मा जोगाना के घर गोबिन लेन मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टोम्बो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। धनुष लेन लोशी त्यागोज में, धनुष लेन लोशी त्यागोज में 71 साल के 71 years old के श्री सुपाया उसखाल जो दासन जनता नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल सुबह दस बजे उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी उसखाल के घर धनुष लेन लोशे त्यागोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वामाशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।

MBC Radio, 24 hours a day. शाम के 6:20 और 40 सेकंड लीजिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। सीबी अपने सभी ग्राहकों को सूचित करता है, खासतौर पे पोर्टली और आसपास के इलाकों को, कि कल रविवार सुबह साढ़े आठ बजे से सपहर के 3 बजे के बीच इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सुबह 8:30 बजे से दिन के 3 बजे के बीच ये हैं सियासी सगा राम गुलाम गली और आसपास के इलाकों के रहने वाले बाशिंदों को सूचित किया जाता है कि कल बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी सुबह 8:30 बजे से सपहर के 3 बजे के बीच। फिर वैदें के रहने वाले ग्राहकों को भी सूचित किया जाता है कि मोसेलमो एम दिया, मोसेलमो एम एसा, शुमे दागोचिया, सियाश आ वैदें, रॉयल रोड वैदें और आसपास के बाशिंदों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 6 सितंबर 2026 की सुबह 8:30 बजे से सपहर के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली चालू कर दी जाएगी। रोजहिल के रहने वाले इन इलाकों के बाशिंदों को भी सूचित किया जाता है कि कल सुबह 8:30 बजे से सपहर के 3 बजे के बीच एवेन्यू ब्लू लेन, अक्वागेल फैक्ट्री और एवेन्यू बेतो के एक भाग में रहने वाले बाशिंदों को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 8:30 से सपहर के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। अब कल ही सुबह 9 बजे से सपहर के 3 बजे के बीच ग्रांबे में कोस्टल रोड होटल लुक्स कैजिनो और होटल वेरोंडा ग्रांबे के आसपास के इलाकों के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि

0: वहां पर चल रहे मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सुबह 9 से सपहर के 3 बजे के बीच बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली चालू कर दी जाएगी। और मोंश्वाजी तथा होटल ग्रैंड ब्लू, रामजतन, मेजिटेरानी और मोसेलमा मोंश्वाजी के रहने वाले बाशिंदों को भी सूचित किया जाता है कि कल सुबह 8:30 बजे से दिन के 2 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से इन इलाकों में भी बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली चालू कर दी जाएगी। सेबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति इन समस्त असुविधाओं के लिए क्षमा प्रार्थी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

नमस्कार श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए, 6:30 बज चुके हैं। नई सोच कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती है पूजा। हमेशा की तरह एक नई सोच आप सभी के नाम। आज हम बात करेंगे सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं। जी हाँ, आज की नई सोच कहती है हर चीज को पाना जरूरी नहीं, हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को चुन लेना ही जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला होता है। आज की भागदौड़ी में कामयाबी को नंबर में नापने लगे हैं। सैलरी कितनी है, घर कैसा है, गाड़ी कौन सी है, कितनी फॉलोअर्स हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है, सुकून कितना है। जी हाँ, जब हम सुबह सुबह उठते हैं लैपटॉप के साथ जल्दबाजी में और काम से निकलते हैं तो थकान के मारे टिकटॉक, सोशल मीडिया और इसी के चलते चलते हम सो भी जाते हैं, पर क्या परिवार को समय देना, उन लोगों से बातचीत करना, ये हमारा कर्म नहीं, हमारा कर्तव्य नहीं? सक्सेस के पीछे भागते भागते क्या हम अपने आप को ही पीछे नहीं छोड़ रहे हैं? आपका क्या विचार है? तो चलिए आज इसी पर हम बात करेंगे, इसी नई सोच को लेकर। आरएम फ्री पर कुछ गीत भी इसी विषय पर आप सभी के नाम साथ निभा रही है पूजा। और कहते हैं श्रोताओं कि हर चीज को पाना जरूरी नहीं, कभी खो देना भी जरूरी होता है, कभी गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, और इस समय में कौन साथ देता है ये भी पता चलता है, क्योंकि सुख पे तो सभी साथी है, दुख में कोई भी नहीं। सक्सेस का ये भी मतलब होता है कि जब हम पढ़ते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, इसका ये मतलब है नहीं कि हम हमेशा पैसा कमाएं, गाड़ी खरीदे, घर खरीदे, सब कुछ जल्दी जल्दी करें, ये आवश्यक नहीं। सबका एक समय होता है, सब कुछ का एक समय होता है, हर किसी का एक समय होता है, और वो समय अवश्य आता है। खुलकर सांस लीजिए और कामयाबी के पीछे नहीं, आप किस प्रकार से अपने जीवन की कठिनाइयों को का सामना करते हैं, ये जरूरी है। यही सबसे बड़ी जीत है कि जब आप गिर जाते हो तो उठने का एक साहस होता है, गिरकर संभालना भी सक्सेस का नाम है, क्योंकि जब भी कोई गिरता है तो उठने का प्रयास भी नहीं करता, सोचता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, पर नहीं, असली जीत और असली शुरुआत यहीं से शुरू होता है। चलिए

0: आप सभी के नाम फ्रीडियत फिल्म से गिव मी सम सनशाइन आप सभी के लिए और इन फ्री पर आप सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं सक्सेस क्या सिर्फ पैसे कमाना है या कुछ और भी। कभी कभी हम पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन वक्त खो देते हैं, नाम तो कमा लेते हैं लेकिन अपनों के साथ बातें खो देते हैं, है ना। जब हम किसी चीज को खो देते हैं तभी उसका इम्पोर्टेंस हम समझ पाते हैं, वरना सामने तो सब कुछ होता है पर फिर भी अनसुना अनकहा रह जाता है सब कुछ। आपके लिए सक्सेस क्या है? 5250620000 पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं, नहीं तो फ़ोन भी कर सकते हैं 402-8070 पर 402-80-70 पर। जिंदगी भी अजीब है, कुछ पाते भी हैं और कुछ खोते भी हैं। लता जी और मुकेश जी के आवाज़ों में एक प्यार का नगमा है, ये उन सभी के नाम जो अभी हमारे साथ दे रहे हैं। प्रवीण जी हैं, अंजनी जी हैं और अलुखु सचिता जी हैं। नई सोच के बाद हम भरेंगे दिलों की आवाज़ की ओर, जहाँ पर आप हमें अपना डेडिकेशन भेज सकते हैं, कुछ भी फरमाइश हो 402-8070 पर आपका इंतज़ार है। प्यार का नवा

श्रोताओं कहते हैं कि जीवन में सक्सेस को पाना आवश्यक है अपनी काबिलियत को पहचानने के लिए, पर जब हम सक्सेस को पा लेते हैं, कामयाबी को पा लेते हैं, तो कभी-कभी इंसान में घमंड आ जाते हैं और घमंड आते-आते इंसान कब घमंड से बात करने लगता है, स्वयं को भूलकर अपने आप को शक्तिशाली समझने लगता है, पर वो भूल जाता है कि जो आज कामयाबी उसने पाया है, कल ये भी नहीं रह सकता, ये भी खो सकता है, गिर भी सकता है, क्योंकि हर सुबह के बाद अंधेरा अवश्य आता है और अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आता है। हर अंत का एक आरंभ होता है और हर आरंभ का एक अंत भी होता है। इसीलिए आर में आकर कभी भी किसी की जो है बेइज्जती मत कीजिए, इंसल्ट मत कीजिए, क्योंकि आज भले ही वो पीछे रह गया, आप आगे बढ़ गए, कभी ना कभी वो भी आगे बढ़ेगा और कभी ना कभी आप भी पीछे हो ही जाएंगे। इसीलिए कहते हैं सक्सेस का केवल पैसे कमाना ही नहीं होता, कभी कभी दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है। कभी कभी जब हम एक अहदे पर आ जाते हैं तो हम भूल जाते हैं हम क्या थे, क्या हो गए हैं। अपने आप को ही भूल जाते हैं और अपने वर्तमान को ही सब कुछ मान लेते हैं। इसीलिए जब भी हम किसी पद में होते हैं तो किसी की मदद भी करना आवश्यक है। जब कोई सहायता मांगे तो आप सहायता कीजिए। आप देखेंगे कि अपने अंदर ही एक सुकून मिलेगा कि हाँ, किसी की मदद तो मैंने की, ये भी एक कामयाबी है। सुकून, अपने अंदर में सुकून पाना, किसी को मुस्कान देना, मुस्कुराहट देना, खुशी देना,

दोस्तों कहते हैं कि पैसा तो बुरा नहीं, कामयाबी भी बुरी नहीं, पर बड़े सपने देखना भी गलत नहीं। गलती तो तब होती है जब हम कामयाबी को सिर्फ पैसों का नाम देते हैं। पैसा लेकिन समय नहीं, नौकरी लेकिन खुशी नहीं, फॉलोअर्स लेकिन सच्ची बातचीत नहीं, बड़ा घर लेकिन अपनापन नहीं, उपलब्धियां लेकिन नींद नहीं। जब कोई गिरता है ना तो कई लोग जो हैं उन पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अरे ये गिर गया फिर से नहीं उठेगा। पर जो गिर कर फिर से संभलता है उसी को तो सिकंदर कहलाते हैं, है ना। ये अपने आप में ही एक सक्सेस है जब वो उठ जाता है और फिर से चलने लगता है, क्योंकि मत भूलिए आसपास है खुदा।

हर दिल में एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ लफ्जों में बयां हो जाती हैं और कुछ सिर्फ महसूस की जाती है। किसी के दिल में मोहब्बत है तो किसी के दिल में इंतजार, किसी के दिल में कोई पुरानी याद और किसी के दिल में एक ऐसा नाम जो आज भी धड़कनों के साथ चलता है। कभी किसी को कुछ कहना था मगर वो बात कह नहीं पाए। कभी कोई गाना सुना और लगा जैसे कि वो गाना सिर्फ आपके लिए ही बना है। तो आज की रात जो बात जुबान नहीं कह पाई शायद एक गीत कह देगा। जो एहसास दिल में छुपा है शायद एक डेडिकेशन उस आवाज दे देगा। दिलों की आवाज कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। 4028070 पर 402-80-70 पर आप अपना डेडिकेशन हम तक पहुंचा सकते हैं, नहीं तो 5250-6200 पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। अभी के लिए नंदा जी जो हैं, नंदा फैमिली हमारे साथ दे रहे हैं

0: और बड़े प्यार से नंदा जी ने अपने पूरे परिवार के नाम मुकेश जी की आवाज में संगम फिल्म से इस गीत की मांग की है। आइए इस गीत को हम सुनते हैं, ओ महबूबा। आप भी अगर कोई गीत सुनना चाह रहे हैं, डेडिकेशन है,
1: ओ महबूबा,
0: या फिर कोई जन्मदिन के गीत
1: तेरे दिल के पास
0: किसी तक पहुंचाना चाहते हैं,
1: मेरी
0: तो बेझिझक आप फोन कर सकते हैं 402-807-0 पर, नहीं तो 5250-6200 पर।

0: तो चलिए वो महबूबा ये नंदा फैमिली के लिए, और अभी हम भरेंगे नेक्स्ट सॉन्ग की ओर. और जो है अनीता जी हैं फिका फ्लैग से, और गीत की मांगी है अपने पूरे परिवार के नाम. तो चलिए अभी आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़.
1: दिलों की आवाज़, की आवाज़, दिलों की आवाज़.
0: जी हाँ, कभी कभी हम जो लब नहीं कह पाते ये दिल, ये और ये गीत कह जाते हैं. तो चलिए आप सभी के नाम और साथ दे रही हैं अभी अनीता जी की कॉफ्लाक से, तो उनके नाम और उनके पूरे परिवार के लिए.

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: तो चलिए अभी के लिए अपर्णा जो है बड़े प्यार से सुन रही हैं हमें, और साथ में हैं उनकी मामा नवीना जी जो बड़े प्यार से सुन रही है हमें, शायद खाना पकाते पकाते सुन रही हैं। और उनके नाम चलिए ये प्यारा सा गीत फिल्म है सागर। और मैं तो यही मानती हूँ कि जैसे अपर्णा सुंदर है उसकी मम्मी भी सुंदर ही होगी। और चलिए आप सभी के नाम, ये फिल्म ही कुछ ऐसी है जो आपको उस दौर में ले चलते हैं, साथ साथ ऐसा भी लगता है कि ये गीत आपके लिए बना है। सागर जैसी आंखों वाली फिल्म है सागर। इसमें नजर आए थे डिंपल और साथ में है ऋषि कपूर जी। उस समय के दौर, उस समय के गीत।

दिलों की आवाज कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत कर रही हैं पूजा। वैसे कहते हैं ना कि जो लव नहीं कह पाते ये गीत कहे जाते हैं, और कभी कभी हम अपनों को बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत प्यार भी देना चाहते हैं, पर ये शब्द जो हैं छोटे पड़ जाते हैं। तो चलिए अभी के लिए यज जो हैं साथ निभा रहे हैं और साथ में हैं उनके पूरे परिवार, दयाल परिवार साथ में हैं, बलराम दयाल, और हैप्पी बर्थडे टू देविका दयाल जी और उनके पूरे जो फ्रेंड्स हैं और उनके नाम। चलिए प्यारा सा गीत और फिल्म है आवारापन 2 और सुबोध शर्मा जी की आवाज़ में आइए इस गीत को सुनते हैं। और जो भी लोग अभी साथ दे रहे हैं सभी का फिर से स्वागत है दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में, जहां पर आप जो है हमें फ़ोन भी कर सकते हैं 4028070 पर 92 80 70, नहीं तो 5250 6200 पर। ये शाम आप सभी के नाम जुनून

नाम ने फिल्म से गीत की मांग की है सजादा जी। पूरे परिवार के नाम बेटा निशार और त्रियोले के उनके पूरे परिवार के लिए।

दिलों की आवाज़ कार्यक्रम जारी है आरएम फ्री पर और अभी के लिए जो है सुनीता जी साथ दे रही हैं और सुनीता जी अपने प्यारे पति संजीव के लिए भविदाओं से हैं सुनीता जी और उनके पति संजीव के लिए इस गीत की मांग की है फिल्म भीगी पलकें लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी साथ दोनों के डुएट जन्म जन्म का साथ तुम्हारा आइए इस गीत को हम सुनते हैं और अगर आप भी कोई गीत सुनना चाह रहे हैं जन्मदिन हो या किसी खास के लिए तो बेझिझक आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 4

0: 5250 6200
1: पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा। भाई हमारा और आपका साथ तो जन्म जन्म का ही है, गीतों से है और गीतों से ये रेडियो भी। सादेरी है शोभा जी वाकवा से, कमला दीनू जी हैं मोताबा से, चित्रा जी हैं मौदालबिया से, ललिता कुशल जी हैं त्रियोली से, आप सभी का दिल से स्वागत है।

0: तुम्हारा और हमारा अभी के लिए बहुत सारे लोग साथ दे रहे हैं दिलों की आवाज़ कार्यक्रम, आपके ही जो है कार्यक्रम हम चला रहे हैं और इन फ्री पर और रेडियो मनोरंजन आप सभी के नाम, आप सभी के मनोरंजन के लिए हाजिर हैं। और अभी मुकेश जी की आवाज़ में आनंद फिल्म से गीत की फरमाइश की है, नमस्ते प्लीज़ प्ले सॉन्ग मैंने तेरे लिए, और ये गीत फिल्म है आनंद और सुना जी हैं वाकवा से। और जो भी लोग इस गीत को पसंद करते हैं, फिल्म भी तो बहुत ही सुंदर है।
1: मैंने तेरे लिए ही सात रंग,
0: इस गीत का, इस फिल्म के गीत सारे बहुत ही सुंदर है।

0: दिलों की आवाज
1: सचिन जी हैं पॉम्पलेमूस से और उन्होंने लावारिस फिल्म से गीत की मांग की है, खासतौर पर अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में। आइए इस गीत को

इसीलिए तो हम आते हैं 4028077 पर। बहुत सारे फोन कॉल्स और मैसेजेस भी आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने प्यार और अपनापन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेस टू यानी शिफा, जो रॉड्रिक्स में जो हैं अपने सालगिरह मना रहे हैं और साथ दे रहे हैं। दागैन स्वेता हाविश प्रीशा लोविशा अपादू परिवार जो खुशनुआ के हैं, और जो हैं ये गीत खास तौर पर दागैन स्वेता गाविश प्रीशा लोविशा अपादू परिवार जो खुशनुआ के हैं, और उनके सभी दोस्तों के लिए इस गीत की मांग की है। फिल्म में फिल्म है आंखों में तुम, और टाइटल सॉन्ग आप सभी के नाम कुमार सानू जी और साथ दे रही है अलका याग्निक जी। दिलों की आवाज जारी है, आप ही के दिलों के पास 4028077।

ब्रह्मस्थान से हैं और उन्हें लगा कि मैं सुरेखा जी हूँ, नहीं पूजा हूँ। और माधुरी जी के लिए भी चलिए आपके नाम

0: जय श्री कृष्णा और संध्या जी हैं सैंपियर से, फिल्म संजोग से गीत की मांग की है।
1: यशोदा का नंद लाला
0: चंदनी जी।

दिलबरो फिल्म दिलबरो राजी फिल्म से दिलबरो का जो गीत है और इस गीत की मांग की है उमा जी फोंजी साग से और शादी में जा रही हैं और ये गीत सुना

पूर्णिमा फुकीरा जी हैं और अभी सुन रही हैं हमें बड़े प्यार से पूजा, पूनम, पिंकी और उनकी बहन शोभा, अनीता और आयान, स्वनीश, कनीश जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए उनके नाम अमन फिल्म से।

दिलों की आवाज कार्यक्रम में खास तौर पर सुदेवी वाकवा के हैं और ललिता दीदी के लिए जो त्रयुले रहती हैं और कुशल परिवार के नाम दीदी सुनीता शोभा दिविना मलिंगा से गमगतन कुआरू परिवारों के लिए और फिल्म है हनीमून से गीत की मांग की है। तो चलिए आपके नाम सुदेवी जी।

0: दिलों की आवाज, की आवाज,
1: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज। और ये कार्यक्रम आरएम फ्री पर रेडियो मनोरंजन पर। चलिए अभी नेक्स्ट सॉन्ग जो है हरीश जी जो बोबासिया के हैं, अपने पूरे परिवार के नाम दूसरा आदमी फिल्म से गीत की मांग की है। चल कहीं दूर ले चलें, ले जाएं आपको उसी दौर में जहां कुछ पुराने गीत किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़, महेंद्र कपूर जी कहते हैं ना, यूं ही हम नहीं कहते, ओल्ड इज़ गोल्ड। गीत पुराने हो या फिर नए, दिल तक पहुंच ही जाते हैं। आज की शाम आप सभी के नाम दिलों की आवाज़ कार्यक्रम में।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: दिल से दिल मिला ले। जी हाँ, दिलों की आवाज 402-8-0-7-0-4-4-2-80-70 पर। और शाम कुछ ऐसे हैं, कुछ पुराने गीत आप सभी के नाम चला रहे हैं, आपके ही के गीत, आपके ही पसंद के गीत हम चला रहे हैं। और अभी साजिद जी के नाम जो अपने एक दोस्त के साथ हमें सुन रही हैं, चलिए मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में सूरज फिल्म से

तो चलिए अभी अगला जो गीत है श्यामा रघुनंदन जी और वीना रामफल जी के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं दे रही है आरएम फ्री पर रॉर जो है नवीन लक्ष्मण जी तो और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर एम फ्री पर आप सभी के नाम ये हंसता हुआ कारवां हेमंत कुमार जी की आवाज़ में।

पालमा से सुन रहे हैं महेंद्र जी, दीदी मानना और जो उनके पूरे परिवार के नाम। आइए इस गीत को हम सुनते हैं कश्मीर की कली फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। बहुत ही सुंदर सा गीत है और इसी के साथ हम दिलों की आवाज़ कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में मेरा साथ दिया है, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जो है रात्रि अच्छे से बीते और इन गीतों का आनंद आपने उठाए होंगे, बस यही आशा करती हूँ। आप सभी को मैं यही कहूँगी, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, गुड बाय बाय और लॉज ऑफ लव। पूजा की ओर से मुझे अनुमति दीजिए, नमस्ते और प्रणाम।

0: भोजपुरी तड़का।
1: पूरी तड़का कार्यक्रम और ही चला हाई जा पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन अनीता जी फ्लिक ऑफ फ्लाग बगल से साथ देवत हवन सब कोई भक्तन खातिन काहे के काल सब कोई कृष्णमय भजन कृष्णमय भक्ति में लीन रहल और कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व मनावल गल। तो चला आज के कार्यक्रम में कृष्ण ओकज की आवाज में रखल राधा के सोभेला हाई गीत के उमांग कर ले हवन जितना कोई सुना था वन सब कोई खातिन सब टीम खातिन रात के जे काम करा था उन सब कोई खातिन और चला हाई जा पर अमृता गणेश जी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन पीतों बगल से उनकर दूगो नातिन सोनिया और परी बेटा हवन विषम और पतो हवन मीनाक्षी खातिन हाई ये की चलाओ अब जा और सब गणेश परिवार जे पीतों से हमनी के साथ देवत हवन।

0: तो चला बढ़िया गीत संगे बढ़िया बढ़िया चुटकुला भी तोरा सुनावब जा चाची हमनी के कोन दिन भेटा गल बोले जाने लो बेटी चाची बोले हमनी के जहाइजन महिला है जो नारी के जीवन है वो बहुत बहुत कारा है बहुत तकलीफ में रहेला बहुत फासिल नहीं है बहुत मुश्किले से आगे बढ़ेला हम बोले हाँ चाची है तो तू हमनी के बहुत अच्छा बड़ा बात बोल देला बोले जाने ल फासिल काहे नहीं है बोले नहीं चाची है तो नहीं बतैलक तू हमनी के बोले हाँ देख जब का जब देखा तब पोसवा में पैसवा भी नहीं रही तब वो शॉपिंग करे के बहुत मन करेला बाजार जाए के हर समय कुछ ना कुछ खाते रहे के और ही खाते के बाद खाई के बाद मन करेला पतरा रहे के और सब नारी लोग के सब महिला लोग के है ये प्रॉब्लम है कि बरसों पुराना बात ओकरा हमेशा याद रहेला और जब तू फ्रिजिडेयर खोलबा तो फ्रिजिडेयर के सामने तू 2 मिनट ठड़ा रहबा और देखते रहबा नहीं जनबा कौन ची करे आल हवा फ्रिजिडेयर हियाँ अभी तो याद नहीं आवेला आइए तो बोला था मैडम लोग के जीवन फासिल नहीं है
1: राधा के शोभेला धर्मां सिंदूरुआ कृष्णा

भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जे पसंदीदा गीत के कार्यक्रम हा और मजेदार चुटकुला के संगे संगे तड़का मारत है बढ़िया बढ़िया गीत के। तो चला 9:17 हो गल बा और हाई जा पर सुनीता जी बिल्कुल तैनात हो गल हवन हमनी के संगे कार्यक्रम में गीत सुने खातिन गाँव गोब से उत्साह देवत हवन और कंगोमा बगल से विमला जी उनकर प्यारी बहिन और साथ हवन वीना जी गुडलैंड बगल से और गाँव गोब से ही साथ देवत हवन अमृता जी। और आज हमनी के बोले टेलीविजन में हाउ गीतवा देखले रहल नीरज गुप्त मधु के आवाज में रखल हेले साबुन हेले लुंडा। तो चला हाँ ये गीत चलाओ अब जा तोहर खातिन तोहर पूरा परिवार खातिन। और हमर चाचा के किस्सा तक सुनते चला। चाचा हमर जोन हा वो अपन भैया दमोदर के भेंट कर लग और दमोदर भैया के लगल अपन दुखड़ा सुनावे बोले जाने ल भैया दमोदर कुछ बरिस पहला थोड़ा दिन पहला हमनी के एगो बाबा भेटाल रहल तो वो हमनी के बोलत रहलन दू थोड़ा थोड़ा बरिस गाड़ी भेंट कर ले रहलन तो वो हमनी के बोले जाने ल गजोधर ऊपर वाला जब तोरा दे तो तू संभारे नहीं सकबा उतना तोरा दे दे। हम का जनत रहली कि भगवान हमनी के इतना त्राका इतना तौस्यों इतना टेंशन इतना बीमारी दे सच्चे के हम तो नहीं जानत रहली कि वो हमर बीमारी हमर त्राका के बात बोलत रहलन। इतना त्राका कि अब संभारे नहीं सकत हैं हो

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का
1: ऐसन ठंडा में कहाँ लूंडा लेके धोबा हो, कहाँ लेके नहीं बह। ऐसन ठंडा जे

इतना करता का बोलब त चला ऐसन ठंडा ठंडा मौसम में सब कोई हमनी के बहुत प्यार से साथ देवत हवन त आशा करब जा कि ऐसने गर्माहट बना के रखिया गर्मा गर्म गीत के संगे और चला मजेदार गीत के साथ देवत हवन सब कोई हमनी के साथ देवत हवन हैजा पर और अनीता लाल जी हमनी के साथ है जुड़ गल हवन मोडाल ब्या बगल से ईतू परिवार गोगा परिवार लाल जी परिवार और नागेश्वर परिवार खातिर सुनीता ननकू के आवाज में रखल है अगला गीत के ऊ मांग करत हवन त चला मजेदार कार्यक्रम संगे साथ देते रहिए जा औरी चचा हमनी के बोले जाने ल बेटा अपन खुद का गलती जब कबो एगया हो जाला खुद के गलती पे जो तू हसब तो तोहार जीवन तोहार उम्र जोन है वो बढ़ते चले जाला। हम बोले सच्चे बोला था वो चचा बोले हाँ हमन हमर जोन दादा पर दादा रहल वो हमनी के हई बतवा बोले रहल कि अपन खुद के गलती पे जे तू हसब तो तोहार उमीर बढ़ते चले जाई आउरी जे पंगार पंगार तू कबो अपन पत्नी के गलती पे हंस देलक तो जाने ल कौन ची होला ना तोहार उमर जोन है घटते चला जाई जोन करिया करले हवा ना बरवा उज्जर होते चले जाई

0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला है जहाँ पर हमने के साथ देवत हवन भाई आबू संगे जुट गल हवन आफेज आयाज असलम जायान जहीरा खाला छोटी और रईस और उनकर संगतिया हवन आपी और उनकर पत्नी और छोड़ के मोरिस्वा आतिश बागी गति के आवाज़ में रखल हई गीतवा चलाओ अप डाउन कर खातिन और ही हमनी के साथ देवत हवन वाकवा देने से दीदी सुनीता दीदी सुदेवी दीदी सुनीता शोभा देवीना और मलेगा से हवन राम रतन परिवार और चाची ललिता कुशल खातिन अगला गीत के मांग करत हवन सुदेवी जी हमनी के बोले कोनो भी गीत में हमर नाम जरी तनी जरी जोड़ द बहुत प्यार से साथ देवत हवन था चला हमनी के साथ ऐसे देते रहिए जा बहुत मजेदार कार्यक्रम चला था और ही हमर पप्पू भैया कौन दिन चल गल पंडित जी हिया पंडित जी जाने ला पप्पू भैया के कुंडली देख के बोले बेटा तोहर कुंडली में तो बहुत धन बा पप्पू भैया हाथ जोड़ के बाबा जी के करलन एगो दंडवत प्रणाम और दंडवत प्रणाम करके बोले महाराज है तो तू हमनी के बोल दे ला कि हमर कुंडली में बहुत धन बा तो तनी हमनी के हाई भी जना द कि कुंडली के जो धन है वो हमर अकाउंट में हम कैसे ट्रांसफर करे सकब

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
0: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम लाजवाब मस्ती में कार्यक्रम चला था और ही चला हैजा पर हमने के ढेर कोई श्रोता लोगन बढ़िया बढ़िया गीत के मांग करत हवन और हैजा पर सजादा परिवार हमने के साथ जुड़ गल हवन त्रियोले बगल से और अगला गीत के ओ मांग करत हवन और जन हई जन अगला गीत हई है दीपशिका बुलगाम के आवाज़ में रखल नवा गीत और हई गीत खास उनकर बेटा निशाल खातिन और सब सजादा परिवार खातिन जितरी ओले से हमने के अभी साथ देवत हवन और जितना एमबीसी के टीम देने से जितना कोई काम करत हवन रात के उन सब कोई खातिन है अगला गीत के तू मांग कर ले हवा तो चला मज़ेदार गीत संगे साथ देते रहिए जा और मज़ेदार गीत संगे हमर जो चचा है ना जाने ल बैठल बैठल का जनी कैसे कैसे कौन कौन कमवा करे के ओकरा कपार में चलावेला कौन दिन हमने के बोले हम एगो शायरी लिखले हई हम बोली चाचा हई तोहर उमिर ह शायरी करे के बोले हाँ बैठे बैठे कुछ याद नहीं आवत रहल तो हम सोचली तनी बैठ के हमर दिल के बात हम कागज पे लिख के उतार देला हम बोले अच्छा तो सुनावा बोले हाँ देखा अर्ज कर ले बा के दोनों ही चलावता हमर संगे प्यार के चक्कर हम बोले का का बोलत हव बोला अरे शायरी तो सुना बीच में नहीं डब डब कर अरज कर ले बा के दोनों ही चलावता हमर संगे प्यार के चक्कर दिन में मक्खी औरी रात में मच्छर है शायरी है चाचा है शायरी है

0: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बा मजेदार कार्यक्रम संगे जितना कोई हंसते मुस्कुराते साथ देवत हवन हई जापर चाची बसंती हमनी के संगे जुड़ गल हवन वो बास है बगल से और युधिश भी हमनी के बहुत प्यार से साथ है देवत हवन उनकर ममा संगे चला इसने साथ देते रहिए जा और मजेदार कार्यक्रम संगे चला हई जापर पंडित राज वर्मा जी हमनी के साथ देवत हवन पेची गाफके से और महेन हरिपाल के आवाज में रखल हई अगला गीत चलाओ अब जाऊ उनकर खातिर उनकर सब बड़ुआ परिवार खातिन और जितना जितना कोई हमनी के साथ है देवत हवन बगुआ परिवार इलोद बगल से हंसते मुस्कुराते बस ऐसने साथ देते रहिए जा और हमनी के चाची बसंती बोले हाँ चाचा के तो किस्सा सुना दे लग अब चाची के किस्सा कब सुनेबा हाँ तो सुना चाची के किस्सा जाने लग।

चाची और चचा कोन दिन लोतो में संगे संगे कहूँ जात रहलन। तो चाची चचा के बोले अहो कहाँ जात हैं है तो बताओ। तो चचा बोले लॉन्ग ड्राइव पर जात हैं, लॉन्ग ड्राइव पर। तो बोले तो काहे पहला नहीं बतैलक हमनी के, पहला बता देते तो हम भी तनी स्टेटस डाल देते फेसबुक पे कि हमर बूढ़ा संगे खुशी खुशी हैशटैग जात हैं लॉन्ग ड्राइव पर। तो चचा बोले हाँ जाने ला, हम भी नहीं जानत रही कि हम लॉन्ग ड्राइव पर जात हैं, अभी अभी देसी देख ले हैं। बोले चाची बोले वो कैसे। तो बोले अरे गाड़ी के है जो ब्रेक है वो ही नहीं लगाता। तो चाची तो लगल कस कस के हल्ला करे अरे बचाओ गाड़ी के तो ब्रेक फेल हो गल बा।

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम लागी नहीं छूटे राम है गीत के मांग करत हवन हमनी के प्यारी गायत्री जी नोवेल फोन से साथ देवत हवन बेटा आ जाए मामी कल्याणी मोहन मेबर्ग से उनकर भौजी हवन शकुंतला मोतायलोंग से और उनकर खास दोस्त गीता बाई जी तो हमनी के कार्यक्रम के सुनत हवा बस चला जल्दी से अच्छा हो जाइए और तोहर सब परिवार खातिन चलाओ अब जा है अगला गीत और है ये गीत चाची ललिता खातिन भी चलाओ अब जा जे अभी तो शादी में वा पर जाने ल शादी में भी बोले हमर गीत चलावे के नहीं भूलैया तो चल लागिना ही छुटे राम तोहर सब परिवार खातिन हरिकुशल परिवार खातिन चलाओ अब जा हाइये गीत और ये हमर जोन चाची के किस्सा चाचा के किस्सा और हमर पप्पू भैया के किस्सा था दुनिया से पार काहे के कबो कबो तो ऐसन बात बोलेला बेसिर पैर के हाइये से हमनी के लगेला अच्छा नाम ओकर माँ बाप खोज के दल्ले हवन पप्पू पप्पू कौन दिन हिया डॉक्टर हिया चल गल डॉक्टर के बोले जाने ला डॉक्टर जी हम सुनले रहली एगो प्रोग्राम में बोले रहलन कि पनिया जोन है फजीर के उठ के ठड़ा ठड़ा रह के पिए के चाहिला और जे दूध पीबा तो दूध तनी बैठ के पिए के तो हमर मन में एगो बहुत दुविधाजनक प्रश्न उठाता तो डॉक्टर बोले हाँ बोला बोला पप्पू भैया बोले देखा पानी तो ठड़ा रह के पिए के और ये दूध जोन है वो बैठ के पिए के तो चाय कैसे पिए के हो लेट के पीवे के काहे के उम्मीद पनिया भी बा और ये दूध भी बा तो कैसे पिए के चाय सुते सुते पिए के कैसे पिए के

0: नाचे भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी रखा है और मजेदार कार्यक्रम संगे हईजा पर आकाश हमनी के साथ देवत हवन और अगला गीत के मांग कर ले हवन और हई जोन गीत है एगो बहुत अनसुना गीत है सजनवा बैरी भैले हमार एगो भोजपुरी फिल्म के गीत उ मांग कर ले हवन तो चला हई गीत चलाव अब जा उनकर खातिर एगो बहुत बढ़िया ललना

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
3: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम संगे जितना कोई साथ देवा थवान बस ऐसने जुड़ल रही है। और ये अगला गीत जोन है चलाओ अब जा चाची शांता सुखा की खातिन जी हमने के संगे जुड़ गल हवन से जमिल फोरसाइट से उनका चार गो बेटा खातिन सुदेश गावीन संगे हवन अशोक और सुजीत पतो हवन किरण नाती हवन भावेश और नातीन संजना खातिन सुना नोयन के आवाज में रखा है अगला गीत कर अब जाओ उनकर खाती इनता चला हंसते मुस्कुराते ऐसे साथ देते रहिए जा बहुत मजेदार कार्यक्रम संगे जितना कोई जुड़गल हवन बस ऐसे हंसते मुस्कुराते जीवन में आगे बढ़ते रहे के चाहिला। और बढ़िया गीत जो अभी अभी चलैनी बढ़िया सन गीत रहल और हई जोन गीत अभी अभी चलैनी हम हई रहल सजना बैरी भैले हमार अलका याग्निक और उदित नारायण के आवाज़ में रहल बहुत मज़ेदार गीत और हई गीत के साथ साथ चल अब सुनब जा सुना नो इनके आवाज़ में रखल अगला गीत

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: अगला गीत जन हा बिजमावती संपत के आवाज में रखा अगला गीत गीत गवाई में है गीत के मांग कर ले हवन मीरा बाई दमिया जे हमनी के साथ है देवत हवन मोडाल पे बगल से और सब पादिया परिवार और दमिया परिवार खातिन खासकर उनकर बेटी और दामाद खातिन तो चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा

10:10 और गत्ते गत्ते करते समय कितना हाल ही से बीता था। चचाला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जाओ और अमर चाची और चचा जाने ल चाची आज सांझ के एगो व्यंजन पकैलक भोजन पकैलक और जैसे चचा खाए के शुरू करलन तो चाची बोले अहो कैसन बनल बा खाए के बोला था तनी तो चचा बोले अरे पगली काहे लड़े खातिर हमर खाते हमनी के हमेशा तू उकसावेला लड़े खातिर हमनी के हमेशा तू कोनो ना कोनो बात बोले ला बोला कहाँ लड़े के बोलत हई हम तो बोलत हई खाए के कैसन बनल बात बोले हाइये तब बोलत हई जब देखा तब हमनी के संगे बहाना खोदते रहेला झगड़ा करे के

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखा था और हैजा पर हमने के साथ देवत हवन विजय बेनी प्रसाद जे साथ देवत हवन शामुनी देने से और उनका खास संगतिया हवन शास्त्री बनवाली मोहताबा से और दूली परिवार के संगे संगे उनका एगो खास संगतिया हवन गणेश जगनारायण शामुनी बगल से किशोर खिमिया के आवाज में रखल है अगला गीत के ऊ मांग करत हवन तो चलो साथ देते रहिए जा और चचा जब जब बात बोले लन सा कबो कबो बे सिर पैर के बात बोले लन सा पर कबो कबो ऐसा मस्त मजेदार बात बोल देवेला हमनी के बोले जाने जाने ल समय बहुत है जस्ती हाली से परिवर्तित होता हम बोले हाँ चचा समय तो बदले गल बाबी का बोला बोले हाँ पहला के जमाना में हमार बड़ा आदमी लोग ऐसा बोलत रहन कि नेकी कर दरिया में डाल नेकी कर दरिया में डाला और आज के समय जाने ल कुछ भी कर स्टेटस पर डाले ल कुछ भी कर स्टेटस में डाल ऐसन समय हो गल बा

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला एक बार फिर से जुड़ जाप स और 10:22 हो गल बा और अगला गीत जो ना एक बार फिर से बिजमावती संपत की आवाज में रखल मांग के सिंदूरवा हाई गीत के मांग करत हवन छोटी पोलॉजे से और हाई गीत चलाओ अब जा दीदी ललिता खातिन दादी प्रभावती खातिन भैया हरीश खातिन भैया आत्माराम खातिन जो हमनी के हमेशा प्यार से साथ देते रहे लन और जाने ल पप्पू भैया के खुशी हो गल हवन एगो छोकरी से मत छोकरी के जो लोंगिया है बहुत नाटी है तो चचा से गल तनी वार्तालाप करे चचा के बोले चचा है छोकरिया कैसन है बोला तो बोले नहीं नाटी छोकरी के संगे कबो शादी नहीं करे के बोले काहे चचा हम तो खुशी हो गल हई ओकर से शादी करे के बोले जाने ला नाटी छोकरी हाली से पत्थर उठा देवे ला और इत और कपार जे दिन फोड़ दे तो हमनी के नहीं आके बोलिया कि हम तोरा नहीं बोले रही

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम आउरी 10:26 हो गल बा भाई माहिन हईजा पर हमनी के साथ देवत हवन और अगला गीत जन है जय हरलाल के आवाज में रखल संगे हवन उनकर दीदी मान और सब कोई परिवार संगे जुड़ गल हवन तो चला हंसते मुस्कुराते ऐसे साथ देते रहिए मजेदार गीत के संगे संगे चला भी एक और छोटा सा चुटकुला सुनाब जा है गीत के बाद

0: वर्चुअल हॉल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:32 और जितना कोई रात के काम करत हवन बस सब कोई के बलब जाबो कुकाश और चला हैजा पर नीरज गुप्त मधु के आवाज में रखा अगला गीत है आत्माराम भैया खातिन जे भी बेलेगी वैशेष से हमनी के संगे जुड़ गल हवन और उनकर सब परिवार संगतिया लोग खातिन और खास कर छोटी ललिता और दादी प्रभावती खातिन है ये गीत के मांग करत हवन मार के फोड़ेला तो छोड़ है दोन हमर चचार है चचा है जितना कपार फोड़ेलन सका जनी हमनी के बोले का जनी भगवान जब पत्नी बना देले रलन तो है मच्छर काहे बनैलक तो हम बोली काहे चचा काहे ऐसन बोलत हवा बोले हाँ है जन पत्नी हा खून पिए के यही तो बस है काहे भगवान मच्छर बनैलक हम नहीं जानत हई

कहूँ मार के कपार फोड़ता तक कहूँ सिनेमा दिखावता तक चला अगला गीत जन है रोशन जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन पूत दमलाज से और अगला गीत के मांग करत हवन संजय हरिचंद के आवाज में जितना कोई रात के काम करत हवन उन सब कोई खातिर चल लाली सिनेमा देखे।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: तो चलो मीठा मीठा बोल है गीत नाजीरा खातिन चलाओ अब ज्यादा गोचे से साथ देवत हवन और बहुते खुशी हवन है गीत स्वीटी के आवाज में रखल स्वीटी रामबरन के आवाज में रखल मीठा मीठा बोल। तो चलो मीठा बोलते रहिए और प्यार से है गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन।

मीठा मीठा बोली और एक संगे आज चला मिठाई सब कोई बाटा थोआ न और आज जन्मदिन भाई काल जन्मदिन रहल इंद्राणी सुभग के और सुभाजी का तो बोन से उनकरा ढेर ढेर आशीर्वाद विदा करत हवन। 4 तारीख के रहल उनका जन्मदिन उनकर कुजीन और पॉइंट पीमा बगल से सब कोई परिवार और जितना कोई साथ देवत हवन उन सब कोई भाई आज जेकर जेकर जन्मदिन बा उनकरा भी हमार ती पूरा टीम देने से जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई। चला है जापर नीता खेदनी भी हमनी के साथ देवत हवन सेंट जूलिया विलार से उनकर खास संगत या स्वाधिका संगे

लेकर संगे संगे 10:50 हो गलबा और हमनी के संगे साथ है दिवत हवन अमृता गणेश और उनकर एगो गीत के मांग है सुनीता ननकू के आवाज में रखल और हाई गीत है चमेली चमेली संगे श्यामा रघुनंदन जी भी हमने के साथ है देवत हवन खोंगो बगल से भाई जयप्रकाश भौजी हवन नम्रता केशव और युधिश खास संगतिया वीना जी और विश्वानी विश्वानी जी भी साथ है देवत हवन बस हंसते मुस्कुराते साथ ही यूं

0: मैरिज हॉल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
2: चला एक संगे नेमन परिवार हमने के साथ दिवत हवन होश नुआ देने से और हई जो अंतिम लाख खोश रही सुनानवियन और बसंत सुपोल के आवाज में रखल और हई गीत के मांग करत हवन जय नेमन उनकर पत्नी हवन नीला बेटा हवन नवीन पतो हवन पूनम बेटी सुनीता और नाती पुता खातिन त चला सब नव नेमन परिवार खातिन है ये गीत और एकर संगे आज के है कार्यक्रम है जहाँ पर समाप्त हो जाए। आशा करत है कि आज के कार्यक्रम तोरा बहुत अच्छा लगल और बिल्कुल आवत सामदी के फेरों से भेट आप सब ऐसने 9 बजे से लेके 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में। तबले रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार शुभरात्रि सबको के।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ। समस्त श्रोताओं को नीतूषा का करजोर प्रणाम। इस समय आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये है सुनहरी पल कार्यक्रम। आइए, नीतू आपके साथ हैं रात्रि के 12 बजे तक। आज शंकर जयकिशन, जो बॉलीवुड के सुरों में शास्त्रीय संगीत की खूबसूरत महफिल सजाते थे, इनके बारे में जानते हैं। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग की बात हो और शंकर जयकिशन का नाम न आए, ऐसा हो नहीं सकता। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन दयाभाय पंचाल की इस संगीतकार जोड़ी ने हिंदी फिल्म म्यूजिक को एक ऐसी पहचान दी जहां मेलोडी, ऑर्केस्ट्रेशन, रोमांस, रिदम और भारतीय

शास्त्रीय संगीत एक साथ मिलकर एक नई दुनिया रच देते थे। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने क्लासिकल और सेमी क्लासिकल म्यूजिक को सिर्फ कठिन संगीत के रूप में पेश नहीं किया, बल्कि उसे आम श्रोता के दिल तक बहुत ही आसान और मधुर अंदाज में पहुंचाया।

शंकर जयकिशन के संगीत में हमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की गहरी परंपरा का एहसास मिलता है। कभी किसी गीत में राग का सुंदर आधार मिलता है, कभी थुमड़ी और दादरा का रंग,

कभी क्लासिकल गायकी की खूबसूरत मूर्खियां और तान, तो वो कभी तबला, सितार, सारंगी, बांसुरी और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों का इतना सुंदर इस्तेमाल कि गीत एक पूरी संगीत महफिल बन जाता है।

फिल्म बसंत बहार का जिक्र किए बिना शंकर जयकिशन के क्लासिकल संगीत की बात अधूरी रहेगी। इस फिल्म में क्लासिकल म्यूजिक को कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया। केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले जैसे गीत में क्लासिकल गायकी का प्रभाव बहुत स्पष्ट नजर आता है। मन्ना दे और भीमसेन जोशी जैसे महान कलाकारों की आवाजों ने इस कंपोजिशन को एक अलग

यह सिर्फ एक फिल्म सॉन्ग नहीं था बल्कि सिनेमा के माध्यम से क्लासिकल म्यूजिक को जन जन तक पहुंचाने वाली एक यादगार संगीत रचना थी। इस तरह सुर ना सजे जैसे गीत में एक कलाकार के मन की व्यथा और संगीत के प्रति उसकी तपस्या को महसूस किया जा सकता है। इस तरह के कंपोजिशंस बताते हैं कि शंकर जयकिशन के लिए म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, संगीत कैरेक्टर के इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक पावरफुल मीडियम भी था।

फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें का पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई भी एक ऐसा गीत है जिसे सुनते ही क्लासिकल गायकी की गहराई का एहसास होता है। मन्ना दे की आवाज, कंपोजिशन की सिंप्लिसिटी और राग प्रेरित मेलोडी मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाती है जहां श्रोता कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है।

शंकर जयकिशन की सेमी क्लासिकल कंपोजिशंस की सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने क्लासिकल एलिमेंट्स को मेलोडी के साथ इतनी खूबसूरती से मिलाया कि आम लिसनर भी बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के उसका आनंद ले सकता था। आजा सनम मधुर चांदनी में हम जैसे रोमांटिक सॉन्ग्स में क्लासिकल इन्फ्लुएंस का हल्का सा रंग मिलता है, लेकिन प्रेजेंटेशन इतनी नेचुरल है कि गीत सीधा दिल तक पहुंचता है।

रसिक बलमा को याद कीजिए, लता मंगेशकर की आवाज, वायलिन का खूबसूरत ऑर्केस्ट्रेशन और कंपोजिशन की क्लासिकल रिचनेस मिलकर एक ऐसा रोमांटिक एटमॉस्फेयर बनाते हैं जो आज भी टाइमलेस महसूस होता है। ये शंकर जयकिशन की कला थी क्लासिकल सोफिस्टिकेशन को पॉपुलर मेलोडी में बदल देना। श्रोताओ, इतने सारे गाने हैं शंकर जयकिशन साहब की, तो अगले सुनहरे पल कार्यक्रम में इसी पर हम वापस बात करेंगे। तब तक इन गानों का मजा लीजिए और नींदों को आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, प्रणाम।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस